0: मौका नहीं मिल पा रहा है, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए आज फिर हम सब उपस्थित हैं और कुछ न कुछ संदेश लेकर आज हम सब फिर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और हमारे साथ जो शांता जी इस समय भी तैयार हो चुके हैं, राजेंद्र जी जो अपना कार्यक्रम पैनल के पीछे से कर रहे हैं, पहले कहते हैं शांता जी से कुछ कहे और फिर आप कह के हम सब कार्यक्रम को शुरुआत धीरे धीरे से करेंगे।
1: मेरी आवाज के प्यारे सुनने वालों, फाहुन रेडियो के सारे सुनने वालों को मेरी यानी कि शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम होए। हम आप सबको स्वागत करते हैं ज्योतिका प्रकाश के प्रोग्राम में। आप जरूर से बने रहे और इसमें जो हम यहाँ से प्रोग्राम चलाएंगे आप इससे जरूर कुछ फायदा उठाएंगे।
2: फाहुन रेडियो के श्रोतागणों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। जैसे कि आप कुछ ना कुछ नया सुनने को पाते हैं, आज भी हमारा एक विषय है, वो भी बहुत अच्छा विषय है, कर्म भोग। और इसके बाद गंगा का विषय रहेगा जो कि बहुत ही एक पवित्र गंगा एक नदी है भारत में, और वो गौमुख से लेके और गंगा सागर तक जाती है, बहुत लंबी नदी है, उसके विषय में काफ़ी सारी बातें करेंगे। अब बताइए संजय जी, आप क्या कहना चाहते हैं?
0: आज का विषय ये है कि हम सब पहले कर्म भोग उसके बारे में जरूर वार्तालाप करेंगे जो हमारे विशेषज्ञ लोग खोज करके हम सबके लिए तैयार रखे हैं। तो आप पहले उनके उदासी मन के लिए क्या करने वाले हैं?
2: हाँ, उनके उदासी मन के लिए वही हमारा जैसे पुराना एक तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को करी, वही वाला गाना चला के सबका मन उदासी से हट जाता है।

0: तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को करे। तो गंगाराम जी का अभी मैसेज आ रहा है कि उदासी उनका मन बहुत उदास हो गया है, क्योंकि उनके मन की जो कोई था यहाँ पे वो चले गए हैं, तो इसलिए उनको उदासी होना पड़ा। कोई बात नहीं पंडित जी, साहब गीत को सुन के अपना मन को उदासी मत कीजिए, आप थोड़ा सब्र रखिए, कुछ दिन बाद आपका उदास दूर हो जाएगा। एक 5 दिन की बात हो रही गई। संजय जी आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: जरूर कहना चाहूँगा राजेंद्र जी, जब हम सब यहाँ उपस्थित है और जैसे सुन रही हूँ कि पंडित जी को और थोड़ा से मन उदास है, तो बस ये कहना चाहूँगा कि संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है, संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है परमात्मा पर भरोसा। बस याद रखो और अच्छे कर्मों की किश्त समय से भरते रहो। आज का विषय जो आपने रखे है राजेंद्र जी, जो हमारे साथ उपस्थित हो करके और यहाँ पर अभी हम सब माँ गंगा की महिमा, जो हम सब यहाँ से जा कर के भारत में जा कर के दिल्ली में उतर करके और फिर जाते हैं हरिद्वार में जा कर के वहाँ डुबकिया लगाते हैं, और डुबकिया लगाने से क्या हम सबका पाप धुल जाएगा राजेंद्र जी या नहीं?
0: हाँ, सब लोग कोशिश तो यही करते हैं कि हम लोग एक बार गंगा में स्नान कर दे तो पाप धुल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है,
1: क्योंकि
0: कर्म करते रहो, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा। आप बुरे कर्म करो और एक बार गंगा चले जाओ कि कोई बात नहीं मेरे पाप धुल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन एक मन में विश्वास तो है ही है।
1: तो राजेंद्र जी अभी हमारे मैं जब जैसे देख रहा हूँ शांता जी भी कुछ कहने वाले हैं। शांता जी आप क्या कहने वाले हैं? आप हरिद्वार जाने वाले हो?
2: मैं तो हरिद्वार में हूँ, क्योंकि ये प्रसंग जो हम यहाँ चला रहे तो यहाँ पे पवित्र हो गए मेरे ख्याल से, मेरी को ऐसे लगता है कि हम हरिद्वार में, क्योंकि
1: शांता जी
2: आप सुनेंगे।
1: जरूर हरिद्वार में आप है, पर हमारे पास आए एक आपका फैन का और टेलीफोन।
2: हाँ जी।
1: और टेलीफोन के बाद बोले भाई जल्द से जल्द मुझे आकर मिलो।
2: अच्छा जी।
1: तो मैं जा कर के श्रीमती लक्ष्मण जी के पास और जा कर के मिले, तो उन्होंने कहा कि भाई आप जब आए तो बाहर आए। बोले शांता जी जब स्टूडियो में आ जाए है तो बाहर आ जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे शांता जी के लिए अभी तो हमने उसे देखा भी कभी नहीं, पर सिर्फ उसके आवाज़ को सुन करके इतना प्रसन्न हो रहे हो, तो आपके लिए कुछ गिफ्ट भेजे हैं। तो मैं आपको ये गिफ्ट को दे रहा हूँ मफराव लक्ष्मण जी, इतने सारे ड्रिंक यानी कि पानी का बोतल ढेर सारे भेज दिए हैं यहाँ फाहोन हिंदुस्तानी स्टूडियो में। तो मफराव लक्ष्मण जी को हार्दिक से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम सब के सोचे और इसी प्रकार से हम सबका हौसला जरूर बढ़ते हैं और हौसला बढ़ता रहेगा, और हम सब भी ऐसा और स्टूडियो में आकर अपने ओर से सेवा को जरूर करेंगे। अभी जब राजेंद्र जी हम सबको संदेश को सुनाने वाले हैं कि हमें गंगा स्नान करने तो जरूर चाहिए, पर गंगा स्नान करने से पहले राजेंद्र जी संदेश उससे पहले क्या है?
0: गंगा स्नान का जो संदेश है वो तो बाद में है, लेकिन उससे पहले जो संदेश है वो है कर्म भोग।
1: तो हमें ध्यान देना अपने जीवन में किस पे कर्म यानी कि कौन सा कर्म करे ना।
0: जी
2: पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि कर्म भोग हमारे सुनने वाले सोचेंगे कि सिरनाम भी एक जगह है कर्म भोग, तो वो वाला कर्म भोग हम नहीं कहेंगे यहाँ पे एक।
1: ठहरो राजेंद्र जी, बटम मत बुताना, क्योंकि कर्म भोग सिरनाम में एक स्थान है,
2: एक जगह है,
1: और एक स्थान जहाँ जिसे कहते हैं कर्म भोग, तो वो उसको बोलते हैं क्रोनमबुरुक।
2: अच्छा देखो।
1: हाँ, तो वहाँ पर और नाव से जाना पड़ता है ना।
2: अच्छा।
1: पर क्रोनमबुरुक के बाद ये नहीं है, ये कर्मों का और अपने कर्मों करने का और उन्हें जो काम करेंगे उसी का हमें भोगना पड़ेगा या भुगतने पड़ेगा। अच्छा, इसमें दो बात हो जाता है ना,
2: स्पर्श हो गया यहाँ कि ये, हाँ, ये
1: कि जो बढ़िया काम करेंगे तो उसे प्राप्ति होगा शुभ कार्य, और जो बुरा काम करेंगे तो क्या मिलने वाले। राजेंद्र जी ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि हम एक सुंदर सा गीत के ओर पहले चला देते हैं, तो फिर उसके बाद में कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा।
0: हाँ जरूर, उसी ओर बढ़ते हैं।

0: मानो तो गंगा जल है, न मानो तो बहता पानी। बहुत ही अच्छा आपने अभी जो सुना, बहुत ही अच्छा है। और आगे बढ़ते हैं कर्म भोग की तरफ। आज बात करते हैं कर्म भोग की। पूर्व जन्मों में कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, मित्र शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब मिलते हैं, क्योंकि इन सबको हमें या तो कुछ देना होता है या इनमें कुछ लेना होता है।
1: राजेंद्र जी, यानी कि पूर्व जन्मों के कर्मों के हेतार्थ हम लोग परिवार में जन्म लेते हैं।
0: हाँ, पूर्व जन्म का ही रहता है सब।
1: ऐसा बात है?
0: ऐसा, हाँ, कर्म के अनुसार।
2: अच्छा,
0: संतान के रूप में कौन आता है, वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे शास्त्रों में चार प्रकार से बताया गया है। ऋणानुबंध, पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी में या व्यर्थ में कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक उसका हिसाब पूरा ना हो जाए।
1: अरे बाप, राजेंद्र जी, इसको क्या कहते हैं? ऋणानुबंध।
0: हाँ, ऋण मतलब जो हमने आपको कुछ दिया और आपने लौटाया नहीं, तो कर्जदार ऋण हो गया।
1: ओ, तो हमने जो कर्जा नहीं लौटा रहा तो ये भरना पड़ेगा,
0: ऋणानुबंध हो जाएंगे आप, भरना पड़ेगा, अगले जन्म में भरना पड़ेगा, लेकिन कभी ना कभी भरना जरूर पड़ेगा। इसलिए ना चाहे किसी का कर्जा रखना,
1: ना लेवे। दोस्तों, ये बात सुन के तो मुझे थोड़ा से,
2: राजेंद्र जी, कर्जा का मतलब ये पैसा थोड़ी होता है?
0: कुछ भी चीज आपने, पैसा तो ज्यादा होता है। कुछ भी आपने किसी को चीज दिया और वो उसने आपको उसके, आपने दिया उसको कुछ समय के लिए, लेकिन आपने उसने वापस नहीं किया और आप मांगते रह गए लेकिन नहीं दिया, लेकिन उसको फिर वो अगले जन्म में देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा।
1: दोस्तों, ये बात सुन के तो थोड़ा थोड़ा से शायद किसी किसी को डर भी लगने लगा होगा, पर राजेंद्र जी,
2: पर अच्छा है, जो भी ऋण होगा ना, तो ये जो सुनते हो तो वो जल्दी से चुका देगा।
0: हाँ, वो जल्दी से चुका देगा। दूसरा आता है शत्रु पुत्र। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा, हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा, वह उन्हें दुखी रखकर सुख खुश होगा।
2: ये सब तो होता है।
0: हाँ, तो पिछले जन्म का कुछ ना कुछ रहता है, इसलिए होता है।
2: देखने में मिलते हैं ये सब
1: बिल्कुल देखने में मिलते हैं। और सही बात कह रहे हैं शांता जी कि शत्रु पुत्र, यानी कि इसी कारण ये सब होता है। ऐसा होता है जो हम कोशिश करते हैं कि हमारे घर में सभी प्रकार से और पुत्र जो सुपुत्र को रहे, पर कभी कभी ऐसा होता है और देखने को जरूर ऐसा होता है शांता जी।
2: पर अभी जैसे राजेंद्र जी ने कहा, ये जो लड़का जो नालायक होते हैं ना, इसे कहते हैं, तो इसमें दोष किसका है? माता पिता के है?
0: हाँ, वो पूर्व जन्म का कोई
2: पूर्व जन्म के तब ऐसे ही लड़का उसके घर में जन्म ली।
0: हाँ,
2: तो ऐसे में क्या करना चाहिए? थोड़ा से कुछ
0: कर्जा किसी का नहीं रखना चाहिए, किसी
1: कर्जा
0: भी जन्म
1: कुछ
0: का।
1: ना करो तो ऐसा होएगा नहीं। हाँ, तो राजेंद्र जी, और आगे क्या कह रहे हो आप? क्योंकि
0: उदासीन पुत्र।
1: राजेंद्र जी, मैं अगर आपसे ये कह दूं कि अभी हमारे साथ जो कनेक्ट होने वाले हैं, ये कार्यक्रम में हमारे साथ कनेक्ट होने वाले हैं जो गंगा नहान, माँ गंगा नहान का कार्यक्रम अभी प्रारंभ होने वाले हैं और अभी कुछ संदेश आगे से बताया जा रहा है, तो हमें और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी गीता नेगी, जो जहाँ से गंगा का उत्पत्ति हुआ है, ग्रिशुपुरी गढ़वाल से, अभी हम सब के साथ, और हम सब उसे और मिलेंगे और वहाँ का वृतांत, यानी कि माँ गंगा का पूरा वृतांत सुनेंगे उसी के मुख से। तो राजेंद्र जी, क्यों ना हम एक और इसी पुत्र के बारे में बता दे, तो हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर माँ गंगा के ओर हम सब कार्यक्रम में बढ़ पाएंगे।
0: हाँ जरूर। तीसरा है उदासीन पुत्र। इस प्रकार की संतान न तो माता पिता की सेवा करती है और न ही कोई सुख देती है, बस उसको उनके हाल पर ही मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर या माता पिता से अलग हो जाते हैं।
1: ओहो, ये तो बस जानी पहचानी से बात होता है।
2: सब जानी पहचानी है
1: राजेंद्र जी, ये तो जानी पहचानी से बात हो जाता है कि उदासीन पुत्र का वृतांत।
0: हाँ।
1: कि माता पिता से और छोड़ करके भाग जाते,
2: चले जाते। हाँ।
1: चले जाते, अच्छा शब्द तो यही कि चले जाते। चलो और आगे का क्या वृतांत है राजेंद्र जी?
0: आगे का वृतांत है सेवक पुत्र।
1: सेवक पुत्र,
0: हाँ, सेवक पुत्र का मतलब है पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह अपनी ही सेवा का ऋण उतारने के लिए आपका पुत्र या पुत्री बनकर आता है और आपकी सेवा करता है। जो बोया है वही तो काटे हुए। अपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास नहीं होगा। आप यह न समझे कि यह सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती है। इन चार प्रकार से कोई सा भी जीव आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थ भाव बस पालकर उसको दूध देना बंद करने के पश्चात घर से निकाल दिया तो वह ऋणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा और आपसे बदला लेगा।
1: अरे बाप, शांता जी, ये सुन के तो हमें तो थोड़ा से और भी घबराहट आने लगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ तो हम जानते, देखो हमारे जेनरेशन वाला ने सूरीनाम में सभी के घर पे गाय होते थे और गाय का सेवन होता था, पर कभी काल के बस गाय अपना मन मानी करे और हम दे, हमें जल्दी होते थे तो कुछ ना कुछ किया है जो पैरों का रस्सी से बांध दिया जाता था और दूध लगाने को, क्योंकि ऐसा होता था वहाँ, क्योंकि जल्दी होते थे। और यहाँ लिखा है जैसे कि आपने अभी हम सबको सुनाए हैं कि गाय जो निस्वार्थ, यानी कि जो अपने गाय का सेवा, जो
0: निस्वार्थ मतलब बगैर किसी स्वार्थ की भावना के, स्वार्थ नहीं है लेकिन फिर भी सेवा हो रही, निस्वार्थ भाव बोलते हैं,
1: निस्वार्थ।
0: हाँ।
1: और किया है तो उसका भी दंड मिलना है।
0: हाँ, इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा ना करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस जन्म में या अगले जन्म में 100 गुना वापस करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपये दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपये जमा हो गए। यदि आपने किसी को 1 रुपये छीना है तो समझो आपकी जमा राशि से 100 रुपये निकल गए। जरा सोचिए आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाओगे। जो चले गए वो कितना सोना चांदी साथ ले गए। मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया, समझो वो व्यर्थ ही कमाया। औलाद अगर अच्छी और लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही खा कमा लेगी। और औलाद अगर बिगड़ी या नालायक है तो उसके लिए जितना मर्जी धन छोड़कर जाओ वह चंद दिनों में सब बर्बाद करके चैन लेगी। मैं, मेरा, तेरा और सारा धन यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ यदि कुछ जाएगा भी तो सिर्फ नेकियां ही जाएंगी, इसलिए जितना भी हो सके नेकी करो, सत्कर्म करो। नेकी मतलब अच्छे कार्य करो
1: राजेंद्र जी, और अच्छा संदेश आपने दिए। जरूर हम आगे बढ़ूंगा कार्यक्रम से, पर एक गीत के ओर चलते हैं कि देखते हैं राजेंद्र जी इस समय हमारे प्लेयर पे क्या रखने वाले हैं।
0: जो आपने अभी कहा कि नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, तो वही रखेंगे, क्योंकि वो आपने कह दिया तो वही रखना ही पड़ेगा। आप तो
3: Thank you.

0: इस समय हम लोग कनेक्ट करने को कोशिश कर रहे हैं भारत देश से, तो इस समय हमारे कनेक्टिंग हो गई है राजेंद्र जी भारत श्री गीता नेगी जी से।
1: हाँ गीता नेगी जी आप जुड़ चुकी हैं।
2: हेलो।
1: हाँ गीता नेगी जी आप जुड़ चुकी हैं।
2: हाँ जी हाँ जी।
1: हाँ तो हमारे भारत से आज हमारा जो विषय है वो गंगा के ऊपर है और गीता जी इसमें जुड़ चुकी हैं। गीता जी पौड़ी गढ़वाल से खिरसू ग्राम से है और गंगा के बहुत नज़दीक से है, तो मुझे लगा कि वो नज़दीक से है तो बहुत अच्छे से गंगा के बारे में बता पाएंगी। तो आप बताइए गीता जी, आपका गंगा के बारे में क्या विचार है और क्या जानकारी देना चाहती है? फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन।
2: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग योर शो।
1: आप हिंदी में भी बोल सकती हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हिंदी और डच समझते हैं।
2: थैंक यू मुझे गंगा के बारे में बोलने का मौका देने के लिए। वैसे तो इंडिया में या इंडिया के बाहर जितनी भी रिवर्स हैं नदियां हैं सभी बहुत अपने में विशिष्ट होती हैं और सभी ब्लेसिंग्स हैं गॉड की तरफ से हम एग्जिस्टेंस के लिए मैनकाइंड के लिए और लाइफ के लिए। और वैसे भी गंगा रिवर को लाइफ लाइन भी बोला गया है इंडिया के कॉन्टेक्ट में। तो अभी आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है, आमंत्रित किया है गंगा के बारे में बोलने के लिए, तो मैं उनके कुछ पॉइंट्स रखूंगी, मैथोलॉजिकल पॉइंट्स, फिजिकल पॉइंट्स, स्पिरिचुअल और साइंटिफिक भी थोड़ा बहुत। तो अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं।
1: हाँ जरूर, आपने जो पॉइंट बनाए हैं और जो कहना चाहती हैं जरूर हमको जानकारी दीजिए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग श्रोता हैं, जो 35,000 लोग इस समय आपको सुन रहे हैं, 162 कंट्री में आपको सुन रहे हैं लोग, आप बताइए।
2: फिजिकल वे से मैं स्टार्ट करूँगी। फिजिकल वे में जैसे मैंने कहा कि गंगा रिवर को लाइफ लाइन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि ये सबसे लंबी रिवर इंडिया में सबसे लंबी रिवर है। इसकी लेंथ जो है वो 2525 किलोमीटर है और ये ऑलमोस्ट 15 स्टेट्स को कवर करती है। इसका जो कैचमेंट एरिया है ये बहुत ही वाइड है। इंडिया के सभी रिवर्स में से सबसे बड़ा इसका कैचमेंट एरिया या बेसिन कह सकते हैं वो सबसे बड़ा है। तो और प्रॉपर तरीके से जहाँ जहाँ ये फ्लो करती है तो 5 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ ये फ्लो करके सुंदरबन डेल्टा से बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। और सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और
1: सुंदरबन कहाँ पे है?
2: सुंदरबन जैसे जब गंगा रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो वो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का जो एरिया है उसे बे ऑफ बंगाल सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा यानी कि जब एक रिवर मेनी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है डिफरेंट स्ट्रीम में, डिफरेंट नदियों में डिस्ट्रीब्यूट होके और वो समुद्र में गिरती है, उसे डेल्टा बोला जाता है। तो सुंदरबन दुनिया का ही यही कहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल भी है और यहाँ पे बहुत डॉल्फिन जो फिश होती है वो भी बहुत अच्छे बहुत संख्या में पाई जाती है, जो ताजे पानी की फिश जिसे बोल रहे हैं वो भी पाई जाती है। ये इसी मुहाने पे मिलती है और किसी रिवर में डॉल्फिन नहीं पाई जाती है। गंगा के सुंदरबन डेल्टा के नियर बाय
0: गंगा का उत्पत्ति हुआ है वहां से आप हम सबको और ये संदेश को सुना रहे हैं। हम ये जानते हैं कि हमें बताया गया और हम जानते हैं क्योंकि दुनिया के हर एक कोना हर एक देशों में से और लोग यहाँ से निकल करके और गंगा स्नान करने को जाते हैं, तो उसके बारे में आपको क्या और संदेश है?
2: सर गंगा एक बहुत वाइड इनका कैचमेंट एरिया है, डिफरेंट स्ट्रीम जो होती है इनकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो जब मिलके देवप्रयाग में जो उनका कॉन्फ्लुएंस होता है जो संगम होता है वहाँ से वो गंगा कहलाती है देवप्रयाग में, जो कि मेरे प्लेस से बहुत ही नियर बाय है, ओनली 30 किलोमीटर अराउंड। तो मैं उसे भी पहले से स्टार्ट करूंगी। जैसे सतोपन ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर को हिंदी में हिमानी भी बोलते हैं
0: जी।
2: तो ग्लेशियर एक बहुत ही बर्फ का इतना ऐसा टुकड़ा होता है जिससे रिवर्स का जनरेट रिवर्स निकलती है वहां से। उनका उद्गम स्थान जो बोला जाता है, वैसे तो डिफरेंट टाइप से नदियों का उद्गम होता है, प्लेट्यूज के थ्रू होता है डिफरेंट वे से, लेकिन जो ये ग्लेशियर है इनसे भी गंगा जो हमारी रिवर है वो ग्लेशियर से उद्गम हुआ है उनका। तो सबसे पहले ये सतोपन ग्लेशियर से निकलती है, वहाँ पे इनका नाम, इसका नाम विष्णु गंगा होता है। और एक स्ट्रीम धौली गंगा होती है जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी होती है, वो विष्णु प्रयाग में मीट करते हैं, उनका कॉन्फ्लुएंस विष्णु प्रयाग में होता है। फिर वहाँ से इसको अलकनंदा नाम से बुलाया जाता है, अलकनंदा यहाँ से और देव प्रयाग तक इसे अलकनंदा ही कहा जाता है।
1: तो देव प्रयाग में जब दोनों नदियाँ इकट्ठी हो जाती है, दोनों नदियों का क्या क्या नाम है, एक अलकनंदा और दूसरी का?
2: मैं थोड़े पहले से बोलूंगी, जहाँ पे धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है तो फर्स्ट पॉइंट पे विष्णु प्रयाग बनता है
1: जी।
2: सेकंड जगह पे जब नंद प्रयाग, नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा स्ट्रीम से, तो उसे नंद प्रयाग बोलते हैं। और थर्ड जो लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी है, जैसे पिंडार होता है, वो कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है।
1: कर्ण प्रयाग वही जगह है जहाँ पे कर्ण के नाम से बनाया गया है?
2: हाँ जी हाँ जी, वही आध्यात्मिक में भी महाभारत के जो कर्ण है वो यही वाला प्लेस है। उनका जो विष्णु भगवान जी थे, उन्होंने अपने हाथ में उनको, उनकी चिता को जलाया था, ऐसे कहा जाता है।
1: तो उन्होंने अपने हाथ में, भगवान कृष्ण ने अपने हाथ में क्यों जलाया था कर्ण को?
2: उन्होंने, कर्ण ने उनसे एक वो अपनी इच्छा व्यक्त की थी मरते समय कि दुनिया में ऐसी जगह में, मुझे इतनी पवित्र जगह में आप जलाएं जहाँ पे किसी की मृत्यु कभी नहीं हुई हो। तो दुनिया में ऐसी कोई जगह ही नहीं थी, क्योंकि चाहे वो इंसेक्ट हो, वायरस हो, कुछ भी हो, हर जगह प्राण उपस्थित था, तो ऐसा कोई प्लेस नहीं था जहाँ पे कोई मरा ना हो। तो इसीलिए उन्होंने साक्षात, जिसे वैकुंठ भी बोलते हैं, तो अपने आप के, अपने ही हाथों में उनका
1: अपने हाथों में उनका अंतिम संस्कार किया, क्योंकि और फिर वो कर्ण प्रयाग वो जगह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गंगा की तरफ।
2: वहाँ पे उनका मंदिर बनाया गया है उनके मेमोरी के लिए।
1: हाँ, मैं उस मंदिर गया हूँ, और नीचे बहुत बड़ा एक पत्थर है, उसके ऊपर वो मंदिर है, बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे
2: जी। फिर वो

0: निकलती है भागीरथी, तो वो सीन भी देवप्रयाग में मीट करती है। तो दोनों का कलर बहुत अलग होता है, कभी एक ग्रीन कलर की होती है, कभी एक मटमैले किसी कलर की होती है।
1: हाँ, मैंने देखा है वो स्थान, एक ग्रीन कलर की और दूसरा एकदम पानी अलग दिखता है, और जब दोनों मिल जाती है तो बड़ा ही अच्छा लगता है, और वहाँ से वो गंगा बनती है।
0: हाँ जी, बस यही एक पॉइंट है जहाँ से इसका नाम गंगा दिया गया है। यहाँ से फिर हरिद्वार तक तो पहाड़ों से ही एंटर करती है, लेकिन जब हरिद्वार के बाद से वो प्लेन में एंटर कर जाती है। इससे पहले तो पहाड़ों से होते हुए, पहाड़ों के बीचों से होते हुए निकलती है, और हरिद्वार से वो प्लेन में एंटर कर जाती है।
1: तो हरिद्वार से होते हुए, गढ़गंगा गढ़मुक्तेश्वर से होते हुए, कौन कौन से स्थानों से गंगा गंगा सागर में जाके मिलती है इतना लंबा सफर करते हुए?
0: बहुत ज्यादा, मतलब यूपी को पूरा क्रॉस करते हुए, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, इन सबको कवर करते हुए जाते हैं।
1: और फिर ये मैंने देखा है कलकत्ता में, कलकत्ता से होते हुए लास्ट और बहुत विशाल रूप लेके वहाँ गंगा सागर में, समुद्र में मिल जाती।
0: और जितने भी जैसे काशी, वो तीर्थ स्थान है, वो सब गंगा के किनारे बनाए थे।
1: हाँ, हर स्थान गंगा के किनारे बने हैं। और जो तीन नदियों का जो संगम होता है इलाहाबाद में, कौन कौन सी तीन नदियाँ बताई गई हैं?
0: इलाहाबाद का नाम अब चेंज हो गया है सर, उसे प्रयागराज बोलते हैं।
1: हाँ, अब इलाहाबाद नहीं, अब प्रयागराज हो चुका है, और पहले प्रयागराज ही था, बीच में इलाहाबाद बना दिया था, अभी सुधार हुआ है। तो वो तो उन लोगों की है जिन्होंने किया होगा, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैसा जो है वो तो रहेगा। और
0: गंगा यमुना सरस्वती वहाँ पे उन तीनों के संगम।
1: हाँ, लेकिन मैंने देखा है कि गंगा यमुना तो दिखती है दोनों नदियाँ वहाँ पे भी, जैसे आपने बोला कि दो नदी यहाँ पे मिलती है जहाँ से गंगा बनती है,
0: कलर की वजह से।
1: रुद्रप्रयाग नहीं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, नीचे रुद्रप्रयाग के, वो नीचे जो स्थान है जहाँ से गंगा बनती है,
0: देवप्रयाग
1: में, वैसे ही इलाहाबाद में दोनों तीन नदियाँ मिलती है, गंगा यमुना और सरस्वती। सरस्वती का अंदर ही अंदर वो आती हैं और एकदम वहाँ पे मिल जाती है। मैंने सुना है कि जो बहुत विद्वान है, भाग्यशाली लोग हैं, उन्हीं को सरस्वती के दर्शन होते हैं वहाँ पे, और बाद बाकी लोगों को नहीं हो पाते, गंगा यमुना के ही होते हैं। क्या ऐसा है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी?
0: हाँ, हमने भी ऐसे ही मतलब पढ़ा है, लेकिन कुछ आध्यात्मिक वे से भी ऐसे भी कहा जाता है कि सरस्वती वो श्रापित नदी है, इसलिए वो हिडन हो गई थी, वो दिखाई नहीं देती थी, और वो बहुत पहले से अंडर वाटर मतलब अर्थ के अंदर से होते हुए वहाँ पे मीट करती है।
1: हाँ, मैंने देखा है बद्रीनाथ के ऊपर एक जगह है, उसको बोलते हैं भीम पुल। भीम पुल के थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो लोग सब वहाँ पानी भी भरते हैं, उस पानी को पीते भी हैं, वहीं से अंडरग्राउंड हो जाती है और इलाहाबाद में बाहर निकलती है। तो वहाँ पे दर्शन करने लोग उस जगह पे जाते हैं। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर ऊपर तक गाड़ी जाती है, 1 किलोमीटर और ऊपर पैदल जाना पड़ता है। उसी के बगल में गणेश गुफा, ब्यास गुफा, जब जो ग्रंथ लिखे गए थे, जो पुराण लिखे गए थे, उन्हीं जगह पे है। और भीम पुल, वहाँ से भीम ने एक पत्थर रख दिया था उस नदी के ऊपर, वो पुल बन गया था। इसके बाद डायरेक्ट ऊपर जाते हुए वहीं से स्वर्ग की सीढ़ियाँ भी हैं बहुत आगे जाके, ये सब बहुत अच्छा है, मैंने देखा भी है, और मैं आपने भी देखा होगा, भारत की हैं तो जरूर देखा होगा। तो और कुछ जानकारी इस बारे में आप देना चाहती हैं गंगा के विषय में?
0: गंगा के विषय में, हाँ, गंगा का ऐसे भी कहा जाता है कि जैसे जो पानी होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, 25% इंक्रीज हो जाती है। कुछ वायरसेस होते हैं जो दुनिया के किसी भी रिवर में नहीं मिलते हैं, बैक्टीरियोफेज उनको बोलते हैं, जो कि मतलब दुनिया में कहीं पर भी, यहाँ तक कि जो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें भी नहीं पाई जाती हैं, या कहीं से भी बारिश का पानी हो या कुछ भी हो, कहीं से भी ये वायरसेस नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जैसे गंगा में ये पाए जाते हैं, इसकी वजह से उसके ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि वो एक एल्केमी का काम करता है। एल्केमी मीन्स
1: अल्कलाइन, जो वाटर होते हैं
0: अल्कलाइन, हाँ, मतलब एक डिस्टिल्ड कर देता है वाटर को, और उसकी विशेषता इतने गुना ज़्यादा बढ़ा देता है कि वो कैपेसिटी दुनिया की किसी भी नदी में नहीं पाई जाती है। और स्पिरिचुअल वे में भी कहा जाता है कि मोक्ष पाने के लिए जैसे अगर किसी के अस्थियों को डाल दिया जाए उसमें, तो वो बहुत जल्दी वो पूरी तरह से ऐसे गल जाती हैं कुछ ही टाइम में, कि वो जो एक एनलाइटन की स्टेट होती है वो मिल जाता है उनको, और वैसे करोड़ों साल लग जाते हैं तो वो चीज़ें अचीव नहीं हो पाती, लेकिन गंगा के पानी में वो चीज़ें हैं, वो विशिष्टता है जो कि एनलाइटन तक पहुँचा रही है।
1: और मैंने सुना कि गंगा का पानी कभी खराब भी नहीं होता, चाहे आप कितने भी बरसों तक रखे, उसका क्या कारण है साइंटिफिक वे में? और

0: आध्यात्मिक वे में भी, दोनों दोनों प्रकार से आप बताएंगे।
1: साइंटिफिक वे में तो यही है कि जो वायरसेस हैं वो क्या करते हैं कि वो सेल्फ क्लीनिंग क्वालिटी करते हैं, वो सेल्फ प्यूरिफाइंग क्वालिटी को लिए हुए होते हैं, वो कभी गंदा होते ही नहीं है। आई थिंक जो भी डर्ट होता है कुछ होता है वो उसको नच करके उसे फिर से प्योर कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद गीता,
0: बहुत धन्यवाद आपका
2: निगी जी, जो मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो भारत से और घिरसू पूरी गढ़वाल से हम सबके लिए अपना काफी जानकारी दिए हैं। हार्दिक से धन्यवाद दिया जाता है गीता जी को।
1: थैंक यू।

0: वाह हिंदुस्तानी रेडियो, बहुत ही अच्छा आपने अभी जो सुना गीता जी के बारे में, गीता जी ने जो संदेश दिया आज हमारे रेडियो पे गंगा के बारे में, बहुत ही अच्छा दिया। और उन्होंने सारे वृतांत बताए गंगा के, कहाँ से शुरू, कौन से कैसे, कहाँ से नदी, कहाँ से कौन मिलती है, उसके लिए बहुत ही बहुत गीता जी को हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी। संजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
1: जरूर कहना चाहूँगा राजेंद्र जी, जो कि गीता जी जो संदेश दिए है ना, तो ऐसे गंगा हम जानते हैं कि माँ गंगा नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं, माँ गंगा जैसे गायों में सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं कामधेनु, ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं नारद ऋषि, और इसी प्रकार से नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा। पर जो जानकारी गीता जी हम सबको दिए हैं वो हमें बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमें दुनिया के हर एक कोना से, दुनिया के जहाँ लोग कहते हैं ना, जहाँ पर हवा है और जहाँ पानी है वहाँ हिंदुस्तानी भी है, तो जहाँ हिंदुस्तानी है सबका मन में यही इच्छा होता है कि मैं कोई ना कोई कारण तो बस कुछ ना कुछ पाप हुआ होगा, और ऐसा ना हो कि हमें अपना उसे पाप को और भुगतने पड़े, तो जरूर ये इच्छा करते हैं। और कितने लोग तो भी भारत देश जा चुके हैं राजेंद्र जी, और माँ गंगा का दर्शन हम जरूर कर सकें। तो राजेंद्र जी, शांता जी भी हो कि कह रहे हैं कि वो तो इस समय गंगा स्नान कर रहे हैं अपने सेवा के माध्यम से, तो शांता जी आप कुछ कहे, और मुझे नहीं पता कि कौन सा गीत आज आप अपने पिटारा से भर के लेकर आए हैं।
0: शांता जी, आप कुछ गीता जी के बारे में कहना चाहेंगे?
2: मुझे बहुत खुशी हुई कि एकदम भारत से वो डायरेक्ट का फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के स्टूडियो में आई, और अपना जो संदेश है गंगोत्री के बारे में, गंगा के बारे में जो बताई, तो बहुत अच्छा लगा।
0: आप भी तो गंगोत्री गए हैं ना,
2: इसलिए तो मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। इसलिए
0: अभी भी शेयर कर रहे हो आप वहाँ पे?
2: या जी, मैं ऐसे ही स्पर्श देखती हूँ गौमुख को। गौमुख भी गए, गंगोत्री से गौमुख जाने के लिए 18 किलोमीटर लगता है चलने में।
0: हाँ, तो बहुत अच्छा। कितना समय लगा था आपको गौमुख में जाने के लिए?
2: पूरे दिन हम गए, गाय हम सुबह में निकल गए। और
0: रुके कहाँ पे थे, भोजपाशा में कि कौन सी जगह पे?
2: हम भोजपाशा में, वहाँ पे हमने थोड़ा भोजन किए, थोड़ा आराम किए, तो वहाँ से हम गए गौमुख के बारे में।
0: तो मैं गया था गंगोत्री से 5 बजे सुबह ऊपर गौमुख के लिए, और वापस आ गया 3 बजे नीचे सेम दिन, तो इतना जल्दी मैंने कवर कर लिया था।
2: नहीं नहीं, हम भी सेम डे हम भी वापस आ गए, पर एक जगह हम रुके थे सिर्फ आराम करने के लिए और भोजन करने के लिए।
0: ओ, तो बहुत अच्छा, भूख लगता है जब आप उस स्थान पे पहुंचते हैं।
2: पर गलती की मैंने भोजन की
0: नहीं, मैंने जाते समय तो भोजन नहीं किया, लेकिन मैंने आते समय थोड़ा कुछ हल्का सा ले लिया था, और फिर मैं जब गंगोत्री आया तो तभी भोजन हुआ, और जब मैं सोया मैं थोड़ा सोचा कि मैं और नीचे की तरफ चले जाऊं, लेकिन जब मैं थोड़ा सोने की कोशिश करा, थोड़ा नहीं सोया गया कि सुबह ही हो गई, पता चला कि सुबह हो गई, अब चलो अगले दिन चलते हैं।
2: पर गौमुख जो है, जो इसका दर्शन कर ली है, बेशब्द हो जाओगे, इतना आनंद आते हैं वहाँ। और अच्छा लगता है देखने की गौमुख जहाँ है ना, वहाँ पे ग्लेशियर जो होता है ना,
1: जैसे कि अभी गीता जी ने हम सबको बताया
2: जी, ग्लेशियर ऐसे इतने नहीं, हम डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे।
0: हाँ, वो ग्लेशियर जो होते हैं बर्फ के एकदम, कुछ लोग कह रहे थे कि वहाँ मत जाओ, ग्लेशियर कभी भी गिरते हैं और उसमें कई लोग मर जाते हैं, लेकिन हमने कहा कि हम तो वहीं स्नान करेंगे जहाँ पे ग्लेशियर गिरता है।
2: मैं भी वही की, पर ये बात कहती हूँ कि जहाँ ग्लेशियर ना और उसके आसपास जो है वो पर्वत है।
0: हाँ, उसी स्थान को गौमुख बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका और गीता जी का, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, और इस जानकारी के लिए इनको बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। फिर हम उनसे फिर कभी मिलेंगे अगले उसमें कार्यक्रम में, तब तक के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, बहुत ही आज का जो विषय है बहुत ही अच्छा विषय है। गंगा नदी विश्व भर में अपनी शुद्धिकरण क्षमता के कारण जानी जाती है। लंबे समय से प्रचलित इसकी शुद्धिकरण की मान्यता का वैज्ञानिक आधार भी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं, जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवियों को जीवित नहीं रहने देते हैं। नदी के जल में प्राणवायु ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने की असाधारण क्षमता है, किंतु इसका कारण अभी तक अज्ञात है।
1: इसका कारण अभी तक अज्ञात है, मतलब क्या है राजेंद्र जी?
0: अज्ञात है मतलब अभी तक लोग जान नहीं पाए हैं। अज्ञात मतलब न जानना।
1: ओके।
0: हाँ, एक राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो कार्यक्रम के अनुसार इस कारण हैजा और पेचिस जैसी बीमारियां होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। एक रेडियो का कार्यक्रम में इस जानकारी दी गई है।
1: हाँ,
0: राष्ट्रीय रेडियो के कार्यक्रम के अनुसार
1: भारत के रेडियो
0: हाँ भारत के रेडियो में
1: हाँ।
0: खतरा बहुत कम ही हो जाता है, जिससे महामारियां होने की संभावनाएं बड़े स्तर पर टल जाती है। लेकिन गंगा के तट पर घने बसे औद्योगिक नगरों के नालों की गंदगी सीधा गंगा नदी में मिलने से प्रदूषण पिछले सालों में भारत सरकार और जनता के चिंता का विषय बना हुआ है। औद्योगिक कचरे के साथ साथ प्लास्टिक कचरे की बहुतायत ने गंगा जल को बेहद प्रदूषित किया है, बहुत प्रदूषित कर दिया है। वैज्ञानिक जाँच के अनुसार गंगा का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन स्तर 3 डिग्री सामान्य से बढ़कर 6 डिग्री हो चुका है। गंगा में 2,10,00,000 लीटर प्रदूषित कचरा प्रतिदिन गिर रहा है। विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की 12% बीमारियों की वजह प्रदूषण की है। लेकिन अभी इसमें सुधार हुआ है कि इस नदी की सफाई के लिए कई बार पहल की गई, लेकिन कोई भी संतोषजनक स्थिति तक नहीं पहुँच पाया। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने गंगा नदी में प्रदूषण को नियंत्रण करने और इसकी सफाई का अभियान चलाया। इसके बाद उन्होंने 2014 में भारत के आम बजट में नमामि गंगा नामक एक परियोजना आरंभ की। इसी परियोजना के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने गंगा के किनारे स्थित 48 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया। भारत में 2020 के 22-25 मार्च से 3 मई तक कारण गंगा नदी के किनारे सभी फैक्ट्रियाँ बंद हैं, जिसके कर उन पर गंदा पानी गंगा में नहीं जा रहा है और गंगा का जल बहुत अधिक साफ हुआ है। पिछले 10 वर्षों में पहली बार हर की पौड़ी में गंगा का पानी पीने लायक बताया गया है।
1: दोस्तों, हम सब और एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ रहे हैं और सभी सुनने वालों को बस ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी जानकारी जो हमारे साथ यहाँ पर विशेषज्ञ लोग खोज करके रखे हुए हैं, जो भी देश में ये कार्यक्रम को सुन रहे हो, आप सड़क पे हो, सफ़र कर रहे हो, तो आपको भी हार्दिक से स्वागत किया जाता है। और फिर भी मत भूलना, क्योंकि हम सब एक गीत की ओर बढ़ रहे हैं और अभी माँ गंगा का जानकारी आप जरूर सुनते रहना।

0: गंगा तेरा पानी अमृत, बहुत ही अच्छा भजन जो आपने भी सुना। अब हम चाहेंगे कि शांता जी कुछ डच में इस बारे में बात करें।
1: शांता जी जो तैयार हो गए हैं कि नीदरलैंड्स में कुछ कहने के लिए, तो दोस्तों आप सभी इस समय जो ये ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम चल रहा है, इसमें बस लक्ष्य यही है कि हमारे जीवन का ज्योति जो जल रहा है उसमें थोड़ा से और प्रकाश आए। इसी प्रकार से हम सब अलग अलग जगहों से और अलग अलग स्थानों से भी कुछ संदेश आपके लिए रखने की कोशिश करते हैं। और यहाँ शांता जी,
2: हाँ प्यारे सुनने वालों, तो आपने जैसे सुना कि यहाँ के प्रसंग जो चल रहा है गंगा के बारे में, तो गंगा के बारे में हम थोड़ा से आप सब तक पहुँचाएंगे डच भाषा में, यानी कि नीदरलैंड्स भाषा में। गंगा इस इन द हिंदुइज्म मेथियोलॉजी द रिफिर खोदिन फन द गंगास में द फिल्मशी फन एन मुदर खोदिन इन हेथ हिंदुइज्म वर्ड द गंगा रिफिर ऑफ गंगास आस सक्राल हसीन सही वर्ड फॉर एयर en gepersonificeerd als de godin Ganga, die een belangrijke plaats inneemt in het Hindoe-geloof. Hindoes geloven dat baden in deze rivier bij bepaalde gelegenheid de zonden wegwas en bevrijding vergemakkelijk. De Ganga is 2510 kilometer lange rivier die door India en Bangladesh stroomt. Hij begint op de Gangotri Gletscher in de Indiase stad Uttarakhand, nabij de grens met de Chinese autonomieregio Tibet en mondt uit in de golf van Bengalen. Voor de Hindoe is de Ganga's een heilige rivier. Hindoes vereren de riviergodin Ganga, waarom de 12 jaar een festival van 55 dagen wordt gevierd. Ook buiten dit festival ook trekken jaarlijks miljoenen Hindoes naar steden aan de Ganga's om hun ziel te reinigen door zich te wassen in de rivier. Als Hindoes sterven worden zij gecremeerd. Hun as wordt daarna als het kan in de Ganga's gestrooid. तो यहाँ तक हम थोड़ा से आपको बताएं हमारे गंगा माता के बारे में।
0: बहुत बहुत अच्छा जानकारी आपने दिया शांता जी डच में भी। हम आगे बढ़ते हैं। संजय जी आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं?
1: जरूर राजेंद्र जी, क्वेश्चन तो ये है कि ये बताइए कि गंगा का धर्म के ओर से उसका महिमा क्या है?
0: आप धार्मिक महत्व पूछना चाह रहे हैं?
1: धार्मिक महत्व,
0: ठीक है। भारत की अनेक धार्मिक अवधारणाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में निरूपित किया गया है। बहुत से पवित्र तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, जिनमें वाराणसी, हरिद्वार और प्रयागराज, उत्तरकाशी प्रमुख हैं। गंगा नदी को भारत की नदियों में सबसे पवित्र माना जाता है एवं यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। मरने के बाद लोग गंगा में राख विसर्जित करना मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं।
1: तो राजेंद्र जी, मोक्ष, ये मोक्ष क्या होता है?
0: मोक्ष यानी इनलाइटमेंट। इनलाइटन जब होता कोई व्यक्ति, मतलब उसी को मोक्ष कहते हैं। इनलाइटन तो आप समझते हैं
1: ना? नहीं समझता।
0: इनलाइटन का मतलब होता है,
1: में बोलना।
0: हाँ, इनलाइटन का मतलब होता है कि जो हमारी लाइफ है इसके बाद हम किसी भी जीव के रूप में इस पृथ्वी पे ना आए, बल्कि हम चले जाएं विष्णु लोक
1: या विष्णु लोक, भगवान के लोक,
0: भगवान के लोक। तो इसके बाद उसी को इनलाइटन बोलते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति पृथ्वी पे आता है, इस धरती पे आता है, तो अनेक प्रकार के कष्ट भोगता है, दुख सुख ये सब प्रकार का रहता
1: है। आज तो जो जो संदेश हम सबको आप सुनाए तो उसे सुन करके थोड़ा से, या ये नहीं कहना चाहूंगा कि डर गया, पर
2: डरना नहीं चाहिए, पर के चेतना जगाना चाहिए, करके आपसे सावधान हो जाए कि आपसे
1: इन चीजों से हमें और ध्यान देना है।
2: बिल्कुल
0: हाँ।
1: तो राजेंद्र जी, अगर आप वैसे तो आप जैसे कह रहे हैं, पर ये तो हमने सुना है कि शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से और बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से।
0: जी, यहाँ तक कि कुछ लोग गंगा के किनारे ही प्राण विसर्जन करने विसर्जन या अंतिम संस्कार की इच्छा भी रखते हैं। इसके घाटों पर लोग पूजा अर्चना करते हैं और ध्यान लगाते हैं। गंगा जल को पवित्र समझा जाता है तथा समस्त संस्कारों में उसका होना आवश्यक है। पंचामृत में भी गंगा जल को एक अमृत माना गया है। अनेक पर्वों और उत्सवों को गंगा में सीधा संबंध है। उदाहरण के लिए मकर संक्रांति, कुंभ और गंगा दशहरा के समय गंगा में नहाना या केवल दर्शन ही कर लेना बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसके तटों पर अनेक प्रसिद्ध मेलों का आयोजित किया जाता है और अनेक प्रसिद्ध मंदिर गंगा के तट पर ही बने हुए हैं। महाभारत के अनुसार मात्र प्रयाग में माघ मास में गंगा यमुना के संगम पर 3,10,000 तीर्थयात्रियों का संगम होता है। ये तीर्थ स्थल संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक एकता स्थापित करते हैं। गंगा को लक्ष्य करके अनेक भक्ति ग्रंथ लिए गए हैं।
1: तो राजेंद्र जी, ये बताइए कि लोग को हौसला होता है वहाँ जाने के क्योंकि इतना ज़्यादा तादाद में क्यों माघ मास में?
0: हाँ, लोगों का इच्छा होती है जाने की और गंगा माँ भी स्वयं उनको बुलाती हैं।
1: ओ, जैसे कि पिछले बार के कार्यक्रम में शांता जी ने ये कहे थे कि आपका पहुँच जब होगा, जब आपको निमंत्रण मिलेगा तभी आप पहुँचेंगे।
0: जी,
1: तो अपना हौसला बढ़ता है और वहाँ जाकर के और लोग दर्शन करते हैं।
0: हाँ, तो इतने प्रकार के ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें श्री गंगा सहस्त्र नाम स्त्रोत्रम और आरती सबके सबसे लोकप्रिय है। अनेक लोग अपने दैनिक जीवन में श्रद्धा के साथ इनका प्रयोग करते हैं। गंगोत्री तथा अन्य स्थानों पर गंगा के मंदिर और मूर्तियाँ भी स्थापित हैं, जिनके दर्शन कर श्रद्धालु स्वयं को कृतार्थ समझते हैं। उत्तराखंड के पंच प्रयाग तथा प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, गंगा की वही प्रसिद्ध संगम स्थल है जहाँ वहाँ अन्य नदियों से मिलती है।
1: पर राजेंद्र जी, आप इतना जल्दी जल्दी चला रहे हो और जरूर हमें अपना घड़ी का रफ्तार देखना, पर कृतार्थ इस पे थोड़ा से दृष्टांत डाल दीजिए ना।
0: किस चीज़ पे?
1: कृतार्थ, क्योंकि वहाँ पर मूर्तियाँ आदि है, तो अभी आपने ये शब्द प्रयोग किए।
0: हाँ,
1: कृतार्थ।
0: हाँ, अभी मैंने बोला कि दर्शन करने श्रद्धालु स्वयं को कृतार्थ समझते हैं,
1: तो उसका मतलब कि श्रद्धालु यानी कि भक्त लोग जो जाते हैं
0: वो अपने आप को धन्य समझते हैं।
1: धन्य, तो कृतार्थ। तो दोस्तों, ये कुछ अच्छे सुंदर सुंदर शब्दों, इसे हम सब भी और प्रयोग कर सके, क्योंकि हम ये सुंदर शब्दों से भी ये कार्यक्रम इकट्ठा बनाया जाता है। और आशा ये रखते हुए कि इसमें से कुछ कुछ शब्दों हम सब के लिए भी अपने जीवन में प्रयोग कर सके ना।
0: जी, गंगा के वो प्रसिद्ध संगम स्थल है जहाँ वह अन्य नदियों से भी मिलती हैं। ये सभी संगम धार्मिक दृष्टि से पूज्य माने गए हैं।
1: धार्मिक दृष्टि से पूज्य यानी कि जहाँ पर संगम हुआ।
0: हाँ,
1: तो ये भारत के कहाँ पर है राजेंद्र जी?
0: पंच प्रयाग हैं, जहाँ पे पांच प्रयाग की अभी गीता जी बात कर रही थी, और इसके बाद फिर वहाँ पे इलाहाबाद में संगम बना है, वहाँ की बात हो रही है।
1: इलाहाबाद तो गुजरात में, तो वहाँ शांता जी गए
0: नहीं,
1: थे ना?
0: इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में।
1: ओ, उत्तर प्रदेश में है।
0: हाँ,
1: ओ, अहमदाबाद है गुजरात में।
0: हाँ,
1: और पर वहाँ भी कुछ संबंध है ना।
0: हाँ,
1: ओके ओके। और शांता जी, ये बताइए कि आप वो संगम के पास गए कि नहीं, क्योंकि आप तो काफी, और
2: त्रिवेणी गंगा जमुना सरस्वती के संगम जहाँ हो रहा है,
1: वो वाला कहाँ पे है राजेंद्र जी?
0: वही तो इलाहाबाद में है,
2: प्रयागराज
0: जिसका नाम हो गया है,
1: उसका नाम है प्रयागराज।
0: जी,
1: और आप गए वहाँ, तो आपका कैसा महसूस हुआ शांता जी?
2: वहाँ पे दर्शन होता है, तीन नदियों का जो एक में मिलन होता है। ये सरस्वती नदी जो है उसका रंग दूसरा है ना राजेंद्र जी?
0: अभी पंडित जी ने बताया ना आपको कि वो एकदम बुद्धि की देवी है, और उन्होंने कितना अच्छा से आप नीचे से ऐसे वो बीच में दिखती है, किसी किसी को दिखती है क्योंकि वो विद्या की देवी है, और वो विद्या एकदम अंदर ही रहती, दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका ज्ञान है, ज्ञान की देवी है।
2: हाँ, तो तीन नदियां ऐसे स्पर्श दिखते देखने को मिलती है।
0: जी,
1: तो राजेंद्र जी, क्या आप कोई गीत रखने वाले हैं? हाँ, या मैं कुछ और कह
0: गंगा मैया में जब तक पानी रही, ये वाला गीत अभी रखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे।

0: मैया ओ गंगा मैया, बहुत ही अच्छा आपने लोगों ने अभी जो सुना है गाना, बहुत ही अच्छा था गंगा का। संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
1: जरूर कहना चाहूँगा राजेंद्र जी, क्योंकि परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता है। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार एवं हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखता है। तो राजेंद्र जी ये हमें बताइए कि कार्यक्रम जो चल रहा है माँ गंगा के, तो पौराणिक प्रसंग इसमें क्या है?
0: हाँ, इसमें जो पौराणिक प्रसंग हैं वो ये हैं, गंगा नदी के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। मिथकों के अनुसार ब्रह्मा ने विष्णु के पैर के पसीने की बूंदी से गंगा का निर्माण किया तथा पृथ्वी पर आते समय शिवजी ने गंगा को अपने सिर जटाओं में रखा। त्रिमूर्ति के तीनों सदस्यों के स्पर्श के कारण यह पवित्र समझा गया। एक अन्य कथा के अनुसार राजा सगर ने जादुई रूप से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति की। एक दिन राजा सगर ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए एक अश्वमेघ नामक यज्ञ किया। यज्ञ के लिए घोड़ा आवश्यक था जो ईर्ष्यालु इंद्र ने चुरा लिया था। सगर ने अपने सारे पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। अंत में उन्हें घोड़ा पाताल लोक में मिला जो एक ऋषि कपिल मुनि के समीप बना था। सगर के पुत्रों ने यह सोचकर कि ऋषि के ही घोड़े के गायब होने की वजह है, उन्होंने सोचा कि ऋषि ही इसकी वजह है कि घोड़ा गायब हो गया, उन्होंने ऋषि का अपमान किया। तपस्या में लीन ऋषि ने हजारों वर्ष बाद अपनी आंखें खोली और उनके क्रोध से सगर के सभी 60,000 पुत्र जलकर वहीं भस्म हो गए। सगर के पुत्रों की आत्माएँ भूत बनकर विचरने लगी क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। सगर के पुत्र अंशुमान ने आत्माओं की मुक्ति का असफल प्रयास किया और बाद में अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी, भगीरथ राजा दिलीप की दूसरी पत्नी के पुत्र थे, उन्होंने अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रण किया जिससे उनके अंतिम संस्कार कर राख को गंगा जल में प्रवाहित किया जा सके और भटकती आत्माएं स्वर्ग में जा सके। भगीरथ ने ब्रह्मा की घोर तपस्या की ताकि गंगा को पृथ्वी पर लाया जा सके। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हुए और गंगा को पृथ्वी पर उसके बाद पाताल में जाने का आदेश दिया ताकि सगर के पुत्रों की आत्माओं की मुक्ति संभव हो सके। तब गंगा ने कहा कि मैं इतनी ऊँचाई से जब पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो पृथ्वी इसका वेग कैसे सह पाएगी। तत्पश्चात भगीरथ ने भगवान शिव से निवेदन किया और उन्होंने अपनी खुली जटाओं में गंगा के वेग को रोककर एक लट खोल दी। लट मतलब एक बाल
1: खोल दिया।
0: एक बाल नहीं, मतलब लट मतलब जो बालों का एक गुच्छा, ऐसे जो लट खोलते थे उसने ऐसे खोल दिया।
1: आपने यहाँ दिखा दिया स्टूडियो में कि ऐसा खोल दिया, पर हमारे सुनने वालों तो कुछ देखा नहीं।
0: हाँ, तो समझ लेंगे कि जैसे आपने तीन लट बनी होती है लेडीज की बालों की, तो इतने बाल इकट्ठे होकर एक लट बोली जाती है, तो वो भगवान शंकर के इस प्रकार से जटा में बंधी होती है
1: जी।
0: तो जब गंगा उसमें घूमने लगी तो उन्होंने थोड़ा सा इसको बाल की एक लट खोली तो वहां से गंगा नीचे आ गई, जिससे गंगा की अविरल धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। वह धारा भगीरथ के पीछे पीछे गंगा सागर संगम तक गई जहाँ सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। शिव के स्पर्श से गंगा और भी पावन हो गई और पृथ्वी वासियों के लिए श्रद्धा का केंद्र बन गई। पुराणों के अनुसार स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी और पाताल में भगीरथी कहते हैं। इसी प्रकार एक पौराणिक कथा राजा शांतनु और गंगा के विवाह तथा उनके 7 पुत्रों के जन्म की भी है।
1: तो राजेंद्र जी, जब से मैं कार्यक्रम गंगा को और इसमें सम्मिलित हूँ और सुन रहे हूँ और अपना अपना संदेश हम सब जरूर दे रहे हूँ, पर मन में सिर्फ यही उठता है, बस यही गीत का मन करता है सुनने को कि तेरे मन का गंगा मेरे मन का जमुना। शांता, इस पे क्या कहेंगे आप? तेरे मन की गंगा और मेरे मन की जमुना। मैं और कुछ कहना चाहता था पर कहूंगा नहीं, क्योंकि आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं। तो राजेंद्र जी क्यों ना ये गीत को चला देते हैं।
0: हाँ जरूर।

0: बोल राधा भोल संगम होगा कि नहीं होगा? जरूर संजय जी, संगम होगा होगा होगा, आपका संगम जरूर होगा।
1: होगा होगा होगा,
2: तो हो गया संगम। सुनने वालों, संगम हो गया राधा और किसका हुआ?
1: किशन का,
0: कृष्ण का, भगवान कृष्ण एंड राधा का,
2: राधा और कृष्ण का संगम हो गया। दोस्तों, ये आज के कार्यक्रम जो हम सब उसमें संदेश ये लेकर आए थे कि गंगा का दर्शन और कैसे किया जा सकता है, गंगा माता के बारे में काफी और संदेश सुनाया गया, और कैसे राजेंद्र जी संदेश को रखे और हमारे साथ जुड़े ब्रॉडकास्ट में, और गीता नेगी जी जो भारत देश से। तो हम कार्यक्रम के धीरे धीरे समाप्ति की ओर चल रहे हैं। राजेंद्र जी, कौन सा गीत अब रखने वाले हैं आप?
0: हर सप्ताह की तरह जो हमारा गीत होता है वो यही होता है कि लागी छूटे ना सनम अब तो। तो इस गीत से ये पता चल जाता है कि हम लोगों का जो समय है वो अपने चरण सीमा तक पहुंच चुका है, और अब हम उसी को सुनाएंगे और सब लोग सुनेंगे।

फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी राजेंद्र सिंह का हार्दिक नमस्कार। आज का जो हमारा विषय था, मुझे लगता है कि सब लोगों को अच्छा लगा होगा और इसके लोग गंगा का दर्शन करने भी जाएंगे। भारत में बहुत सारे लोग तो गए हैं, जो नहीं जा पाए वो भी जाने की कोशिश करेंगे। और बहुत बहुत प्यार और नमस्कार सबको मेरी तरफ से, हार्दिक अभिनंदन। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी नया विषय को लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।

जिन्हें आप खुश देखना चाहते हो, जिन्हें आप खुश देखना चाहते हो तो उन्हें यहीं पर सुख देना। इसी वाणी के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। धन्यवाद सुनने के लिए और स्वीकार कीजिए मेरी यानी कि शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम।

जिंदगी छोटी नहीं होते है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते है, जब तक रास्ते समझ में आते है तब तक लौटने का वक्त हो जाता है, बस यही जिंदगी है। फाहुन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो कि आज का कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश सुने। आज के कार्यक्रम में सहयोग देने वाले गीता नेगी जी जो भारत से हम सब के साथ दिए, शांता जी और हमारे पैनल के पीछे जो हर सप्ताह की तरह राजेंद्र सिंह जी, और मैं हूँ आपका सेवक संजय। आशा यही है कि अगले सप्ताह के कार्यक्रम आप इंतजार करते रहना, हम सब फिर मिलेंगे। नमस्कार।

प्रभु भक्तों, ये राम कथा हमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य का बोध कराती है। तो आइए शुभारंभ करते हैं रामायण का तीसरा कांड, अरण्य कांड।

अयोध्यापति दशरथ नंदन करुणायतन प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्तों, देवराज इंद्र के मूर्ख पुत्र ने प्रभु का बल देखने के लिए आपको पहले से बताए हुए तुच्छ कर्म किए, परंतु जब संपूर्ण ब्रह्मांड में उसे कहीं शरण न मिली तो देव ऋषि नारद जी ने उसे बताया कि हे जयंत, श्री राम के विरोधी को भला कौन शरण दे सकता है, अतः अब तुम प्रभु श्री राम की ही शरण में जाओ। वो प्रभु श्री राम दया के सागर हैं, वे शरणागत को नहीं ठुकराते, यह उन्हीं की बाण है। भक्तों, तब वो दुष्ट कौवा प्रभु श्री राम की शरण में जाकर त्राही माम करने लगा, तो श्री रघुनाथ जी उसकी आंख से वो तिनका निकाल कर

जिन्होंने अपने पतिव्रत धर्म के बल से ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को नवजात शिशु बनाकर पालने में झुलाया था, उन्हीं माता अनसुईया ने वैदेही सीता जी को नारी धर्म की शिक्षा प्रदान की। माता अनसुईया बोली, पुत्र सीता धीरज

मित्र और नारी के आपत्ति काल में ही परीक्षा होती है। पति चाहे वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी अथवा दीन ही हो, परंतु नारी को उसका अपमान नहीं करना चाहिए। मन, कर्म, वचन से पति चरणों की सेवा ही नारी का एकमात्र धर्म है। पुत्री सीता, संसार में चार प्रकार की पतिव्रता नारियां हैं। प्रथम, जो नारी पति के सिवा अन्य पुरुष को सपने में भी नहीं देखती। दूसरी, जो पर पुरुष को पिता, भाई एवं पुत्र के समान देखती है। तीसरी, जो धर्म एवं कुल की मर्यादा के कारण पतिव्रत धर्म का पालन करती है। तथा चौथी वे हैं जो अवसर न मिलने के कारण व्यभिचारिणी यानी उल्टा नहीं हो पाती।

जब सीतापति श्री रघुनंदन जी वन में आगे चले तो एक स्थान पर हड्डियों का एक ढेर देखकर प्रभु ने मुनियों से उस ढेर के विषय में पूछा तो मुनियों ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहा कि हे स्वामी, आप सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं, फिर भी अनजान की भांति हमसे पूछते हैं तो हम बतलाते हैं। प्रभु, राक्षसों के दलों ने ऋषि मुनियों को खा डाला है। यह उन्हीं ऋषियों के अस्थि समूह है। आह, करुणा निधान दयालु श्री राम जी के नेत्रों में जल भर आया। कंठ अवरुद्ध हो गया, यानी आवाज नहीं निकल पा रही थी। फिर महाबाहु श्री रामचंद्र जी ने दोनों भुजा उठाकर संकल्प किया, यानी प्रतिज्ञा की कि मैं रघुवंश क्षत्रिय दशरथ पुत्र राम आज प्रण करता हूं, यानी शपथ लेता हूं कि जब तक पृथ्वी को राक्षसों से हीन न कर दूं, तब तक चैन की श्वास नहीं लूंगा।

की वल्लभ करुणा के अथाह सागर श्री रामचंद्र जी मुनि अगस्त्य जी के चरणों में शीश झुकाकर सीता जी एवं अनुज लक्ष्मण जी के साथ आगे चले और पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचे। यह स्थान अत्यंत सुंदर सबके मन को हरने वाला था। प्रभु श्री राम जी ने एक सुंदर परन कुटीर बनाकर सीता जी एवं लक्ष्मण के साथ वहीं निवास किया। जब प्रभु श्री राम जी ने पंचवटी पर निवास किया हर ओर आनंद ही आनंद छा गया। पर्वत नदी और तालाब अत्यंत शोभायमान हो गए। एक दिवस सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से अत्यंत विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा,

प्रिय सौमित्र, भक्ति सुगम मार्ग है जिसे जीव मुझको सहज ही प्राप्त कर लेता है, परंतु भक्ति भी उसी को मिलती है जिसकी पृथ्वी के देवता सिद्ध प्राणी के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद के अनुसार जीते हैं और कर्म में रत। हे लक्ष्मण, भक्ति का फल वैराग्य, वैराग्य का धर्म में दृढ़ता और धर्म में प्रेम का फल मेरी प्राप्ति है। भक्ति नौ प्रकार कही गई है। इस प्रकार धर्म रक्षक मर्यादा का निर्वाह करने वाले रघुकुल दीपक श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को ज्ञान, वैराग्य, माया, जीव, ईश्वर एवं भक्ति का उपदेश दिया, जिसे श्रवण करके सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी धन्य हो गए। एक दिवस

प्रभु श्री रामचंद्र जी के संकेत पर सुमित्र लक्ष्मण जी ने उस दुष्टा राक्षसी सूर्पनखा के नाक और कान काट दिए। रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मानो उन्होंने लक्ष्मण के हाथों सूर्पनखा के नाक कान कटवा कर राक्षस राज रावण को चुनौती दी। उधर सूर्पनखा रोती बिलखती हुई खरदूषण नाम के राक्षसों के पास गई। नाक कान से रक्त इस प्रकार बह रहा है मानो विशाल काले पर्वत से गिरू का झरना फूट रहा। सूर्पनखा ने रोते बिलखते हुए खरदूषण को संपूर्ण आप बीती सुनाई तो खरदूषण क्रोध में आकर अपनी सेना लेकर श्री राम लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए चल दिए।

पुलस्त्य वंश में उत्पन्न हुआ विशर्वा ऋषि का पुत्र राक्षस राज महाबली रावण को जब सुरपनखा ने खरदूषण वध का समाचार सुनाया तो रावण ने सुरपनखा को समझाकर अपने बल का बखान करके महल में भेज दिया। परंतु रावण स्वयं चिंता मग्न हो गया। रावण विचार करने लगा कि खरदूषण तो मेरे समान बलशाली थे, उनको भगवान के सिवा अन्य कोई नहीं मार सकता। इसका अर्थ है श्री भगवान ने धरती का भार धारने के लिए अवतार धारण कर लिया है, अतः अब मैं उनकी स्त्री का हरण करके उनसे वैर करूं, क्योंकि इस तामस शरीर से भजन तो होता नहीं। यदि वे कोई साधारण मानव हैं तो उन्हें युद्ध में मारकर यश पाऊं, और यदि वो स्वयं श्री हरि हैं तो उनके कर कमलों से मृत्यु पाकर उनके धाम जाऊंगा।

बेचारा मारिच इधर कुआं उधर खाई। यदि रावण के कहे अनुसार नहीं किया तो रावण मार डालेगा, और यदि इसका कहा मानकर सोने का हिरण बना तो प्रभु श्री राम के हाथों मृत्यु। तब मारिच ने निश्चय किया कि इस पापी के हाथों मरने से अच्छा यही होगा कि मैं श्री हरि के हाथों मरकर उनके धाम जाऊं। तब मारिच सोने का सुंदर हिरण बन गया और पंचवटी आश्रम के निकट जाकर उछल कूद करने लगा। जब जनक नंदनी श्री राम वल्लमा सीता जी ने उस अदित्य मृग को देखा तो सीता जी ने विनय पूर्वक श्री राम जी से कहा, हे नाथ, देखिए कितना सुंदर हिरण विचर रहा है।

मायावी मृग पर जब प्रभु श्री रघुनाथ जी ने बाण चलाया तो उसने श्री राम जी की आवाज में हाय लक्ष्मण पुकारा। उधर आश्रम में जब सीता जी ने ये दुख भरी वाणी सुनी तो उन्होंने सोचा कि स्वामी किसी संकट में है। तब उन्होंने लक्ष्मण जी को श्री भगवान के रक्षा हेतु जाने का आदेश दिया। सुमित्रा नंदन ने आश्रम से जाते हुए मंत्रपूरित एक रेखा आश्रम के चारों ओर खींचकर कहा कि हे माता, आप इस रेखा से बाहर मत जाना, ये रेखा आपकी रक्षा करेगी। इस रेखा के अंदर जो भी जीव प्रवेश करेगा वो वहीं भस्म हो जाएगा। उधर लंकापति रावण आश्रम को सुना देख याचक के वेश में आश्रम पर जा पहुंचा और भिक्षाम देही कहकर अलख जगाई।

जिस प्रकार बधिक के मजबूत जाल में कोई नन्ही सी चिड़िया फंसकर केवल पंख फड़फड़ाती है, उसी प्रकार जनक नंदनी श्री सीता जी दुष्ट और महाबली रावण के कब्जे में केवल हे राम रक्षा कीजिए की दर्द भरी पुकारे कर रही है। जब आकाश में विचरण करते हुए गिद्धराज जटायु ने श्री राम नाम एक नारी स्वर में सुना तो उसने सीता जी को पहचान लिया कि ये तो मेरे सखा महाराज दशरथ की पुत्र वधु सीता है। अतः जटायु ने सीता को रावण के बंधन से छुड़ाने हेतु राक्षस राज रावण से युद्ध किया, परंतु रावण ने तलवार से जटायु के पंख काटकर उसे भूमि पर गिरा दिया एवं सीता को लेकर उड़ चला।

अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, आनंद के राशि, अजन्मा एवं अविनाशी श्री रामचंद्र जी एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप कर रहे हैं। पशु पक्षी पुष्पलताओं झरने आदि से एक अबोध शिशु की भांति श्री सीता जी का पता पूछ रहे हैं। अनुजी लक्ष्मण जी उन्हें धीर बंधाते हैं। इस प्रकार चलते चलते उन्हें घायल अवस्था में गिद्धराज जटायु मिलता है, जो उन्हें बताता है कि हे प्रभु, जनक दुलारी सीता जी को लंकापति रावण बलपूर्वक ले गया है। इतना कहकर जटायु प्रभु श्री राम की बाहों में प्राण त्याग कर उनके धाम को चला जाता है। गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक करके श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं।

श्री रघुनाथ ने शबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई। श्री राम जी बोले, हे भामिनी, सावधान होकर 9 भक्ति सुनो। प्रथम भक्ति संतों का संग, और दूसरी भक्ति मेरी कथा प्रसंग में प्रेम। हे भामिनी, गुरु के चरण कमलों की सेवा अभिमान रहित होकर करना मेरी तीसरी भक्ति है, और कपट तजकर मेरे गुण समूह का गान करना चौथी भक्ति है। मेरे मंत्र का जाप और मुझ में अटल विश्वास पांचवी भक्ति है। इंद्रियों को वश में करके निरंतर संतों के धर्म में लगे रहना छठी भक्ति है। संपूर्ण विश्व को राममय देखना और संतों को मुझसे अधिक महत्व देना सातवीं भक्ति है। और जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना तथा पर दोषों को न देखना आठवीं भक्ति है। कपट रहित होकर मेरा भरोसा करना, हे भामिनी, मेरी नवीं भक्ति है।

श्री रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी आगे चलते। राह में श्री रामचंद्र जी अनेक प्रकार से विलाप करते हुए जा रहे हैं, जिनका नाम लेते ही मनुष्य समस्त दुख संताप संयोग वियोग से दूर हो जाता है। आज वही गुणातीत श्री रामचंद्र जी एक साधारण मनुष्य की भांति लीला कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं राम की लीला राम ही जाने। दोनों भाई चलते चलते पंपा नामक सरोवर के निकट पहुंचकर सरोवर के शीतल जल में स्नान करते हैं। तभी वहां देव ऋषि नारद जी आकर श्री राम जी को प्रणाम करके वर्णन करते हैं कि हे प्रभु, यद्यपि आपके अनेकों नाम हैं, वे सब जो एक से बढ़कर एक हैं, तो भी हे नारद, राम नाम सबसे बढ़कर हुए। तब श्री रघुनाथ जी एवं अस्तु कहकर नारद जी को

भक्ति का मार्ग ही प्रभु को पाने के लिए सहज उपाय बतलाया गया। कलयुग में प्रभु को पाने का तीन रास्ते ऋषियों ने बतलाए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान और कर्म का रास्ता पकड़कर हम इस घोर कलयुग में सफल नहीं हो सकते। ये कलयुग के लिए केवल भक्ति मार्ग सबसे उत्तम मार्ग है। भक्ति के लिए समय, स्थान, जात पात की कोई भी पाबंदी नहीं।

श्री रामायण के प्यारे श्रोताओं, ये राम कथा हमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य का बोध कराती है। तो आइए शुभारंभ करते हैं रामायण का चतुर्थ कांड, किष्किंधा कांड।

श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्तजनों, जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जनक दुलारे सीता को खोजते हुए शबरी द्वारा बताए ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुंचे, तो ऋषिमुख पर्वत पर बैठे सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि हे अंजनी नंदन हनुमान, देखो तो सामने से दो सुंदर पुरुष आ रहे हैं। तुम ब्रह्मचारी वेश में जाकर पता लगाओ कि ये दोनों वीर पुरुष कौन हैं और किस हेतु से इधर आ रहे हैं। यदि ये बाली के भेजे हुए हो तो तुम मुझको संकेत कर देना, मैं यह स्थान छोड़कर कहीं और भाग जाऊंगा। तो भक्तों, तब हनुमान जी ने विप्र वेश में जाकर राम जी से उनका परिचय पूछा, तो प्रभु श्री राम जी

श्री रामचंद्र प्रभु ने विप्र रूपधारी हनुमान जी को अपना परिचय दिया तो हनुमान भाव विवल हो उठे, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया, शरीर रोमांचित हो उठा, मुख से शब्द नहीं निकलते। फिर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भक्तों, इसी प्रकार होता है भक्त और भगवान का मिलन, सेवक और स्वामी का संयोग। दया सिंह श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी को बाहों में पकड़कर उठाया और हृदय से लगा लिया। राम प्रभु ने हनुमान जी को और हनुमत ने प्रभु को जी भर निहारा। फिर हनुमान जी श्री भगवान से हाथ जोड़कर विनय

शंकर सुमन केसरी नंदन श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी एवं वानर राज सुग्रीव की मित्रता अग्नि को साक्षी करके कराई। श्री भगवान ने सुग्रीव को गले से लगा लिया। सुग्रीव को तो मानो संपूर्ण ब्रह्मांड का राज्य मिल गया हो। पश्चात लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को श्री रघुनाथ जी का सारा वृतांत कह सुनाया। तब सुग्रीव नेत्रों में जल भरकर बोला, हे नाथ, मैं अधिक तो नहीं कहता, परंतु मिथिलेश कुमारी सीता जी का आपसे मिलन कराने के लिए मैं और मेरे समस्त बंधुगण अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। आप धैर्य रखें और हे प्रभु,

जब वानर राज सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को धीरज बंधाया तब प्रभु श्री राम का मन शांत हुआ और उन्होंने विनय पूर्वक सुग्रीव से पूछा कि हे वानर राज, तुम्हारी बाली के साथ क्या शत्रुता है? बाली और तुम तो दोनों सगे भाई हो, फिर क्या कारण जो बाली तुम्हारे प्राणों का शत्रु बन गया और तुम्हें बाली के भय से यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर रहना पड़ रहा है? हे सुग्रीव जी, तुम मुझसे कुछ भी मत छिपाना। तो भक्तों, तब वानरपति सुग्रीव जी बोले कि हे कृपालु, दीनों पर दया करने वाले जड़ चेतन चराचर जगत के स्वामी, मैं और बाली सगे भाई हैं। हम दोनों बड़े प्रेम से रहते थे, पर

हे प्रभु, वह दैत्य बाली के बल को जानकर एक गुफा में घुस गया। तो बाली ने मुझको कहा कि हे सुग्रीव, मैं भी गुफा में जा रहा हूं, तुम 15 दिन यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करना। यदि मैं 15 दिन में वापस न आया तो समझ लेना कि मैं युद्ध में मारा गया। तब हे दीनानाथ, मैंने एक माह गुफा के बाहर बैठकर बाली की प्रतीक्षा की। जब गुफा से रक्त की धारा बहने लगी तो मैंने समझा कि बाली युद्ध में मायावी के हाथों मारा गया, और मैंने अपने प्राणों के भयवश उस गुफा के द्वार पर एक भारी पत्थर रख दिया और मैं किष्किंधा लौट आया।

हे रघु कुलभूषण श्री रामचंद्र जी, उस महापापी ने मेरी भारिया को अपनी पत्नी बनाकर रख लिया है और मैं उसके भय से इस पर्वत पर रहता हूँ, क्योंकि श्रापवश बाली इस पर्वत पर नहीं आ सकता। हे स्वामी, बाली में अप्रमित बल है और फिर उसे ये वरदान भी प्राप्त है कि जो उसके सामने आकर लड़ेगा उसका आधा बल बाली में स्वतः ही आ जाएगा। और हे रघुनाथ जी, सामने जो ताड़ के साथ वृक्ष आप देख रहे हैं, जो व्यक्ति इन वृक्षों को एक बाण से गिरा देगा वही बाली को मार सकता है। अतः हे अंतर्यामी, बाली को मारना बहुत कठिन है। तब करुणा के सागर श्री रामचंद्र जी बोले,

तब प्रभु श्री राम जी बोले कि हे सखा सुग्रीव, अब तुम सारी चिंता त्याग दो, मैं हर प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा। इतना कहकर श्री रघुवीर जी ने ताड़ के सात वृक्षों और दुदुम्बे राक्षस की हड्डियों के ढेर को पल भर में गिरा दिया। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव को ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब सुग्रीव विनम्र वाणी से बोला, हे प्रभु, अब मैं धन संपत्ति राज्य आदि पाकर क्या करूं? प्रभु, अब तो ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सब कुछ त्याग कर दिन रात आपका ही भजन करूं। तब श्री रघुवीर जी बोले,

जब सुग्रीव की आवाज सुनकर बाली क्रोध में आकर तीव्र वेग से दौड़ा तो बाली की पत्नी तारा ने बाली के चरण पकड़कर उसे रोक लिया और हाथ जोड़कर बोली कि हे स्वामी, सुग्रीव जिनके बल पर आपको ललकार रहा है वे दोनों भाई कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे दोनों बल और तेज की सीमा है, आप उनसे वैर ना करें। तब बाली ने कहा कि हे तारा, सुनो, रघुनाथ जी समदर्शी है, उनके लिए तो मैं और सुग्रीव दोनों समान हैं, परंतु फिर भी यदि श्री राम जी मुझे मारेंगे तो भी मैं सनात हो जाऊंगा, अर्थात उनके हाथों मृत्यु पाकर मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर बाली सुग्रीव से युद्ध

मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के गले में हार पहनाकर सुग्रीव को पुनः साहस बंधाकर बाली से युद्ध करने के लिए भेज दिया और स्वयं वृक्ष के पीछे छुपकर खड़े हो गए। जब बाली और सुग्रीव का युद्ध शुरू हो गया तो प्रभु श्री राम जी ने बाली को लक्ष्य बनाकर बाण छोड़ दिया। बाली ने जय श्री राम कहकर प्राण त्याग दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण एवं हनुमान जी को किष्किंधा भेजकर सुग्रीव का राज्य अभिषेक कराया। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी एवं अनुज लक्ष्मण प्रवर्षण नामक पर्वत पर निवास करने लगे। वर्षा ऋतु आई और श्री राम जी के हृदय में

जब पवन कुमार श्री हनुमान जी ने वानर राज सुग्रीव को प्रभु श्री राम का कार्य याद दिलाया, तब सुग्रीव भयभीत हो उठा और हनुमान जी से बोला कि हे वीर हनुमान जी, भोग और विषयों ने मेरे ज्ञान का हरण कर लिया था। हे पवन पुत्र, अब जहां तहां वानरों के दल रहते हैं, वहां वहां हमारे दूतों को भेजकर संदेशा भिजवा दो कि एक पखवाड़े में सभी इस किंधा पहुंच जाए। तब हनुमान जी ने सब दूतों को सुग्रीव का आदेश सुनाकर रवाना कर दिया। तभी लक्ष्मण ने नगर में प्रवेश किया तो सुग्रीव अपनी पत्नी और युवराज अंगद को आगे करके

श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर झुकाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। ये माया आपकी अति कृपा से छूटती है। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनिगण सभी विषयों के वश में है। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ, इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले कि हे सखा, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिससे जनक नंदनी सीता की खबर मिले। उसी समय वानरों के झुंड वहां आकर एकत्रित होने लगे।

नरेश महाराज सुग्रीव ने अंगद नल नील जामवन एवं हनुमान आदि वीर योद्धाओं को बुलाया और बोले, हे वीरों, आप सभी चतुर एवं बलशाली हो। तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और मन कर्म वचन से प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य करो। सुग्रीव के वचन सुनकर अंगद नल नील और जामवंत आदि योद्धा श्री राम को सिर झुका झुका कर चले। तब श्री राम जी ने पवन कुमार हनुमान जी को अपने पास बुलाया और उन्हें अपने हाथ की अंगूठी देकर बोले, हे हनुमान, यदि सीता से भेंट हो

श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्तजनों, जामवंत जी ने पवन पुत्र जनीलाल श्री हनुमान जी को जब ऋषियों के श्राप और हनुमान जी का अपना बल भूल जाने की कथा सुनाई, तब हनुमान जी को अपना बल याद आ गया और उनका शरीर अति विशाल हो गया। श्री हनुमान जी बोले, हे जामवंत जी, मैं इस समुद्र को पल भर में लांघ सकता हूँ। रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत समेत लंका को उठाकर यहाँ ला सकता हूँ। अब आप ही मुझे उचित आदेश दें। तब जामवंत जी बोले कि हे हनुमान, तुम केवल सीता जी की खबर लेकर और धीर बंधाकर वापिस आ जाना, शेष कार्य श्री रघुनाथ जी स्वयं कर लेंगे।

मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राम के उपदेश और उनकी कही हुई बातों का सम्मान पूर्वक आचरण में लाने से हमारा जीवन भी मर्यादा से भरेगा और हम भी प्रभु को पाने के अधिकारी बन सकते हैं।

परमात्मा सब देश काल आदि में परिपूर्ण है। संसार के सत्यता मानने से ही मनुष्य परमात्मा से दूरी का अनुभव करता है।

गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं। कुछ संदेश भी रखा जाएगा।

जानते हैं कि मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ अर्थात अति उत्तम सबसे श्रेष्ठ और अच्छे श्रेणी का प्राणी है।

विचारणीय बात है, क्या वास्तव में वे सर्वश्रेष्ठ है। यदि वर्तमान स्थिति का अवलोकन करें तो पाएंगे कि मनुष्य सर्वोत्तम से निम्नतम श्रेणी का बन चुका है।

जल निमंता की ओर गिरता जा रहा है, कारण कि परमात्मा ने मानव संरचना में आवश्यक अंगों का निर्माण किया है। एक एक अंग अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका एक विशेष प्रयोग होना था। आइए आइए जानिए किस प्रकार जो हमारे अंगों है उन्हें हमें प्रयोग करना चाहिए था।

जैसे कि संतों ने निर्माण किया है कि जैसे हमारे आंखें हमारे शरीर के अंग भी है, जिससे इस संपूर्ण जगत को देख पाते हैं। इसका मूल प्रयोजन था कि हरि दर्शन, संत का दर्शन और लौकिक अनुभवों का दर्शन। परंतु संसार में व्यक्ति ने अज्ञानवश इन नेत्रों का दुरुपयोग कर इन्हें मलिन कर दिया है। बाहरी जगत के गलत दृश्य देखकर हमारे नेत्र मलिन होते चले गए।

संतों ने क्या खूब लिखा है कि दूसरा जो ईश्वर ने हमें दो सुंदर हाथ दिया है, हाथों का प्रयोजन था कि दूसरे के हित के लिए निस्वार्थ सेवा, संतों की सेवा, दान आदि करना, परंतु नादान मनुष्य पाप की सीमा पार कर चुका है।

हाथों से वे दूसरे की हत्या तक कर डालता है। कुंकर्म करता है जिसके कारण हमारे हस्त मलिन हो गए।

तीसरे अंक तीसरा, परमात्मा ने मनुष्य को एक जिह्वा दी है। जिसका गुण था कि बोलना हमें सत विचारों, शुभ वाणी और मंत्रों उच्चारण द्वारा जिह्वा को पवित्र बनाना था, परंतु दुर्भाग्य से आज इस जिह्वा का प्रयोग दूसरों को भला बुरा कहने, अवगुणों का बखान, दोषों वे कमियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इससे समाज, परिवार और राष्ट्र में दुखों, फसाद और लड़ाई झगड़े शुरू हो गई। परिणाम स्वरूप जिह्वा मलिन हो गई।

चौथे अंग के अंतर्गत हमारे संतों ने लिखे हैं कि परमात्मा ने मानव संरचना में ये बुद्धि प्रदान किया है। बुद्धि जिसका प्रयोजन था कि परमात्मा यानी कि उस परम तत्व के विशेष में जानना, परंतु बुद्धि का प्रयोजन हमने कांच के टुकड़ों, सोने चांदी बाहरी धातु को तराशने में किया। बाहरी जगत के जानकारी एकत्र करने के लिए किया। संसारिक विशेषों के बारे में जानकर बुद्धि मलिन हो गया। चलो हम एक भजन की ओर बढ़ते हैं और उसके बाद हम ये संदेश को आगे रखने की कोशिश करेंगे।

सुनने वालों, परमात्मा ने मनुष्य को दो श्रवण भी दिए हैं। श्रवणों को प्रयोग हरि चर्चा को सुनने के लिए करना था, परंतु इन श्रवणों से हम दूसरों की निंदा चुगली सुनते हैं और इन्हें मलिन कर बैठे हैं।

कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर को स्वच्छ और निर्मल रखने हेतु प्रतिदिन उसे स्नान कराना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जीवन को निर्मल बनाने के लिए भक्ति रूप जल से इसे स्नान कराना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे।

कार्यक्रम को जो अलमेरा शहर से पंडित राजन जी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और उनके ओर से ये संदेश भी रखा जाता है कि शिक्षा अकेला ना कर पाएगी, मानव का उद्वार शिक्षित होकर करना होगा, विकारों का संहार।

आगे कहते हैं कि घंघोर है हो चुकी निशा की तमस की छाई है दुर्भावों की हर कन में उमसी छरण करो अज्ञानता का ले धर्म का आधार दीक्षित होकर करना होगा विकारों का संहार।

भौतिकता की डोर में अध्यात्म है लुप्त हुआ, मानवता का मरम ही हर हृदय में सुप्त हुआ। व्यक्ति नहीं किया कभी प्रतिपालक का आभार, दीक्षित होकर करना होगा विकारों का संहार।

सुनने वालों, जैसे कि हमारे कार्यक्रम को सुनने वाले हैं इस तनहा शहर से श्रीमती विमला जी, जो अपना बचपन का संदेश भी अभी रखे और कह रहे थे कि ब्लुमंदाल के निवासी क्रोबियास्त्रात में जन्म से और वहाँ अपने भाइयों बहनों माता पिता के साथ रहते और आज 50 साल से भी ज़्यादा के बाद सोच करके इस संदेश को रखते हैं कि जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही कोई दुश्मन, वे तो हमारे घमंड और ताकत या व्यवहार से बनते हैं। यह सुंदर सा संदेश उनके ओर से रखा गया और कहते हैं कि जिंदगी को अगर खोल करके जीना है तो थोड़ा सा झुक करके जियो, तब देखो फिर ये ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देंगे।

संदेश रखा गया और हमारी एक और संदेश जो यूएफ वैष्णवी जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और उनके ओर से ये संदेश रखा जा रहा है, पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है, सूरज गर्म जरूर होता है लेकिन अगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। यह वैष्णवी के ओर से यह सुंदर सा संदेश जो सैफन हाउस के निवासी

दोस्तों, अगर हम देखें तो एक और संदेश आए हैं डनहाग फिशरस्ट्रात से श्रीमती मरेका जी, उनके ओर से ये संदेश हमें और सुनने को प्राप्त होगा कि कोई लिखा हुआ दस्तीज नहीं है, इसे तो रोज रोज स्वयं ही लिखना पड़ता है।

कार्यक्रम को लेलीस्तात शहर में श्रीमती अहिल्या जी भी सुनते हैं और उनके ओर से उन्हें भी कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, कुछ संदेशों भी उनके ओर से और रखा जा रहा है। संदेश में ये संदेश है कि अंतिम सांस गिन रहे जटायु ने कहा कि मुझे पता था कि मैं रावण से युद्ध नहीं जीत सकता, यदि मैं युद्ध नहीं करता तो आने वाले पीढ़ियां मुझे कायर कहती, क्योंकि नारी का अपहरण होता रहा और तुम चुप कर बैठे रहे। धर्म मिटने का है, धर्म रक्षा के लिए अगर राम नहीं बन सकते तो कम से कम जटायु तो बनो।

श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। ये सुंदर सा भजन हम सुने और कहते हैं दोस्तों कि मृत्यु और अमृतत्व, मृत्यु और अमृतत्व दोनों एक ही देह में निवास करते हैं। कहते हैं कि मोह के पीछे भागने से मृत्यु आती है और सत्य के पीछे चल

दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि शब्द का भी तापमान होता है। कहते हैं कि शब्द जो कि तापमान कभी गर्मी हो जाता है, ये सुकून भी देता है और जला भी देता है। तो आपको एक शुभ दिन प्रस्तुत करते हुए और इस पे आप जरूर ध्यान देना। कहते हैं कि शब्द का भी तापमान होता है। ये सुकून भी देता है और जला भी देता है। और आप चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से, इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक प्रांत में इसको सुना जा सकता है। और जो अभी चुन किए हैं फाहुन पे, तो उसे हार्दिक से अभिनंदन।

होगा ये मुझे ना पता। मैं आपके साथ जुड़ गए हूं, इस बात को कहूंगा कि आप जुड़े हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से। कहीं भी आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हो, दुनिया के हर एक देश में इंटरनेट द्वारा सभी को हार्दिक से

ब्रॉडकास्ट होता है डेन हाग शहर से। एक शहर है जो हॉलैंड देश में स्थित है। एक शहर जहां हमारे हिंदुत्व काफी तादाद में रहते हैं। एक शहर है जहां आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, यह सब प्राप्त होगा।

Drama film. Joe, 1960 me banaga. Produced by S.A.B.

कहते हैं कि रिटन एंड डायरेक्ट बाय किशोर साहू। सुनवाला हमारे कार्यक्रम जो सुन रहे हैं श्रीमती अहिल्या जी कैंपनार लेलीस्ताद से, उन्होंने फोन कर दिया और अपना जो पुराने बातें का जिक्र किया। पुराने बातें का जिक्र किया कि आज से कुछ 40 साल से भी ज्यादा वो सुरीनाम गए थे अपने बच्चों के साथ। और कहते हैं कि उनके बहन के पास रहते थे। उन्होंने कहा कि हमें इस बात को ख्याल आ गया और हमने अपना कसैत बांज जो है और जल्दी से निकाल कर हमें भी सुना दिया। कि कहने के तात्पर्य यह है, अजीब दासता हूं मैं, कहां शुरू और कहां खत्म होने वाला है यह हम नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि हमें ये ख्याल आ गया कि जब मेरा 30 साल का सालगिरह था तो हमारे बहन ने खास फरमाइश चलवाए थे सुरीनाम में।

दोस्तों सुनने वालों, अगर आपकी ओर से कुछ संदेश है तो जरूर आप हमसे संपर्क कीजिए, क्योंकि श्रीमती अहिल्या जी के लिए तो एक सुंदर सा गीत जो उस समय उनके लिए खास फरमाइश द्वारा चलाया गया था, वो हम कोशिश करेंगे रखने के लिए।

जिंदगी के सफर एक ऐसा सफर जो श्रीमती अहिल्या जी कैंपनर लेलीस्ताद से अपना कसत भंज हमें सुनाई। अभी हमारे जीवन में एक चीज तो तय है,

आता है तो ये दर्शाता है कि दुनिया से अलग होने का समय आ गया है। क्योंकि कहते हैं अजीब दासता है ये, और ये भी सिखा जाते हैं कि सब अपेक्षा करते हैं कि परिवार के लोग भी साथ छोड़ देते हैं।

संतों का बात सुनना अच्छा होता है कहते हैं कि उसे ही जपो और उसे ही भजो।

जिंदगी के सफर कैसे गुजर जाते हैं, आपकी कसम फिल्म से निकाला गया है वो गीत। किशोर कुमार जी की आवाज में और कहते कि समय कितना जल्दी गुजर जाता है ना।

किसी ने अच्छे कहा है कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है।

ये दास्ता है ये। कहते हैं कि दुनिया में सबसे वजनदार चीज है मतलब। यानी कि अतखविखत वोर्त ये निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का पड़ जाता है।

0: जाता है
1: क्योंकि एक पल में ये आगे निकल जाता है। सुनो लो, हम एक और सुंदर सा गीत आपके लिए चुन करके रखे हैं, क्यों ना हम उसे सुन लेते हैं।

आगे बढ़ने के लिए भी कुछ कुछ तो करना पड़ता है। कहते कि मेहनत करो तो धन बने, मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम। मीठी बोलो तो पहचान बने, और इज्जत करो तो नाम।

ही कहा जाता कि सत्य ज्ञान और अनुशासन के मार्ग पर चले। मत सोच जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी कुछ सोचे होंगे।

जियो अपने आजादी से, समय का काम है गुजर जाना, कुछ पल संभाल कर जी लिया करो।

यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ। कहते कि यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण हो तो बात भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ।

ही ऐसा समय भी आ जाता है कि किनारा ना मिला, किनारा मिलता ही नहीं। और इस पे कहा गया है कि किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को दुबाकर कभी मत टैरो।

किसी को दुखी करके आप कुछ दिन खुश रह सकते हो, लेकिन फिर आपको अपने किए गए कर्मों का भुगतना होगा। और ये भुगतना जो कहे गए हैं, कुछ ख्याल भी आता है, क्योंकि सफलता उन लोगों का इंतजार करती है जो कठिन परिश्रम करते हैं। और ये जो भरोसा और विश्वास होगा, भरोसा और विश्वास होगा तो सभी अपने ही लगेंगे। और कहते हैं ना कि शंका और अविश्वास करोगे अगर आप शंका और अविश्वास करोगे तो अपने भी पराये ही लगेंगे।

कहती है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आना भी जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि किसने चढ़ते वक्त धक्का लगाया और किसने उतरते वक्त।

इस बात पे ध्यान देना। कि अजीब दासता कहां शुरू और कहां खत्म, शुरुआत तो शायद हम रजिस्टर कर चुके हैं,

ना मालूम होते हैं। और सुने वालों, इस बात पे हम जरूर ध्यान दें कि हद से ज्यादा विश्वास आपको धोखा देगा और हद से ज्यादा प्रेम सबको कष्ट देगा।

शायद आपने सुना नहीं होंगे। हद से ज्यादा विश्वास आपको धोखा देगा और हद से ज्यादा प्रेम आपको कष्ट देगा। यहां तक हम आपके साथ जुड़े रहे।

0: पास क्यों है? ऐसा पूछा है पत्नी ने पति से कि उदास क्यों है? तो पति बोला, आज तो दिन ही खराब है, सुबह तुमसे झगड़ा हो गया, रास्ते में कार खराब हो गया और ऑफिस लेट पहुंचा, बॉस ने नौकरी से निकाल दिया, अब सुसाइड करने के लिए पेप्सी में जहर मिलाया था वो भी तू पी गया। तो राजेंद्र जी चाह दीजिए वो गाना।
1: हाँ, उदासी मन वाला गाना चलाना जरूरी है अब तो।
0: हाँ, ये तो चलाना ही पड़ेगा,
1: नहीं तो लोग उदास बैठे रहेंगे।

0: तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काय को करे। इस भजन को सुनने के बाद सबका मन उदासी से एकदम हट जाता है। और जैसा कि आपको आज का विषय पता ही है, मैंने बता रखा कि कर्पूर, कर्पूर यानी
1: कपूर कहते हैं राजेंद्र जी। जो हम लोग यहाँ पर करीना कपूर को तो थोड़ा बोलते हैं शांता।
2: नहीं, कपूर फैमिली से नहीं।
1: ओ, ये कपूर फैमिली से जुड़ा नहीं है।
2: नहीं, ये वो कपूर फैमिली है, ये कपूर ये एक वस्तु है ना,
1: वस्तु
0: नहीं। तो ये इसमें कपूर को डच में क्या बोलेला?
1: कहते हैं राजेंद्र जी उसे कहते हैं काम्फर।
0: काम्फर तो अंग्रेजी में बोले लमन
1: है,
0: अंग्रेजी में
1: बोले तो काम्फर अंग्रेजी है।
0: हाँ, अंग्रेजी है।
1: ना ना ना। तो दोस्तों, ये हम सब आज ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और जैसे कि पता चल ही गए हैं कि आज का विषय हम सब जो हमारे प्रयोग करते हुए हम काम्फर जो हम कपूर कहते हैं उसके बारे में अभी काफ़ी जानकारी हम सबको प्राप्त होने वाले है। पर राजेंद्र जी, वो तो पहला, क्योंकि हमारे विशेषज्ञों लोग ने हम लोग के लिए कुछ कार्यक्रम बनाने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ कर और खोज करके रख देते हैं, तो दूसरा क्या है आज का ऑफिशियल?
0: ऑफिशियल दूसरा है तीर्थ स्थल। भारत में एक ऐसा तीर्थ स्थल जिसमें कि लोग बहुत दूर दूर से देखने को आते हैं और उसको मोक्ष पाने की भी इच्छा रखते हैं, ऐसा तीर्थ स्थल जो उससे लोगों का, मुझे लगता कि लोग सुनेंगे तो जरूर जाएंगे। थोड़ा बचाए के
1: हाँ थोड़ा हाँ सही बात, आप एकदम बिल्कुल सरनामी हमारे हिंदुस्तानी में बात कर रहे हो राजेंद्र जी। श्लोक बदल जाते हैं, आपके बदलने में थोड़ा से भी देर नहीं लगा और हमारे भाषा में जो आप सहयोग दे रहे हैं। दोस्तों, आज जैसे कि अभी आपने सुने कि विषय जो है, और पहले हम लोग बात करेंगे कि जो हम कपूर प्रयोग करते हैं और कपूर कहाँ प्रयोग किया जाता है शांता जी?
2: यहाँ पे खास तौर पे हम देखते हैं तो हवन में प्रयोग,
1: हवन आदि में कपूर खूब प्रयोग किया जाता है।
2: वो पहला, जैसे हम जानते हैं
0: कपूर की आरती भी होती है,
1: आरती भी होता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगिंद्रम। दोस्तों, अभी हम सब उसके बारे में जरूर काफी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, पर ये हम जाने कि हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं है, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। और अभी हम सब उस ओर बढ़ने वाले हैं जिस ओर से हम सबको काफ़ी जानकारी को प्राप्त होने वाला है। राजेंद्र जी, क्यों ना थोड़ा से संदेश सुना देते हैं तो फिर हम एक
0: हाँ जरूर
1: सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।
0: हाँ, संदेश की ओर बढ़ते हैं। कर्पूर सुर्खियों में है, डॉक्टर भी कपूर इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। कल तक जिस कपूर के धुएं को पर्यावरणवादियों ने प्रदूषण कहकर खारिज कर दिया था, आज वही धुआं संकट में प्राणवायु बन गया है। यानी कि कुछ लोग पहले कहते थे कि ये धुआं है, इसको नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि इससे प्रदूषण होता है, लेकिन आज लोग कह रहे हैं कि इसकी प्राणवायु अच्छी है, प्राणवायु के लिए भी अच्छा है। एक समय था जब प्रत्येक घरों में सुबह शाम कपूर की आरती गाई जाती थी। संपूर्ण घर के कोने कोने में कर्पूर का धुआं किया जाता था। तत्पश्चात घर के सभी सदस्यों को कर्पूर की आरती दी जाती थी, जिसमें जलती लौ का धुआं दोनों हाथों से लेकर, चेहरे से लेकर सीने तक हथेलियां फेरी जाती थी। किंतु आधुनिकता की अंधी दौड़ के और चंद किताबों पढ़कर पाई डिग्रियों के आंकठ घमंड में हम इतने चूर हो गए कि इन्हें अंधविश्वास मान लिया गया। कर्पूर गौरम करुणावतारम आरती हमें ढोंग और समय बर्बादी लगने लगी। प्राणवायु कपूर आरती धुआं लगने लगी। खुद को वैज्ञानिक समझने वाले हमने ये जानने की कोशिश ही नहीं की आखिर हवन कपूर रीति रिवाज हमारी जीवन शैली का हिस्सा क्यों थे। हमारे पूर्वज विज्ञान से भली भांति परिचित थे। सनातन स्वयं एक विज्ञान है, लेकिन उस वक्त कोई वैज्ञानिक शब्दावली तो थी नहीं, अतः उन्होंने विज्ञान को धर्म से जोड़कर दिनचर्या का अहम हिस्सा बना दिया। आज वैज्ञानिक प्रयोग, मात्र 3-4 दशक पूर्व तक प्रत्येक घरों में हवन होते थे, किंतु आधुनिकता का सर्वश्रेष्ठ और पिछड़ा मानने की मानसिकता के चलते हमने सब कुछ भुला दिया।
1: राजेंद्र जी, ये बताइए कि जैसे कि आप कह रहे कि यहाँ हवन होता है, जहाँ पर कपूर को जलाया जाता है वहाँ पर, ये जैसे कि आपने भी कहे कि वहाँ कोविड का भी
0: खतरा कम होता,
1: खतरा कम हो जाता है
0: जी,
1: तो इसमें यानी कि इससे हमारे लिए जो हम समझते कि जो हम समझते थे कि हमें धुआं जो हो जाता है और हमारे हानिकारक हो सकता है, तो ये हम गलत समझते थे।
0: हाँ, वो धुआं, ये धुआं अच्छा वाला है, कपूर वाला,
1: कपूर वाला धुआं अच्छा है।
0: हाँ
1: अच्छा, तो ये बात है,
0: जैसे हवन करते हैं तो वो जो धुआं उड़ता है वो तो वायु वायुमंडल को शुद्ध करता है।
1: तो वैसे तो हवन हम सब करते हैं तो कुछ औषधियों के साथ ना।
0: हाँ,
1: तो उसमें तो ऐसा ऐसा चीज मिलाया गया जिसे हमें कभी हानिकारक हो ही नहीं सकता
0: जी,
1: और इसमें कपूर डाल दो तो और भी बढ़िया।
0: हाँ, कपूर भी एक पेड़ का ही, पेड़ से ही बनता है,
1: पेड़ से बनता है।
0: हाँ, एक पेड़ कपूर का पेड़ होता है, उसी का सत निकाल के कपूर बनता है।
1: ऐसा?
0: हाँ,
2: तो मैं 10 में बता दूं?
0: हाँ बताइए।
2: जैसा भाई राजेंद्र जी ने कहा ना, काम्फर, काम्फर कपूर का पेड़ होता है, यानी कि काम्फर बोम। द काम्फर बोम इज अ बोम द मैक्सिमल 30 मीटर हो। द फन और स्प्रोंग ग्रोइट द बोम अलीन इन जापान, कोरिया, मंगोलिया, इंडिया, ताइवान एंड साउथ ओस्ट चीना। काम्फर इज अ स्टॉफ द फन हैट काम्फर हाउट वर्थ extracted. This camphor is a with crystalline powder, die als specerij en geneeskruid de mensheid als veel honderden jaren dien. De Japanners hebben gedurende de 17e en de 18e eeuw dit product het meest verkocht en hebben er veel geld mee verdiend. Kamfer wordt verkregen uit het hout van een kamferboom. Kamfer werd vroeger vooral bij reumatische aandoeningen en spierpijn gebruikt. तो हम आपको थोड़ा से बता दें कामफर के पेड़ के बारे में।
1: तो ये तो हमें पता ही नहीं था कि कामफर पेड़ से निकाला जाता है, पेड़ से, और उसका पेड़ होता है और उसे बनाया जाता है।
2: इसलिए हम ऐसे ऐसे आर्टिकल हम लोग लाते हैं ना, में ज्योति का प्रकाश इसलिए है,
1: जिसे हमारे जीवन का ज्योति में जो ज्योत जल रहे हैं उसमें थोड़ा और प्रकाश
2: हो जाए। हाँ, वाकई में जैसे मैं भी नहीं जानती थी, ऐसे हमारे भी बहुत से सुनने वाले हो जो नहीं जानते हैं।
1: सही बात है राजेंद्र जी, क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़े ताकि हम सब कार्यक्रम फिर आगे बढ़ा सके।
0: जरूर, एक सुंदर सा जो शंकर जी का गीत है, शिव शंकर सॉन्ग है, सोनू निगम जी ने गाया है, शिव भक्ति सॉन्ग से लिया गया है, उसको हम बढ़ाते हैं आगे।

0: जयती जयती शिव शंकरा, बहुत ही प्यारा जो भजन अभी सोनू निगम जी ने सुनाया है उसका शांता जी आप क्या कहना चाहेंगे?
1: शांता जी, हाँ जी हाँ, ये काम्फर जो है ना, ये कपूर है, काम्फर एसेंशियल ओलियक वर्ड ओक इन अरोमाटिस अंदर आंदर गब्रुक बाय ऑनसाइफर हुइट येक येक पेशस kneuzingen, verstuikingen, ontstekingen, hoesten, koude rillingen, rheumatische pijnen, spierpijn, artritis, slechte doorbloeding van de benen, schaafwonden, koorts, griep, infecties, opkomende verkoudheid. Isabelle ap kamfer gebruik kan zeggen hij ook kamfer. Je bij niet hè, die jo ham gebruik karte hè, havan kellye. पर कॉम्फर वैन भी बिकाता है, कॉम्फर ओली स्पिरिट्स भी बिकाता है, आप उसको जो खरीदे तो उसके उससे जरूर से ओकर खबर एक अनवाइसिंग ख्याल कर लेना और पूछ लेना इससे कैसे इस्तेमाल करते हैं।
0: बहुत अच्छी जानकारी शांता जी ने दी है। अब जो हमारी जानकारी बची थी उसको हम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। कॉम्फर जो है उसका दोष भी हमने अपने बड़े बुजुर्गों को पर मर दिया, किंतु आपके बड़े बुजुर्ग तो पढ़े लिखे नहीं थे परंतु आप तो थे। आपने क्यों नहीं रीति रिवाजों के पीछे छुपे विज्ञान को जानने की कोशिश नहीं की? खुद को पढ़ा लिखा कहने वाले हम ये भूल गए कि विज्ञान बिना प्रमाण के किसी को विश्वास अंधविश्वास नहीं मानता। फिर आपने कैसे बिना प्रमाण के मात्र दुष्प्रचार में बहक कर सर्वश्रेष्ठ परंपराओं को अंधविश्वास ठहरा दिया। आज दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी के वक्त, मानवता पर संकट के वक्त, आधुनिक दुनिया पुनः शरण की शरण में है। हवन, कर्पूर, अजवाइन, हल्दी, हस्त प्रक्षालन,
2: उसे और कितनी चीज में प्रयोग करते। तो हमें ये बात भी ख्याल आता था कि हम सब जब छोटे थे ना
1: जी,
2: तो नारियल के तेल हम सब घर पे निकालते थे ना
1: जी।
2: तो नारियल तेल के बाद में और उसे मिला करके बोतल में, तो वहां सूरीनाम एक देश है जहां पर एक उसे हम क्या कहे, पशु नहीं कह सकते है, उसे हम पंछी नहीं कह सकते, उसका नाम है मस्किटा। बहुत काटते थे और दूसरा होते थे मम पीरा ना,
0: मस्किटा की मच्छर,
2: मच्छर हाँ। आप कहते हैं मच्छर पर उसे हम लोग कहते हैं मस्किटा। बड़ा काट काट करके बस बना देते थे, और खास करके जब बरसात के समय आते थे ना तो बहुत काटते थे। तो हमें एक ख्याल है कि वो पहले लोग और जा करके नारियल के तेल से और कपूर लगा उसमें डाल करके और शरीर पे लगा देते, तो ये हमें पता नहीं कि ठीक था और कि नहीं ठीक था। शांता जी इसमें आप कुछ कह सकते?
1: तो जैसे अभी ने कहा ना, तो उसका खैर जो है ना
2: हाँ,
1: उससे भी मस्किटास जो है, मस्किटा जो है ना
2: हाँ,
1: मच्छर जो हमारे राजेंद्र जी कहते हैं वो भागते हैं।
0: तो कपूर की जो स्मेल है उससे बैठ ही नहीं पाते, अगर बॉडी में लगाया है तो इसलिए वो भाग जाते तो काटे का।
2: क्योंकि मैं सर मक्का जब जाते थे ना राजेंद्र जी
0: जी,
2: तो मुझे बहुत मस्किटा काटा वहाँ। आज
0: सर मक्का कहाँ रहे?
2: अरे बहुत दूर है सूरीनाम में, और यहाँ वानिका से जो छुट्टे थे वहाँ, तो वहाँ सरमक्का में एक बोट लेकर हबड़ा होते थे स्तूपफेर, और हबड़ा होकर के और जाना पड़ता था, कितना दूर चलना पड़ता था। और वहाँ उस समय पे ना ही बिजली था ना ही पानी था, क्रान जो हम कहते हैं ना वो था ही नहीं। और एक चीज था वहाँ बहुत, वो था मस्किटा। तो बहुत मुझे काटा। तो आज जब हम जानते हैं ये बात आगे से, तो हम भी लगा लेते ना कपूर का तेल। आगे कार्यक्रम में क्या सुनाने वाले हैं आप?
0: आगे का जो कार्यक्रम है, इसलिए कहते हैं कि मजबूत जड़ों वाला वृक्ष ही आंधी तूफान झंझावतों में टिक पाता है। अगर यानी कि आप अगर मजबूत हैं वृक्ष, तो यानी कि मजबूत है तो आंधी आए तूफान आए वो गिरने वाला नहीं है। वैसे ही आप अगर मजबूत हैं अंदर से, तो अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, हम सब ये लड़ाई अवश्य जीतेंगे। यही आज का कपूर का संदेश है। अब अगला संदेश इस गाने के गीत के बाद रहेगा।
2: राजेंद्र जी, मुझे तो इस संदेश सुन करके कुछ ख्याल आ गया।
0: हाँ जरूर।
2: सुना सकता हूँ?
0: हाँ जरूर।
2: शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीतने के मूल मंत्र है।
0: हाँ।
2: शिक्षा कभी झुकने नहीं देती और संस्कार कभी गिरने नहीं देती। ये संदेश जो आपने दिए हम सबको कपूर के अंतर्गत काफी और अच्छा संदेश, जो हम सब अभी भी, क्योंकि आजकल कुछ और मिलता है ना जो आप द्रोखेस में खरीद सकते हैं और लगा लो शरीर में तो और मस्कीटा नहीं काटते, पर नहीं पता है कि वो ठीक है या नहीं ठीक है।
1: अब जैसे हम भी यहाँ पे कुछ तैयारी करके खोज करके भी आई है, तो जो हम अभी आपने कहा ना कि हम सूरीनाम में नरियर के तेल में और कपूर मिलाते थे, तो ये तैखर बालम भी जो ना खबर करते उसमें भी मिला हुआ है, मेंटोल और कॉम्फर
2: तैखर बालसम
1: में भी कपूर खनिज के अंदर में खनिज में दल खत भी खबर कर सके, जैसे अभी ना कहा स्पीड पेन फर सिक्त कर ऐसे वैसे जो हमने कहा उस सब में कम मात्रा से खबर कर सकते हैं।
2: अच्छा, तो राजेंद्र जी संदेश जो शांता जी भी सुना दिया कि तैखर बालसम में भी कपूर का प्रयोग किया गया है, ये एक चीज है जो सूरीनाम में बहुत प्रयोग किया जाता था ना, सभी के घर पे होते थे। और एक और चीज होते थे शांता जी, छोटी सा शीशी में बोतल में, और
1: जो फॉर ओली
2: उसका नाम होते थे शिलिंग ऑयल। ये पुराना चीज है जो आजकल हमारे घर पे नहीं होते, पर हमारे घर पे पहले सूरीनाम में इन चीजों हर बार होते थे। और एक और होता था, उसको कहते थे अल्कोलाद, वो हरी हरी होते थे, वो सिर का दर्द के लिए होते थे, लगाते थे। पर राजेंद्र जी, अगले विषय क्या रखे हैं आप आज का, जो कि कौन सा तीर्थ स्थान के ओर हम सब अभी छलांग लगा?
0: हाँ, अगला जो विषय है वो बहुत विशाल विषय रहे, और उससे पहले हम चाहेला एक जो आदि योगी का कैलाश खैर गाना है, बहुत ही अच्छा है, शंकर जी के ऊपर है, हम चाहेंगे कि उसको लोग पहले सुने और इसके बाद अगला विषय की ओर।

0: आदि योगी उतरे मुझ में, ऐसा कहते हैं। खैर जी, तो आज की जो चर्चा चल रही थी, हम कह रहे थे कि एक तीर्थ स्थल की बात करेंगे। तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कासगंज जिले में एक कस्बा है, यह गंगा नदी के समीप स्थित एक तीर्थ स्थल है। यानी कि भारत के जो कस्बा मतलब एक छोटा सा शहर है और गंगा नदी के किनारे में है, तो तीर्थ स्थल कौन सा है इसके बारे में जानेंगे। यह भारत उत्तर भारत का एक प्रमुख स्थान है जो सूकर क्षेत्र के रूप में विख्यात है। सूकर क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कासगंज से 15 किलोमीटर दूर है। इस तीर्थ का पौराणिक नाम उखूल तीर्थ है।
1: कौन सा नाम कैसे है भैया?
0: पौराणिक मतलब पुराना, बहुत उखूल तीर्थ, उखूल। उखूल तीर्थ के नाम से इसको जानते हैं। इसमें सोरो सुकुर क्षेत्र के प्राचीन नाम सोरोख्या का उल्लेख पाली साहित्य में भी है। सोरो सुकुर क्षेत्र में प्रत्येक अमावस्या, सोमवती अमावस्या, पूर्णिमा, रामनवमी, मोक्षदा एकादशी आदि अवसरों पर तीर्थ यात्रियों का बड़ी संख्या में आवागमन होता है और गंगा में स्नान कर पुण्य प्राप्त करते हैं। यहाँ अस्थि विसर्जन का विशेष महत्व है। यहाँ स्थित कुंड में विसर्जित की गई अस्थियाँ 3 दिन के अंत में रेणु रूप धारण कर लेती है। यहाँ महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि भी है। सोरो सुकुर क्षेत्र के तीर्थ पुरोहित जगत विख्यात हैं। इनके पास प्रत्येक परिवार के पूर्वजों का इतिहास रहता है। यानी जब पंडा लोग, आप जानते होंगे, गए होंगे हरिद्वार और बद्रीनाथ केदारनाथ, तो वहाँ पे पंडा रहते हैं। तो पंडा लोग क्या करते हैं कि पूरा इतिहास रखते हैं कि कौन कब तुम्हारे माँ बाप दादा पुरदादा कब आए। हाँ,
2: पंडा है क्या चीज राजेंद्र जी? बढ़िया से, क्योंकि ये बात मैंने सुना है कि पंडा के पास जाना चाहिए, और पर किस लिए जाना चाहिए, वो क्या करते हैं?
0: हाँ, पंडा जो रहे, पंडा यानी विद्वान पंडित, और उस तीर्थ स्थल स्थल के पंडित, कुछ लोग पुजारी रहते हैं जो भगवान के जो मंदिर होता है उसमें पूजा करते हैं, लेकिन कुछ लोग पंडा रहते हैं कि जो उनके भक्त आते हैं, मतलब उनके जो, जैसे आपका सूरीनाम है, तो सूरीनाम जब आप जाएंगे बद्रीनाथ तो बोलेंगे उनको कि सूरीनाम का पंडा कौन है, तो वो मिल जाएगा आपको वहाँ पे,
2: वहाँ
0: इजीली। और उनका पास पूरा एक बही खाता होता है, ऐसा इतना बड़ा
2: खाता, बोले बड़ी बुक।
0: हाँ, खाता मतलब आपका पूरा 10 जन्मों का, आपका बाप दादा परदादा कौन कौन वहाँ गए।
2: 150 साल पुराना?
0: 150 हजारों साल,
2: उतना पुराना।
0: जब गए होंगे जब से, तो वो सब वो एक मिनट में फटाफट बता देंगे, निकालेंगे, और आपके ये पिताजी का नाम है, दादा का नाम है, परदादा का नाम है, यहाँ आए, इस सन में आए, वो लिखा रहता है। और अब जब आप जाएंगे तो आप भी उसमें वो लिख देंगे, और फिर वो पंडा जब मंदिर बंद हो जाते, पट बंद हो जाते, तो वो लिखा देते पंडा के हमारे घर में आना, तो उनके घर में भी जाते हैं।
2: हाँ,
0: तो इस प्रकार से वो पंडा होते हैं, बही खाता देखने।
2: तो राजेंद्र जी, जैसे कि हम लोग अपना नाम संस्कार आदि कराते, पर हम लोग में ये भी होता है, हम लोग संकल्प आदि के लिए गोत्र का प्रयोग किया जाता
0: है। हाँ, उसमें सब लिखा रहता
2: है, मिलेगा
0: आपका गोत्र कौन सा है, आपका दादा का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, और सब नाम रहे, गोत्र रहे, और ऋषि आपके कौन से, किस गोत्र से आए,
2: सब उसी में,
0: सब सब।
2: तो ये कहाँ पर मिलेगा?
0: ये यहाँ पे भी मिलेगा, जहाँ पे आज बात चल रही, वहाँ पे भी, जहाँ जहाँ आपके पूर्वज गए होंगे।
2: हाँ जी,
0: वहाँ पे मिलेगा,
2: वहाँ पर।
0: हरिद्वार में तो सब गए होंगे,
2: हरिद्वार में गए होंगे। हाँ,
0: तो वहाँ पे मिलेगा। पहले लोग यात्रा पे जाते थे, जैसे आपके पूर्वज 150 साल पहले वाले,
2: हाँ जी,
0: बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, पहले पैदल जाते थे हरिद्वार ऋषिकेश से।
2: हाँ,
0: उसमें 2-3 महीने का समय लगता था, कुछ लोग 6 महीने भी लगाते थे।
2: अच्छा,
0: गर्मी में जाते थे, और जब सर्दी आ जाते थे तो लौट के आते थे, चारों धाम यात्रा करते थे। तो जब पंडा के पास जाते थे तो वो सब वहाँ पे लिख देता था कि ये लोग यहाँ आए, वहाँ एक इस प्रकार की व्यवस्था रहती है।
2: तो अब तो जाना पड़ेगा वहाँ?
0: हाँ, जरूर जाना पड़ेगा। मैं तो गया हूँ, और मैंने हर जगह अपना इतिहास लिखा है, और हमने पिछले वालों का भी देखा है, तो मैं तो वही बात करता हूँ जो मैंने खुद देखा है, बताई बात नहीं। तो बढ़ते हैं एक, और कुछ आप पूछना चाहते हैं?
2: नहीं, कुछ कहना चाहता हूँ।
0: जरूर
2: कह दो।
0: हाँ, कह दो
2: कि दुनिया में लाखों पेड़ गिलहरी के देन हैं।
0: हाँ,
2: दुनिया में लाखों पेड़ों गिलहरी के देन हैं, वे खाने के लिए बीच जमीन में छुपा देती है और फिर जगह भूल जाते हैं। आप भी अच्छे कर्म करो और भूल जाओ, समय आने पर वे फल जरूर देंगे।

भारत उत्तम नगर से रिंकू पाजी इसमें लिखा गया है और उन्होंने कहा कि दिया और बत्ती अपनी अपनी जगह सही होते हैं, आग कोई तीसरा ही लगाता है। तो ये भी थोड़ा से हम लोग यहाँ सुना देते हैं और इसी प्रकार से कोई अगर अच्छा संदेश है आपको तो जरूर और भेजना, ताकि रोज हम सबको कम से कम थोड़ा से तो हंसना है। और राजेंद्र जी, ये तीर्थ स्थल जो आप कह रहे हैं उसके वृतांत जो सुना रहे, तो आगे क्या है?

0: बढ़ते हैं आगे। मोक्ष स्थली सोरो जहां पृथ्वी का उद्धार भगवान ने बराहा रूप में किया, सुधांशु निर्भय पृथ्वी के पुनर्संस्थापन के उपरांत पृथ्वी को ज्ञानोपदेश एवं अपनी बराहा रूपी देह का विसर्जन परमात्मा ने जिस पुण्य क्षेत्र में किया, वह स्थान आज भी सोरो यानी कि सुकुर क्षेत्र में नाम से जन जन की श्रद्धा के केंद्र के रूप में विद्यमान है। भगवान ब्रह्मा के पुण्य प्रभाव से इस स्थान को विश्व संस्कृति के उद्गम स्थलों में से एक माना गया है। बात उस समय की है जब दैत्यराज हिरणाक्ष पृथ्वी को जल के अंदर ले गया, तब उसके उद्धार हेतु भगवान ने ब्रह्मा रूप में लीला करने का निश्चय किया। पृथ्वी के पुनर्संस्थापक के उपरांत पृथ्वी को ज्ञानोपदेश एवं अपनी ब्रह्मा रूपी देह का विसर्जन परमात्मा ने जिस पुण्य क्षेत्र में किया, वह स्थान आज भी सोरो यानी सुकुर क्षेत्र के नाम से
1: सुकुर क्षेत्र क्षेत्र जैसे कि आप सुना रहे हैं भारत के कहीं कहां
0: उत्तर प्रदेश जी। सोरो के नाम से जन जन की श्रद्धा के केंद्र के रूप में विद्यमान है। भगवान ब्रह्मा के पुण्य प्रभाव से इस स्थान को विश्व संस्कृति के उद्गम स्थलों में से एक माना गया है। भगवान श्री ब्रह्मा के देह विसर्जन के प्रभाव के कारण यहाँ स्थित हरिपदी गंगा में मृतक की अस्थियाँ प्रभाव के तीसरे दिन ही जल में विलीन हो जाती है।
1: यानी कि जो अपना अस्थियाँ विसर्जन करने को जाते हैं
0: हाँ
1: तो वहाँ छोड़ते
0: तीन दिन में विलीन हो जाती यानी कि समाप्त हो जाती
1: एकदम से।
0: हाँ, विश्व में कोई दूसरा स्थान ऐसा स्थल नहीं है जहाँ अस्थि गलती हो। अगर आप हड्डियां उसमें डाल देंगे तो वहाँ गल जाएगी।
1: गल जाता।
0: भगीरथी गंगा यद्यपि हम सभी के लिए परम पुण्य प्रदा है, किंतु उसके जल में भी अस्थि गल नहीं पाती। आधुनिक वैज्ञानिक प्रयासों के बावजूद इस जल की इस विशेषता के रहस्य का पता नहीं लग पाए हैं। यह वही सुकुर क्षेत्र है जो कालांतर में ब्रह्मा अवतार के रूप में कोकामुख कुब्जा भ्रक तीर्थ के नाम से विख्यात है।
1: तो राजेंद्र जी, ऐसा देखा जाए कि हम सब अभी ये लगता है कि हम गंगा तीर्थ करने को जाते थे और ज़्यादा तादाद में लोग उसी के चिंतन करते, पर जैसे कि आप कह रहे हैं कि और भी तीर्थ स्थानों है भारत में, गोमती नदी।
0: हाँ, गोमती नदी है,
1: वो भी इसी प्रकार का तीर्थ स्थान है।
0: हाँ, गंगेश यमुनेश गोदावरी सरस्वती नर्मदी सिंधु कावेरी जलस्मिन संधिमन कुरु, ये सात नदियों में से गोमती नदी नहीं आती है। गोमती नदी अलग में जाती है, लेकिन नदियाँ बहुत सारी भारत में हैं और लखनऊ शहर से होते हुए भी गोमती नदी बहती है। तो पहले ज़माने में लोग जब शहर बनाते थे तो नदी के बगल में बनाते थे, इसलिए जैसे जो भी शहर है बड़े बड़े आप देखेंगे तो नदियों के किनारे में बने हुए हैं
1: सभी शहर और नदियों के किनारे।
0: हाँ, नदी पानी रहता था तो पानी की कोई कमी ना रहे, इसलिए नदी होना जरूरी था।
1: ऐसा?
0: हाँ, इसलिए नदियों के किनारे बना था।

0: जैसे कि श्री ब्रहा दर्शन, इस क्षेत्र के प्रधान मंदिर की ब्रहा मठ का 17वीं शताब्दी में नेपाल नरेश ने जीर्णोद्धार कराया था। इस मठ में प्रधान देव श्री क्षेत्राधीश ब्रहा अपने श्वेत वर्ण विग्रह में माँ लक्ष्मी के साथ सुशोभित है। साथ ही इसके प्रांगण में भगवान के विराट रूप का अलौकिक दर्शन भी होता है। श्री हरि गंगा क्षेत्राधीश श्री ब्रहा मंदिर के बिल्कुल सामने प्रतिष्ठित श्री हरि गंगा का विशाल कुंड मृत आत्माओं की मुक्ति के साक्षात पर्व के रूप में विद्यमान है। यह वही पवित्र कुंड है जहाँ विसर्जित अस्थियाँ 3 दिन के अंदर जल में विलीन हो जाती है। श्री गर्दवट तीर्थ इस पवित्र भूमि के अंदर ही गर्दवट तीर्थ है जहाँ आदिकालीन विश्व का एकमात्र प्राचीनतम गर्दवट विद्यमान है।
1: तो राजेंद्र जी, ये जल किसी और तरीका के जल है उसमें ताकि वो मिल जाता है अस्थियाँ सब कुछ?
0: नहीं, इस जल में ऐसी विशेषता है कुछ कि जो हड्डी डालने से वहाँ पे 3 दिन के अंदर
1: वो गल जाता है।
0: तो ऐसी कुछ जल में कुछ विशेषता है, वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए।
1: वैज्ञानिक कहते हैं वेतन स्काप।
0: हाँ,
1: अच्छा,
0: आगे बढ़ते हैं एक सुंदर सा
1: गीत की
0: ओर और इसके बाद हम
1: फिर आगे ये
0: जारी रहेगा।
1: तीर्थ स्थल के बारे में और जानकारी हम सबको जरूर प्राप्त होने वाला है।
0: जरूर।

0: नमो नमो ही शंकरा। शंकरा तो नमो नमो रहे ही, आप कैसे रहे?
1: हम अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं क्योंकि शांता जी भी कुछ कहने वाले हैं। शांता जी, क्या आज अपने पिटारा से भर के लाए हैं?
2: तो जो आपने जो मौका दी है संजय जी, राजेंद्र जी, तो मैं ये कहूँगी कि करना सीखो, करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से वही उम्मीद रखते हैं। और साथ ही साथ ये भी कह दूँ, कि प्रभु ना दंड देता है, प्रभु ना माफ करता है, वो तो कर्म फल तराजू है जो बस इंसाफ करता है। सुख दुख का बटन तेरे हाथ में है बंदे, तू खुद ही ऑन करता है, तू खुद ही ऑफ करता है।
1: बंदे, तू खुद ही ऑन करता है और तू खुद ही ऑफ करता है। सुनने वालों, ये संदेश, ये समझने की बात हो जाता है शांता जी, क्योंकि लोग अभी हम जरूर उसके बारे में और चर्चा करेंगे, पर राजेंद्र जी, हमारा कार्यक्रम का और जो घड़ी जो होता है ना, वो चल रहा है और हम लोगों का संदेश आज जरूर ये तीर्थ स्थान का बारे में और सुनाना है। और अभी हम सब अगले सुंदर गीत भी चलाने वाले हैं।
0: हाँ, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आगे का जो हमारा कार्यक्रम है थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इसके बाद चलाएं। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन वृक्षों में अभय भट्ट, यानी अभय भट्ट प्रयाग में है, अभय भट्ट सिद्ध भट्ट उज्जैन में है, बंसी भट्ट वृंदावन में है, एवं गंधर्व भट्ट सुकूर क्षेत्र के सोरों में माने गए हैं। इसी गंधर्व वट क्षेत्र के वर्तमान प्रांगण में श्री विदया का यांत्रिक स्वरूप संभवतः विश्व की एकमात्र कृति है। कूर्म पृष्ठिया श्री यंत्र का यह स्वरूप कहीं और देखने को नहीं मिलता। इसकी प्रतिष्ठा आदि शंकराचार्य जी ने की थी। व्यवस्था तीर्थ यह वह स्थान है जहां भगवान सूर्य ने सहस्त्रों वर्ष तप किया था। उनके इस कृत्य से अति प्रसन्न होकर प्रभु ने दर्शन दिए एवं उनकी इच्छा के अनुसार गीता का उपदेश सर्वप्रथम दिया। बहुत कम विद्वान इस तथ्य से परिचित होंगे कि महाभारत में श्री कृष्ण के अर्जुन को गीता उपदेश से काफ़ी पूर्व श्री गीता रहस्य को श्री हरि ने इसी सकुर क्षेत्र में भगवान सूर्य को समझाया था। सोमतीर्थ भगवान चंद्रदेव ने अपने साप से मुक्त होने के लिए इस पावन धरा पर सहस्त्रों वर्ष कभी सिरोमुख कभी अधोमुख नाना प्रकार से तपस्या की थी, तो भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें न केवल साप मुक्त किया वरन या वर भी दिया कि हे चंद्र, तुम्हारी साधना के प्रभाव से वर्ष में दो दिन यहाँ का जल दूध का रूप ले लेगा एवं जग विख्यात होगा। आज भी चैत्र शुक्ल नवमी को यहाँ स्थित कूप का जल दूध का रूप ले लेता है। तुलसी स्मारक मंदिर विश्व को रामचरितमानस की अनुकंप कृति देने वाले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का जन्म यही सुकुर क्षेत्र में हुआ एवं उनकी शिक्षा दीक्षा भी यही श्री नरसिंह पाठशाला में संपन्न हुई। आज श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी एवं उनके गुरु श्री नरहरि जी के वंशज जीवित हैं। तुलसीदास जी के मकान में जीर्णोविशेष आज भी विद्यमान हैं।
1: तो राजेंद्र जी, अभी तक वो स्थान अभी तीर्थ स्थान की तरह बनाया हो?
0: हाँ, हरिपदी गंगा के मध्य सन 1945 में तत्कालीन जिलाधीश द्वारा स्थापित गोस्वामी श्री सुंदर प्रतिमा उनके स्मारक के रूप में आज भी विद्यमान है। महाप्रभु वल्लभाचार्य की बैठक, वल्लभ संप्रदाय के अनुयायियों की श्रद्धा का केंद्र, उनकी 84 बैठकों में से 33वीं बैठक इसी पावन भूमि पर स्थित है।
1: तो राजेंद्र जी, आपने तो हिंदी में बोल दिया कि केंद्र का मतलब,
0: केंद्र मतलब जैसे
1: यानी कितना टुकड़ा,
0: बीच का स्थान, केंद्र यानी जैसे भारत का बीच का, बीच का जगह है, केंद्र है।
1: हाँ,
0: मध्य प्रदेश।
1: मध्य प्रदेश,
0: तो वैसे ही उस जगह का जो केंद्र है वो है।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो इसके आगे बढ़ते, यहाँ बिट्ठुलनाथ जी की व गुसाई जी की भी बैठक विद्यमान है। गुसाई जी यानी कि भगवान कृष्ण के भक्त हैं और जो सेवा आज भी होती है वृंदावन में वो गुसाइयों के पास है और बिट्ठुलनाथ का वहाँ पे मंदिर भी है
1: वहाँ वृंदावन में।
0: हाँ।
1: अच्छा, मैंने सुना है वृंदावन में एक मंदिर भी है जिसको कहते हैं कि पगला बाबा,
0: पगला बाबा मंदिर है ना, हाँ, खूब बड़ा मंदिर है,
1: बहुत बड़ा, सात मंजिल का,
0: हाँ,
1: संगमरमर का,
0: और एक भूत मंदिर भी।
1: कौन सा मंदिर?
0: भूत मंदिर।
1: भूत मंदिर,
0: हाँ, भूतों ने बनाया था रात में।
1: अच्छा,
0: एक ही रात में बना लिया था और बहुत बड़ा बन गया था, फिर बाद में उसको तोड़ना पड़ा क्योंकि उसमें जहाज ना टकरा जाए ऊपर।
1: अच्छा,
0: आगे बढ़ते हैं ये गीत की ओर और इसके बाद बात करेंगे।

0: पहले कहावत है ना कि ना पहले हमारे पास 4G होते थे ना 3G होते थे, बस पिताजी होते थे और जहां तनी से कुछ गड़बड़ करो गुरुजी होते थे और बस
1: यहीं तक जी
0: यहीं जी थे, आगे कोई जी नहीं थे। और देखो ये इंटरनेट द्वारा भारत में कितना अशुद्ध से ये कार्यक्रम ये पूरा वहां पर सुना जा सकता है। हमारा जो आज का विषय है तीर्थ स्थान, जो हम इस समय उसके बारे में वृतांत को सुना रहे हैं और लोग सुन करके इस पे जरूर इस पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि लोग को तीर्थ को करना है, लोग को अच्छा लगता है ऐसा तीर्थ के संदेश सुनने को।
1: संदेश आगे बढ़ते हैं, ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो पहले सोरो शुकर क्षेत्र के निकट ही गंगा बहती थी, किंतु अब गंगा दूर हट गई। पुरानी धारा के तट पर अनेक प्राचीन मंदिर स्थित हैं। जो पुरानी धारा थी उसके नज़दीक बहुत सारे मंदिर आज भी स्थित हैं, लेकिन अभी थोड़ा गंगा दूर चली गई।

0: यह भूमि भगवान विष्णु के तृतीय अवतार भगवान ब्रह्मा की मोक्ष भूमि एवं श्री राम चरित मानस के रचनाकार महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी और अष्टछाप के कवि नंददास जी की जन्मभूमि भी है। इतने विशाल विशाल लोगों की ये भूमियाँ हैं, तो क्यों ना इन भूमि के लोगों के लिए एक सुंदर सा नगमा चलाया जाए।
1: क्योंकि ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि दोस्तों, सुनने वालों जो इस समय ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो जरूरत से ज़्यादा सोचना भी इंसान की खुशियाँ छीन लेता है। तो ज़्यादा सोच वोच ना करो, क्योंकि अपना खुशियाँ हमें जो खुशियाँ मिलने वाले हैं वो हमारे पास रहे और हम सब ये आनंद के जिंदगी और लेकर चलते रहे। हम सब एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ रहे हैं।
0: बहुत विशाल गीत सुनाने वाले हैं।
1: बहुत विशाल, बिल्कुल एकदम सिरिनामी भाषा में, सिरिनामी भाषा हमारा जो आपने और कहने लगे हैं। राजेंद्र जी, आप जैसे और संस्कृत का हॉलैंड में जो हम सबको और अपना हमारे गुरु है संस्कृत के, तो ऐसे आपको अच्छा भी लगता है हमारा सरनामी हिंदुस्तानी? हाँ, बात करने को
0: बहुत अच्छा लगता है।
1: बहुत अच्छा
2: है, कारण कि ना हमारे सिरनामी भाषा जो है ना, यहाँ के गोरे भी सीख के है।
0: हाँ।
2: यहाँ के गोरे जब बाजार जाओगे तो वे कहेगा हमारे हमारा हिंदुस्तानी भाषा में कहेगा, अगर आप भी जाओगे वहाँ गोश्त खरीदने ना। एक बार ऐसे वहाँ पे एक दोस्त के साथ गई, तो वो भीतर गई दुकान में, तो वो कहने लगा कि मुझे ये वाला चाहिए। तो वो मारोकान वाला जो कस्टम जो वहाँ बेच जाता ना, वो कहा छोटा छोटा कद्दू।
1: राजेंद्र जी, थोड़ा से कुछ और मन था कहने को।
0: जरूर
1: कह दू। क्योंकि अच्छा सोच, अच्छा विचार, अच्छे भावना मन को हल्का करती है। बस आप गीत चला दो।
0: जरूर, फिर मन और ज्यादा हल्का हो जाएगा।

0: तो भी न्याय के मार्ग से मेरा कभी ना पग डिगने पाए। यानी कि जो अगर न्याय है, सत्य का रास्ता है, तो उससे पग यानी कि पैर डिगने नहीं पाए, हिलता नहीं है। बहुत ही अच्छा संदेश इस भगत भजन से हमको देखने को सुनने को मिला। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी ने रामायण की कथा अपने गुरु नरसिंह दास जी से प्रथम बार यहीं पर सुनी थी। नंददास जी द्वारा स्थापित बलदेव का श्यामायन मंदिर सोरो शुकुर क्षेत्र के प्राचीन मंदिर हैं। पौराणिक गुटवट यहाँ स्थित है। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की 23वीं बैठक है। यहाँ हरि की पौड़ी में विसर्जित की गई अस्थियाँ 3 दिन के अंत में रेणु रूप धारण कर लेती है, ऐसा आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ भगवान बारहा का विशाल प्राचीन मंदिर है। मार्ग शीर्ष मेला यहाँ का प्रसिद्ध मेला है। मंगशीर यानी कि कार्तिक के बाद जो महीना आता है, कौन सा महीना रहेगा? नवंबर।
1: नवंबर
0: में तो यहाँ का प्रसिद्ध मेला वहाँ पे लगता है। अब बात करते हैं पुरावशेष की। भागीरथी गंगा नदी के तट पर एक प्राचीन स्तूप के खंडहर भी मिले हैं, जिनमें सीताराम के नाम से प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा बेन ने करवाया था। प्राचीन मंदिर काफ़ी विशाल था, जैसा कि उसकी प्राचीन भीतियाँ की गहरी नींव से प्रतीत होता है। अनेक प्राचीन अभिलेख भी इस मंदिर पर उत्कीर्ण हैं, जिनमें सर्वप्रथम अभिलेख 1226 यानी विक्रम संवत 1169 ईस्वी का है। इस मंदिर को 1511 के लगभग सिकंदर लोदी ने कुछ नुकसान भी पहुंचाया था, लेकिन बाद में इसको रिपेयर किया गया। तो ऐसी मंदिर इस जो आज का हमारा तीर्थ स्थल की जानकारी थी, इस प्रकार थी। और बहुत सारे लोग तो उत्सुक होंगे जाने के लिए और वहाँ देखने के लिए। अब संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
2: कहना तो बहुत चाहता हूँ, पर क्या कहूँ राजेंद्र जी,
0: कुछ तो कहो। कुछ
2: सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है कहलाता है कि सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है। कुछ बातों को नज़रअंदाज करना भी ज्ञान है। तो शांता जी भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ तैयारियाँ कर चुके हैं कहने के लिए।
3: तो जैसे आपने अभी पढ़ा ना, आपने बताया कि हर बात थोड़ा सा स्वयं कभी उसको भी,
2: मैंने ये तो नहीं कहा ना,
3: बहुत महत्व देता है, तो इसलिए मैं भी वेट करती हूँ, गौरती हूँ कि कब मेरी पारी आवे, तो मेरी बारी भी आएगी ना। कहते हैं
2: पारी आवे तो मेरी बारी भी आ गया। तो शांता जी, आपके सुनने के लिए लोग, और यानी कि अभी टेलीफोन भी आए थे श्रीमती राजकुमारी जी, जो कह रहे थे कि सही साथियों के साथ ये कार्यक्रम को सुनते, तो बहुत बहुत सभी को हार्दिक से धन्यवाद देता देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा भी ऐसे इस प्रकार से इन बातों को सुन करके हौसला और बढ़ते हैं, और हम सब सेवा के रास्ते के ओर बढ़ते हैं। निकल चाहे हवा है या और बारिश है, हम सब कोशिश करेंगे और भी, और इसी प्रकार से अच्छा अच्छा संदेश अपने सभी सुनने वालों के लिए लेकर के यहाँ उपस्थित होने के। तो शांता जी, आप पिटारा से अपने क्या छोड़ने वाले हैं?
3: ऐसे बात है कि जिंदगी ने पूछा सपना से, जिंदगी ने पूछा सपना क्या होता है,
2: जिंदगी ने सपना से पूछ लिया,
3: जिंदगी ने पूछा सपना क्या होता है, तो हकीकत ने बोली बंद आंखों में जो अपना होता है, सुनिए, बंद आंखों में जो अपना होता है, खुली आंखों में वही सपना होता है।
2: खुली आंखों में बस, शांता जी ने जैसे सुनाया, राजेंद्र जी क्या बात है कि आज हमारे सूरीनाम के, क्यों हम पहले बच्चे की ओर बढ़ते हैं कुछ?
0: हाँ, हम बहुत दिनों से बच्चों का जो बच्चे मन के सच्चे वाला गीत नहीं सुने और लोगों को नहीं सुनाए, तो क्यों ना हम आज उसकी ओर बढ़ें, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट गाना रहेगा वो सूरीनाम हमारा प्यारा देश, और इसके बाद जिस
2: तो हमारे सुनने वालों भी अभये से तैयार हो गया कि हमारा सूरीनाम भी अभी आने वाले है।
0: हाँ,
2: पर बच्चों के लिए कुछ चला
0: बच्चों
2: देते
0: के लिए सबसे पहले हम चलाएंगे, इसके बाद दूसरे ओर बढ़ेंगे।

0: बच्चे मन के सच्चे, तो बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, उनके मन में जो होता है वो बोल देते हैं, किसी भी प्रकार का मन में कुछ नहीं रखते, इसलिए कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि झूठ जानते नहीं, झूठ तो बाद में सीखा जाता है इस दुनिया में, इसलिए लोग बाद में बोलते हैं, लेकिन जब बच्चे रहते हैं तो। संजय जी, आपने कभी झूठ तो नहीं बोला जब आप बच्चे थे?
1: आपने ऐसा सवाल कर दिया जहाँ हमें भी अब जो इस जवाब देना है तो बहुत सोच समझ के देना पड़ेगा, क्योंकि सवाल ये है कि आपने कभी झूठ तो नहीं बोला। तो दोस्तों, ये इस पे मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि छोटा में तो कुछ ना कुछ किए होंगे। शांता जी, बगल पड़ोसी के आम के पेड़ से अपना घर का आम छोड़ कर के बगल का आम और पसंद होते थे, और ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है जिसे कि कभी काल के छोटा पे कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाते हैं, पर मन के सो तो सच्चे होते हैं राजेंद्र जी।
0: हाँ, ये तो है,
1: मन का तो सच्चे होते थे, और अपने आप को तो बचाना पड़ता था, क्योंकि गलतियां तो हो ही जाते थे। शांता जी, आपने कभी कुछ गलती की है छोटे पे?
2: जैसे सभी बच्चे करते, शरारत हरारत सब कुछ होता है। हाँ, हम भी वैसे ही पड़ोस के पेड़ पे चढ़ जाते थे।
1: चढ़ जाते?
2: हाँ,
1: चढ़ गए।
2: सिर बोंकी जाने
1: सिर बोंकी, सिर बोंकी। आप राजेंद्र जी, आपको पता सिर बोंकी क्या है?
0: हम ना जाने लम्मान, सिर बोंकी का रकम रहे
1: नहीं जानते।
2: एक फल होता है।
0: ओ, सिर बोंकी एक फल रहे।
1: हाँ। एक फल होता है। फल तो प्रयोग होता है, पर उसका लकड़ियों को बहुत लोग पसंद करते थे जलाने को।
2: अच्छा। हाँ।
1: चूल्हा जलाते थे ना, तो सिर बोंकी का लकड़ी बहुत अच्छा होते थे चूल्हा जलाने।
2: और छोटा जाने, पहले कोई करो पाप रहा ना।
1: हाँ जी।
2: साइकर सुक्रु।
1: हाँ।
2: ब्राइन साइकर, तो वो सब हम चुपके से जाकर लेकर खाते थे।
1: चोरी भी किया है?
2: मेरे दो भाई और मैं, तीन जने मिलकर हम जाकर लेकर खाते थे। मम्मी तो मना करती थी, क्योंकि वो तो नाश्ता थे ना सुबह के टाइम में।

0: यहाँ ये भी कहा जाता कि जो समय का मोल समझते हैं, समय उन्हें अनमोल बना देता है। तो राजेंद्र जी, आप अगर हम सब जो इस समय अघोर रहे हैं,
1: नहीं, आप अपने बारे में बताएं, हमने अपने बारे में बताया, अब राजेंद्र के बाद
0: आपको तो कहना ही पड़ेगा।
2: हाँ, हम जब बच्चे थे, नहीं हम तो अभी भी बच्चे ही हैं। अच्छा। आप लोगों के सामने तो आप देख ही रहे हो कि हम एकदम दूसरे प्रकार के बच्चे रहे। और जब बचपन में हम लोग भी सेब दूसरे के तोड़ने जाते थे, हमारे यहाँ तो सेब बहुत होता है, और प्लम है, सेब है, नारंगी है, नारंगी हम दूसरे के टपा देते थे रात को और खीरा और इस प्रकार का जो तुरंत खाने वाली चीज़ होती थी उसका चोरी भी नहीं माना जाता था, तो इसलिए कहते थे कि उस चीज़ का कोई चोरी नहीं माना जाता था, आप ऐसे करके खा सकते थे। तो हमने उसका आनंद लिया बचपन में, तो अगर नहीं लिया होता तो बचपन तो फीका हो जाता, इसलिए अच्छा ही रहा। और गंगाराम पंडित जी ने तो अपने बहुत सारी बात बताई बचपन की, वो जो सुनी रहे प्रोग्राम, तो अगली बार प्रोग्राम में वो अपना शेयर करेंगे।
0: जरूर, वो जरूरी कार्यक्रम में शेयर करेंगे कि अपना बचपना उन्हें, क्योंकि अभी तो बस कुछ ज्यादा अवस्था के नहीं है, तो जरूर अपना प्रोग्राम में शेयर कर सकता
2: जरूर,
0: है
2: जरूर।
0: क्योंकि ये मत कहना राजेंद्र जी, दो चीज पूछना कभी नहीं है यहाँ औलाद में, अलाउड नहीं किया जाता है। और वो होता है, पहला होता है किसी से उनका आयु ना पूछे, और दूसरा उनका वजन ना पूछे, ऐसा क्यों है?
1: और तीसरा है कोई व्यक्ति जो कमा रहे ना उसका आमदनी ना पूछना,
0: आमदनी ना पूछना। हमारा वक्त पे ध्यान देना है, तो
2: वक्त पे ध्यान है। और बहुत दिनों से हमने सूरीनाम हमारा प्यारा देश जो गाना है वो
0: चला दो,
2: नहीं सुनाया, तो उसको तुरंत जल्दी से उसको सुनाएंगे।
0: हाँ, सन्नामे में तो नहीं है, अनाउंस कर दो उसके। हाँ, कैसे
2: सूरीनाम।

0: सूरीनाम हमारा प्यारा देश तुझ पे मरने से इनकार नहीं। संजय जी आप
1: बड़ा सुंदर गीत आज फिर चला दिए राजेंद्र जी, और मन एकदम खुश हो गया है। और बस जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायत है वही व्यक्ति सबसे अधिक सुखी और संतुष्ट होता है। दोस्तों हम सब आज जो हमारा संदेश जो कपूर के अंतर्गत प्रयोग करने से और उनका महत्व जो हम सब के लिए रखा गया और ख़ास करके जो तीर्थ स्थान जिन्होंने राजेंद्र जी ने आज हम सब के सुनाए, तो ज़रूर हमारा समय आने पे ज़रूर हम उस स्थानों को ज़रूर जाए और उनके दर्शन करें। आगे का कार्यक्रम राजेंद्र जी आप क्या रखने वाले हैं?
0: आगे का जो कार्यक्रम है हमारा यही है कि लागी छोटे ना सनम।

प्यार किया तो करके निभाना, लाख समझौता कर लो अगर विश्वास नहीं तो प्यार नहीं, लाख कोशिश कर लो अगर आत्मविश्वास नहीं तो जीत नहीं। इसी वाणी के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ प्रोग्राम को सुनने के लिए, जो आप इतने बड़े तादाद में होकर सुनते हैं प्रोग्राम को। हम आपको भी बहुत दिल से धन्यवाद कहती हूँ प्रोग्राम को सुनने के लिए और स्वीकार कर लिए। सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम।

दूर हूँ फिर भी दिल के करीब। हम लोग तो बहुत दूर बैठे हैं और रेडियो सुनने वाले तो पूरा देश दुनिया में सुन रहे हैं, लेकिन हम दूर हैं लेकिन फिर भी दिल के करीब हैं। तो इसी से मैंने पकड़ा यहाँ से कि क्यों ना यहीं पे पहुँच दिया जाए, और दूर है लेकिन नज़दीक भी है। तो फावन हिंदुस्तानी रेडियो को जो हमारा प्रोग्राम सुनने वाले लोग हैं उनको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। फिर मिलेंगे इसी वक्त अगली बार इसी समय इसी बार को। तब तक के लिए मेरा यानी राजेंद्र सिंह का तहे दिल से नमस्कार, धन्यवाद।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से धन्यवाद दिया जाता है, और जितने बैलर्स जो फ़ोन किए सभी को हार्दिक से धन्यवाद दिया जाता है, जिन्होंने व्हाट्सएप बरख भेजे है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। आशा यही है कि अगले सप्ताह जरूर आपके साथ और मिलन होगा हमारे साथ, और कार्यक्रम में सहयोग देने वाला शांता खेमाई जी और हमारे पैनल के पीछे बैठे हुए राजेंद्र सिंह जी। मैं हूं आपका सेवक संजय, नमस्कार करता हूं और फिर मिलेंगे।

हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल

मर के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों की सेवा में विजंती नाथू का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नए मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया, आप बुलाए और मैं ना आऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है। फ्रॉम द मूवी दिल ही तो है, इसी फिल्म से द टाइटल हम पेश करेंगे, द माइटी मुकेश आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है। मोहम्मद रफी जी आ रहे हैं प्रोग्राम में। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास हो

सुन रहे थे जब ये दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। जाने कहां गए वो दिन, द माइटी मुकेश जी प्रोग्राम में आ रहे हैं फ्रॉम द मूवी मेरा नाम जोकर।

फ्रॉम द मूवी मेरा नाम जोकर से हमने पेश की यानी पेश किए हैं जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। सुनने वालों दमाई थी मुकेश जी, अगर वो जिंदा होते तो कल शनिवार 1 अगस्त को वो 103 साल के होते, तो उसी की याद में हम कुछ गीते चलाएंगे या कुछ गाने हम चलाएंगे आप सभी के वास्ते। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार,

अभी आप सुन रहे थे दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। दमायती मुकेश जी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे और उनका भरपूर नाम यार पूरा नाम है मुकेश चंद्र माथुर जी। तो मुकेश चंद्र माथुर जी लाइफ इन कॉन्सर्ट भी दिए हैं सूरीनाम देश में और वो थे इस साल में यानी 19 सेफनन सेस्तक में। और कहाँ पर उन्होंने ये कॉन्सर्ट दिए हैं तो वो जगह है तियातर सावित्री जहाँ पर मेरे पापा काम करते थे और रात को वो बकरे में काम करते थे और ऑपरेटर भी थे तो दोनों काम वहाँ पर करते थे मेरे पापा जी। तो उन्होंने उनका कॉन्सर्ट जो है वो लाइव देखे हैं और सुने हैं। तो चलिए ये गीत हम पेश करते हैं द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में द मैन विद द गोल्डन वॉइस।

आप सुन रहे थे नैन का चैन चुरा कर ले गई, कर गई नींद हराम। चंद्रमा सा मुख था उसका, चंद्रमुखी था नाम। फ्रॉम द मूवी चंद्रमुखी से हमने पेश किए हैं द माइटी मुकेश जी की आवाज में। यहूदी है फिल्म का नाम, उसी फिल्म से हम पेश करते हैं ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कुसूर।

फ्रॉम द मूवी यहूदी से हमने पेश किए हैं ये मेरा दीवानापन है द मैन विद अ गोल्डन वॉइस मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे सहेली है फिल्म का नाम इसी फिल्म से हम पेश करते हैं जिस दिल में बसा था प्यार तेरा

0: सुनने वालों, अभी आप सुन रहे थे जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का तोड़ दिया, दमाई थी मुकेश जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे। उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं और यानी मनोज कुमार के लिए उन्होंने गाने गाए, दिलीप कुमार जी के लिए भी गाने गाए, बहुत सारे यानी अमिताभ बच्चन जी के लिए भी गाने गाए हैं, बहुत सारे एक्टर के लिए वो गाए हैं। और इनमें से एक ये गीत है, सबसे बड़ा नादान वही है, फ्रॉम द मूवी पहचान से हम पेश करते हैं द टाइटल, आप सुनेंगे।
1: सबसे

अभी आप सुन रहे थे सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे। मुकेश की यादें हम पेश करते हैं। सुनने वालों क्षमा करना, मैंने अभी कहा कि उनके यानी बर्थडे थे 1 अगस्त का, लेकिन ये सच नहीं है। सुनने वालों सच ये है कि उनका जन्मदिन होते थे 22 जुलाई को, और अगर वो होते तो 22 जुलाई को वो 103 साल के होते, और जिनकर मृत्यु हुई 27 अगस्त को, वो भी 1976 में, और उनके पूरे नाम थे मुकेश चंद माथुर जी। तो चलिए ये गीत हम पेश करते हैं उन्हीं की याद में। होठों पे सच्चाई रहती है।

रहे थे जिस देश में गंगा बहती है, द टाइटल द माइटी मुकेश जी की आवाज में। ये प्रोग्राम मैं क्यों चला रही हूँ सुनने वालों, क्योंकि कल मैं वहाँ पर भी थी जहाँ पर मुकेश की यादें का प्रोग्राम किया गया, और वो थे जरा सा हम देखें वारुण चित्रा। जी हाँ, वारुण चित्रा जो है हंतल प्लान नंबर एक पर वातरिंग में देनहाग में जो है वहाँ पर एक प्रोग्राम था मुकेश की यादें, और बहुत सारे लोग वहाँ पर थे और भाग लिए हैं, जैसे सूरज रामयाद जी और बहुत से और। तो एक बहुत हसीन रात थी वहाँ पर, उसमें मैंने भी भाग लिए, मैंने कुछ सुना दिए भी। तो चलिए ये गीत हो जाए पूरब और पश्चिम से हम पेश करते हैं, है प्रीत जहाँ की रीत सदा।

पूरब और पश्चिम है फिल्म क्रम। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। उपकार है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं दीवानों से ये मत पूछो दीवानों पे क्या कुसरी है।

मत हो उदास, मैं हूँ तेरे पास हमेशा हमेशा। भी आप सुन रहे थे शान जी की आवाज़ में। बड़ी उदास है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए। फ्रॉम द मूवी कसूर से हम पेश करते हैं कुमार सानू, आपको सुनाने वाले हैं।

फ्रॉम द मूवी कसूर से हमने पेश किए हैं बड़ी उदास है जिंदगी कोई तो साथी चाहिए, कुमार शानू आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी खूबसूरत से हम पेश करते हैं सुनने वालों कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति आपको सुनाने वाले हैं। मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में

कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति के आवाज में भी आप सुन रहे थे मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में तू माने या माने है तू ही मेरे अपनों में। समाना दीवाना है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, क्या पेश करने वाला है बताओ, क्या नहीं बताने वाली आप खुद सुन लीजिएगा।

One of my favorite song अभी यहाँ पर सुन रहे थे. मैं अगर प्यार करूँगी किसी से, it will be कसम से, forever and ever and ever भी यहाँ पर सुन रहे थे. From the movie ज़माना दीवाना से हमने पेश किए हैं. अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है. जीत है फिल्म का नाम. सोनू निगम और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं.

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरे बाहों में हो। एक और सुंदर सा गीत हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते, और जरा सा हम देखें तो ये गीत खास करके हम पेश करते हैं शर्ली जी के लिए। और शर्ली जी जबकि हमारे प्रोग्राम को भी सुन रही है तो वो क्या कहते हैं, खुद मोर खसात प्रख्तख मोय लीचस और एक सित लेकर इरफान तखनीतन एंदर आदि उस्ताद हार्टान। तो शर्ली जी आप ही के नाम ये सुंदर सा गीत हम पेश करते हैं, कोई मेरे दिल में है जो भी है वो अपना सा है।

अभी आप सुन रहे थे द टाइटल फ्रॉम द मूवी कोई मेरे दिल में है। आपको सुनाने वाले थे कुमार सानू के साथ में अनुराधा पौडवाल जी, और ये गीत हमने पेश किया है शूली जी के नाम, जबकि शूली जी हमारे प्रोग्राम को सुन रही है। फिजा है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से आप सुनेंगे दिल मेरे ना और इंतजार कर।

फ्रॉम द मूवी फिजा से हमने पेश की है उदित नारायण के साथ में अलका याग्निक आपको सुनाने वाले थे दिल मेरे ना और इंतजार कर। अलका याग्निक और बाबू सुप्रियो मिलकर के आपको सुनाने वाले हैं मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। फ्रॉम द मूवी क्या यही प्यार है।

आप सुन रहे थे मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना, फ्रॉम द मूवी क्या यही प्यार है। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज में चुपके से कोई आएगा। फ्रॉम द मूवी हेलो ब्रदर से आप सुनेंगे।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने ज्ञान, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन की सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी नाम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारी मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

तो दोस्तों इस ट्यून से आपके तो पता चल चुका होगा कि हम शुरुआत कर चुका है अपना सूरीनाम और देश विदेश के समाचार के बारे में।

भजैली है और बोले क्या क्या नहीं आते हैं, तो आपको हम ये गीत को बस सुना ही दिया है। हमारे प्यारे प्यारे जनता, हम चलते हैं और आगे को अपना समाचार को लेकर। देखा जाए भैया, न्यू पॉलिसी पोस्ट एगो आयल है सूरीनाम देश में, और ये है अइरखां सेंट्रम परमारिबो मुस्नेलर ऑप्ट्रीडन में इंसिडेंटन मोखलक तमाकन, और एगो कंटेनर ने से एगो बन के बनाई के सबन धरी से ये बातचीत हो रहा है। और परमारिबो में ये बातचीत हो रहा है। हमारे जनता Volks, volgens het Korps Politie is het vestiging van hulppost besloten vanwege drukte en toenemende activiteiten. Ke bare mein hai, yani parivariyon mein bhaiya tu jaane hai kitna chor chohari hai, to tulon to jaano hai, to ohi ke karan yani ki extra police post aayegi hai हमारे प्यारे प्यारे जनता। तो अब देखो, कमा है चिजुआ कि चिजुआ ना कमा है मौसी, वही तो बतिया है। पुलिसी पोस्ट तो आयल है, आप देखो कमा है कि ना कमा है। तो लोग जानो चोर चहाड़ी शहर में कितना घूमे हैं, सोमेल रेगिस्ट्रात में आयल है गो पुलिसी सिखबार अनवेशक इस एन बे इंसिडेंट इन ए ड्रग आउटगांस गबिस नेलर कान इन बखराइबन। और बताई गई है दोस्तों, फॉल्गंस हेड कोर्स पुलिसी बोले नो साकल खेगा होफ इंस्पेक्टर जेरे सरवन कुमार कासी वार्नेमत हो फन कैबिनेट फन रिसोर्ट कमांडर फन परमारिबो बनाद्रक्त दैट द हुलपोस जस्ट इन दिस ओमगेविंग इज ऑफसेट ऑन पॉलिसी डिक्टर बाय हिट पब्लिक टू ब्रिंगर आउट जाने समस देश के है वहां पे तो जाने कितना ढेर घूमे। तो भैया का बोले हैगा स्वर्फर्स एंड सो, तो मां ओही के बीच में से बंधरी गए के का बोले हैगा एगो एक्स्ट्रा पॉलिसी पोस नाद टू स्प्राक वे द स्लीटल फन अ न्यू पोस सिंबोलिस ओवरगेड्रागन vervolgens क्रिप्ट मनोरथ vervolgens knipte menoret oude ik er waarin wil parlement aanwezigheid in uitgangscentrum moet de politie beter in staat zijn toezicht te houden bij de openbare minister. De abdeko ichijua kama het drugs ke baare mein teri aap log ke suna di bhai drugs ke baare mein hum boli to log ke kuch sunai di।

जी हाँ दोस्तों, तो हम आप लोग को बता देते हैं कि और आगे क्या क्या होता है वृक्ष के बारे में। विरोक्स ताल चश्मे डेवलप बौद्धम एच सुरीनाम ई कौन ची भैया सबन पाई से वृक्ष ऑन दैट इन विरोक जो हम लोग विरोक बारे ला भैया जो नदमी अपन घर में विरोक बारे पूजा पाठ खात वो कर खातिन विरोक्स कल्चर्स में डेवलप बौद्धम एच सुरीनाम आइल। अब देखो कौन चकल से नीदरलैंड के दुआन पकड़ी से ऑन लाख वृक्ष आन खतरोफन दी बेहद बिसोंदर मनीर वार फॉर स्टॉप एगो विरोक्स कल्चर्स में छोटा छोटा कुमकी है जो विरोक बरे है द कल्चर्स ब्लीक एंड द सेंट फोर्स इन फन डेवलप बौद्धम वार इन द फरदोफन मिडल वार फॉर बोरखन दुई दुई बौद्धम रहा हमार भैया विरोक में दुआन मांगते द फोंस ब्लीकन बकेन फिया फेसबुक और बोले फोटो फन ऑन द स्केप्ट खुदरन देसे विरोक ओवरस्काल्चे ब्रachten je heel en ब्रachten je wel heel snel en hogere sferen da. अब देखो यहाँ बतावे हैं नीदरलैंड के दुआने कहाँ कहाँ पावे भैया ड्रग्स फ्लैशेस डेट में पावे हैं ब्लांडरे में पावे हैं कुकुही में पावे हैं कड़ाबू में पावे हैं पालम दारू में पावे हैं झुरमछरी में पावे हैं फ्रुख्त में पावे हैं ढोलक में पावे इंस्ट्रूमेंट में पावे हैं कैसबरोद में पावे हैं सिर खुद में भैया जो वहाँ पे आम उम सिर में धर ओमा पावे हैं नरियर में पावे भैया पिंडा सांबल में पावे हैं पॉपकॉर्न में पावे हैं झूर मछली में पावे जो सब सुरीनाम से आवे हैं बड़ा शर्म लगे भाई बतावत बाकी नीदरलैंड से पुलिस ई सब चीज में पावे हैं। अब जो नदमी मांगी भैया सच्चे के बनरियर पिए पिंडा सांबल खाए सब देखिए फरबूद हो जाए हम लोग कौन ची मिलावे द आन खतरोफ फरदोफन मिडलन से दो नीदरलैंड अथॉरिटी इन बेस्लाग genomen इन मिडल्स वर्नीटर और बोले ईदर ऑन द स्केप्ट नीदरलैंड से दुआन ओक ड्रग्स फर्स्टॉप तो ये बड़ा अफसोस के बात है कि हमारे देश में देखो भाई सुरीनाम से पैसा कमाई खात कौन ची ना एक सब करे तुलन जैसे जानो है हम लोग के नीदरलैंड में फियोत है ऐसे सुरीनाम में ग्लात है दोस्तों ऑंडरसुक बस्कुलकिंग बाय तास लैंडफेल वक्त रिजल्ट नाफ एगो लैंडफेल हैगा भैया वो बतावे हैगा राफा मिनिस्टर के वेंडी यप आयु डायरेक्टर बा टेलीकम्युनिकेशन के अथॉरिटी सुरीनाम क्योंकि बोले तास बोले तो शॉर्सन नीत हेव को होनोनेर मुटन सोवेल द डायरेक्शन आल्स राड फॉर कमिसारिस फॉल्क्स मिनिस्टर रेमोंड लैंडफेल फॉर ट्रांसपोर्ट बोले हेगा कम्युनिकेशन टूरिज्म हिन वर्कसामहीदन फोरसेटन और बोले यापायू फॉर मन में बेस्कुल्डिगे वनुइट द एरवीएम ओक एन एगन रेक्सआक हेव आंगेस्पानन टेगन द लीडन फॉर द राड फॉर कमिसारिस बोले द आउटकम्स दैरफन मुट फॉल्क्स एंड वर्डन अफगेवाग्ड बोले ग्लाद अंडरसुक करेगा ऑन सेकंड ऑफ द बस्कुलकिंग ऑफ वार हे बरिस्टन और बोले हेगा ग्लाद अंडरसुक हेव एरवीएम एरवीसी के राड फॉर कमिसारिस के बोले लैंडफेल मोगलिक एगो अकाउंटेंट दी दार बाय इस इंटरसेप्टन फॉर अंडरसुक तबले को अकाउंटेंट के जहां जाए के हुआ खोजे के लैंडफेल वेस अंदर मेयर op wet elektronische communicatie die al geruime tijd bij de Surinaamse nationale assemblee ligt en momenteel wordt bestudeerd om na te gaan waar verbetering nodig is. To je maand ik glad ke bare mein bhaiya देखो लियो ब्रेंसवाइक का बोले ब्रेंसवाइक के भाई भैया इन फेट मुतर मो स्ट्रोंग फन डीएनए अफ्सलाइटन ओ है भैया बोले हम लोग के चाहिए डीएनए के बोले इन फेट स्ट्रोंग वा बंद कर दे ओमदा तू से पैसा ना भरी से नेशनल असेंबली के बोले है हुवेल बोले एबीएस नोक मुतन बतालन डीएनए के चाहेंगे भरे के हम बोले ना भरे है फोरदा द गेक डिंगन uitspreken लियो ब्रेंसवाइक algemene directeur hij EBS ke abole hega EBS flink besproken in DNA
बोले हम लोग चाहिए एक रूम बंद कर देवे के Brunswick bole de name bole ze hebben zoveel gebouwen en airco's laten ze aantonen wanneer ze voor de laatste keer hun betaling hebben gedaan merkt Brunswick op bole itra airco hua chale hai chirak itra bhare bole batawe kab sab laatste paisa hum log ke bhari se volgens de EBS topman is het probleem van het tekort aan stroom niet een probleem van vandaag Essentieelse paisa naar bare hè. Toekomst uitblijft op het probleem op te lossen. Moeten we meer stroom opwekken vanwege de drukte? Lukt dat niet via het stuurmeer? Bullet 2024 hebben we aangegeven dat het geïnvesteerd moet worden, maar er gebeurt niets, mensen. Op Bolle Hega, ja, Brunswick, Bolle Hega investeren uit het probleem te komen. $500 miljoen. Maar dat geld is niet in één keer nodig. ये बात है चिनुआ के कैसल भैल है मौसी चिनुआ के कैसल भैल है इंदिरा गांधी वेख में दुई चिनुआ भैया विंकलीस अनविंकल दीप कैसल चिरवन दुई गो चोर के अपन दुकान में पकड़ के बंद करी से द विंकल दीप werd bij een supermarkt belacht en vervolgens meegenomen naar een adres aan een Magenta-kanaal. Obele aldaar zou men het gestolen geld gaan ophalen. De politie kon de twee Chinezen aanhouden. To kitra en mijn sociale media bole chinoen mooi kaam karise, chor ke pakarise, maar chinoen apresko toemange kele bhai, dat gaat niet gebeuren. En dan hebben de politie de twee Chinezen aangehouden, want die hebben hele Magenta-kanaal mee, bole hamlo jayla paiswa lawe. देखो एक औरत भैया मिंदर यारख किंद्रन ऑफ स्ट्रात और में सांदल भाई लेगो औरत फॉर मिंदर यारख किंद्रन ओके छोटी छोटी लड़कन ओकर साथ है और ओके सबर में सांदल के इस एगो आदमी सोंदा के रविवार के मान थे तम फन आदम सोन स्ट्रात में निकेरी के बातचीत है बोले ड्रामा फन प्लस इन बेस इन फन टू मिंदर यारख किंद्रन बोले यो लड़कन चिल्ला भाई डर के मारे लड़कन भगल है गैले हेल्प खोजे औरत Ja, bichari, giral parale, viel op een gegeven moment op de grond. Or ademia, oké, chamoti se khoop, mari se bhaiya, giral aurat ke. Bewoners vinden het vreemd dat de man tot op de dag van vandaag niet is aangehouden door de politie van Nikeri. Uit informatie blijkt dat de vrouw wel aangifte had gedaan van de mishandeling, maar deze gisteren weer heeft ingetrokken. De man kon niet worden opgespoord omdat hij zich vermoedelijk ergens schuilhoudt. De politie zal zeer waarschijnlijk Oortia Nalis Kalera bakiu pina aangiftwa terug lezen bhaiya 10,000 admi maral hai Embola se Congo me nani Embola se maral hai Congo me maral hai socho bhaiya socho kitna admi maral hai Congo me nani aur Embola ek bimari hai एक बीमारी है जो ने वहां पर है तो ये बात है तो एम्बोला से 3,000 आदमी मरल है हमारे जनता और बताए गए ये है कि geen vaccin of geneesmiddel Ebola is een ziekte die vooral Afrika में आवे है dat wordt overgedragen via een fysiek contact tussen mensen of via lichaamsvloeistoffen. Er wordt een zeer besmettelijke koers gespoord, mensen. Dat is het. Aanplok kom zo je ik giet kusumai. Toen hier hem wapens aan inge. Aapke paan.

ये है क्रिसवन छेदी के आवाज में आप लोग को हम इस गीत को भी सुना दिया है। हमारी जनता, हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों,

आपको सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा मखेंता वेक्टवी 159 बाय ऑटो फॉर हीर बिट्रेव अमालिया। सेर जुइनिगे ऑटो सोअल्स टोयोटा प्रीमियो, टोयोटा रक्टिस, टोयोटा फिट्स। कॉन्टैक्ट इन सूरीनामे de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 87 57 939. Contact in Nederland 06 57 418 8873. Autoverhuurbedrijf A.

Nishthita Namastashe Namastashe Namastashe Namo Namah हरिओम। एक ही दम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग साथियों, हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर सबरा प्यार नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को और आप सभी को भी हरिओम हरिबोल सत श्री अकाल। मैं हूँ आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेंद्र कृष्णादित्य भगवान दीन, जिसे आप ढेर सारे श्रोता गुण आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। रविवार का शाम का प्रोग्राम, साप्ताहिक प्रोग्राम सरनामी संगीत लेकर उपस्थित हुआ हूँ यारो, यही आशा उम्मीद लेकर कि आज का सिलेक्शन भी आप सभी को जरूर पसंद आएगा। मौसम भी हसीन है, आप भी है और काफी लोग प्रोग्राम को भी सुन रहे हैं, तो आप जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो या तो काम कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का, ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक हैप्पी हैप्पी संडे, हैप्पी हैप्पी वीकेंड और नैतिक एक शुभ शाम शुभ रात्रि में प्लेजीर के साथ। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। तो जो भी रेडियो का काम आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो यार, तो जरूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में स्टूडियो का तार का नंबर है 0 7 3 2 6 20 77। क्वालिटी सर्विस और गारंटी के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं। साथियों नहीं तो vergeten है, onze kwaliteit is altijd uw garantie en natuurlijk voelt u zich altijd lekkerder bij Faun Hindustani Radio, toch? En ze bellen haar tot aan een katoel zonder programma koos zonder het jouw kuch collega's nee aan ze wieke geen met mee pees kia.

बेटा है तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा, या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम कर मिल कर मना रहे हो। कंगन तो साइड छूट चुका होगा ना, विवाह संस्कार की तैयारियों में अगर आप लगे हो, ये भी हो सकता है ना, जो भी खुशी के दिन आप सभी मना रहे हैं। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के फुल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी की नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। आपके घर पे एक दुख का घड़ियान पड़ा है, आप एक माध्यम में हो गमी में, तो फाउन हिंदुस्तानी जो अपने फूल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, माध्यम में शरीक है, ऊपर वाले से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को शैन शांति और शक्ति प्रदान करते रहे। जो बीमार लाचार है आपके तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए, बेहतर हो जाए, चंगा हो जाए, नित्य फिर ही तो है जिंदगी के मजे रोजाना लेते रहना। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को भी सुनते रहना, थोड़ा बहुत हम लोगों के बारे में जरूर बातें शाते करते रहना। फनार्थ बीटर्स का आप कामयाब हुए तो हमारे फुटबॉल टीम की तरफ से आपको तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां। और हो सकता है कि आप कल परसों या आज कामयाब नहीं हुए हो बंधु, तो चिंता की कोई बात नहीं है ना, मूर्ख इस वीरंदाज दिन पे दिन अपने आप पर विश्वास भरोसा यकीन और सेल्फ कंट्रोल जोर तोर से बढ़ाते रहना और साथ ही साथ कोशिश भी जारी रखना। तो देखो मेहनत तो है दौलत के यारी, तो हो सकता है यारों की कामयाबी भी जल्द से जल्द आपके कदमों को भी आकर चूम सकते हैं। रथ वो तो घरे तो इस काम पे खलेर नेवर गिव अप ब्रदर ना सीसा सो सो लोबी लोबी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड आई थिंक बट डोंट फॉरगेट लिस्टन देश में परवेश्वर सुस्वागतम फैन फकांसी। और हो सकता है कि आप देश को छोड़कर विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, अब सुपना मेर वारम थे, तो आपको भी एक फैन फकांसी तमाम लोग चुनते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को ओपन फकांसी एड्रेस देश मौखलक में इंटरनेट के लेर द्वारा, तो आप भी सुनिए हम लोगों को अपने लैपटॉप टैबलेट ऑफ स्मार्टफोन इंटरनेट के लहरों द्वारा। सो बेंट यू एंड ब्लाइव टू फन ऑल सब द होक टू फन यू फाफोरी तेरा रेडियो स्टेशन एंड दैट इज नेचुरली हमारे दिमाग शेयर का वन एंड ओनली फाउन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस। साथियों स्टूडियो की तरफ जब मैं आ रहा था तो तापमान दिनांक शेयर का दिखा रहा था तकरीबन 24 और 25 डिग्री के दरमियान, अफ एम टू धूप भी निकलता है, तो मौसम तो काफी मधुर है। तो जरूर आज शाम और रात्रि आप जरूर मनाइए इस नाश उम्र वेच कहे को नहीं आते दिस पाकत एंड खनीदर फन। प्रोग्राम तो हमेशा मैं शुरू करता हूँ सदियों से वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ, एक फिल्म ललकार देखनी चाहिए सिर्फ द कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी की आज गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा, जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है ना। इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते आ रहे और सदा कहते ही रहेंगे कि कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है, हैव टू नॉट अल्टिमेट लीव साथियों, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे सर्वनामी संगीत साप्ताहिक प्रोग्राम, पहला अध्याय में कुछ बैठक गाना, दूसरा अध्याय में कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक और तीसरा अध्याय में कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 8 बजे रात्रि तक चलेगा, बीच में कुछ ज्ञान के बातें है, शेर शायरी है, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना मजे लेते रहना। रफी साहब हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत।

शाबाश शाबाश, जबरदस्त और महान कलाकार हमारे सूरीनाम देश का विद ब्यूटीफुल वॉइस द वन एंड ओनली मैस्ट्रो रॉबी उदित राम जी। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है रविवार का शाम का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सरनामी संगीत। घड़ी की तरफ देखता हूं तो 15 मिनट गुजरने वाला है 5 बजकर शाम का प्रोग्राम। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का। जब मैं संगीत की दुनिया में अपना पहला कदम रखा 1954 तक में, तो जिस बैंड में मैं गया था गाने के लिए, तो यह वो बैंड का उस जमाने में लीड सांगर था, द नेशनल नया जमाना सागर ऑर्केस्ट्रा फनोइ फ्रीडम ब्यूरक भाई अंटोना में। तो ये महान गायक जिसका नाम है हरोल्ड राम कुमार जी, उस जमाने में वहां पर का लीड सिंगर था, और ये खुद अपना गाना लिखता है, कुछ कंपोज करता है और कुछ निकाला है। तो दिट इज इन फॉन सैन हिट नंबर सेल्फ स्क्रीफ सेल्फ कॉम्पोनेट मेरा दिल है बेगम के मारे, उस्ताद हरोल्ड राम कुमार, रेस्पेक्ट भाई एंड नतील ग्रीटिंग्स हमारे फुल फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के टीम से।

शाबाश शाबाश जबरदस्त गायक हमारे सुरीनाम देश का आईडीआर 70-80-90 मैस्रो हारोत राम कुमार। 20 मिनट गुजर चुका है 5 बजकर और आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर। जोर तोड़ से सरनामी संगीत चल रहा है। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे सुरीनाम देश का उस्ताद का उस्ताद रमेश चंद्र बिहारी जी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं भैया की आग लगी तनमन में।

आन कलाकार हमारे सूरीनाम देश का उस्तादों का उस्ताद रमेश चंद्र बिहारी जी के ब्यूटीफुल आवाज में और उन्हीं के याद में यति सुंदर बयान आप श्रोताओं सुन रहे थे आज का इस हसीन बैठक गाना के शाम का प्रोग्राम जो आप सभी के खिदमत में लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है हमारे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का बड़े स्टूडियो से। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं और जबरदस्त गाने वाली हमारे सूरीनाम देश हॉलैंडेस का बैठक गाना का उस्तादीन और बैठक गाना क्वीन श्री बिजावती जी को लाते हैं प्रोग्राम में साथियों और वो सुनाते हैं आप सभी को कजरा लगा के भैया नहीं नजर लग जाए।

0: शाबाश महान गाने वाली और बैठक गाना का क्वीन उस्तादिन द वन एंड ओनली श्रीमती बिज्जावन बिज्जानवती जयतु जी के ब्यूटीफुल आवाज में उनकी सुपरहिट सॉन्ग आप सुन रहे थे। फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों, रविवार का शाम का साप्ताहिक प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जोर तोर से सरनामी संगीत, और पहला अध्याय में हमेशा की तरह बैठक गाना। अगला बयान सुनाने को आ रहा है आप सभी को एक और जबरदस्त माना और जाना पहचाना हुआ कलाकार, हमारे सूरीनाम देश और इंडेश का मैस्त्रो और उस्तादों का उस्ताद राजू सिंह गुलाम जी का ये बिल्कुल मजेदार हिट सॉन्ग आप सुनिए कि करिया मकड़ा का करे है।
1: अरे शख्स तू कौन है लगा रहा है घाट, चोरी करने आया है आधी आधी रात,

शाबाश शाबाश, जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश हॉलैंडिस का आईडीआर 70-80-90, द वन एंड ओनली माएस्ट्रो उस्तारो का उस्ताद श्री राजू सिंह गुलाम जी का ये बिल्कुल सुपर हिट सॉन्ग आप सुन रहे थे। 4 मिनट रह गया है, यानी 6 मिनट गुजर चुका है 5:30 बजकर, तो वक्त भी हो गया है साथियों कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना। कुछ विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों इस जमाने के और कुछ मशहूर लोगों ने जिंदगी के बारे में अति सुंदर सुंदर सितात लिख लिख कर चले गए हैं, ये मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। ये आशा में लेकर कि इन बातों से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो हम लोग सीखते ही रहेंगे। तो जरा गौर फरमाएं, अर्ज किया है वहां ज्ञानी दखरूत आइटफिंडर श्री अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है खवीत के बारे में साथियों की, डू नोइट इट्स दट इंड्रुइस्ट टेकन यू खवीत सेल्फ्स ऑस द स्टार्ट हैट फरलांग। महाज्ञानी श्री एपी क्यूरियस ने कहा है मृत्यु के बारे में साथियों की, द डोट हाथ ऑन्स नीट आन सो लॉन्ग वे आर सेइंग इज द डोट एर नीट एंड वन एर द डोट एर इज सेइंग वे एर नीट। Een Chinees spreekwoord luidt als volgt saatjo ki, steek geen vuur aan dat gij niet uit kunt doven. Onthoud dat. Eentje van de beruchte dictator aller tijden, Adolf Hitler, nekahahe. Waar zou de kerk anders van leven dan van de zonden van hun getrouwen? Friedrich Nietzsche ne kaha hai kuch janwaron ke bare mein yaro ki, de slangen die niet van huid kunnen verwisselen gaan ten gronde. Evenzo de geesten die men verhindert van mening te veranderen. Zij houden op geest te zijn. Voetballer aller tijden van Nederland, maestro Johan Cruijff, voetbal speel je met het hoofd, want de bal is vlugger dan de benen. François de la Rochefort, ज्ञान के बारे में यारो की, मिदलमातिगे गेस्टन फरओर्डेलन ओवर हेट अलगमीन अलस वत हुन अनबेग्रिप ते बोवे गात सेर सीकर, वंट अस से नीट कुने बेग्रेपे दन कुने से नेट ओक नीट फोलगन हे एन दा बेय डोम सेगे से तेगे डेगेने दी हेट फर्टेल्ट। Herman Vinkers ne kaha hai mrityu ke bare mein saathiyon ki, selfmoord plegen is wel het laatste wat ik zal doen en dat is u ook aangeraden. Zeer dom hoor als je dat doet. Een eerste spreukwoord luidt als volgt, kuch kamariyo ke bare mein darwaza ke bare mein jata hai. Luidt als volgt jaro, een eerst spreekwoord. God sluit nooit een deur, of hij opent een andere punt. Remember that? En de laatste van vanmiddag, Kahaisri Otto Weiss. Our Otto ne Kahaisatjoki, elk tijdperk heeft duizenden helden die in geen enkel geschiedenisboek staan vermeld. तो अभी आप कुछ ज्ञान के बातें सुन रहे थे, ये अशोमी लेकर इन बातों को मैं आप सभी तक पहुंचाया कि इन बातों से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो हम लोग सीखते ही रहेंगे। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ, 20 मिनट बाकी है 6 बजने में। एक और जबरदस्त गाने वाली हमारे सूरीनाम देश हॉलैंडिस का इंच आईडीआर 70-80-90 बैठक गाना का जबरदस्त उस्तादीन और क्वीन द वन एंड ओनली श्रीमती मनराजी लक्ष्मण जी का ये सुपर हिट सॉन्ग
हम बजरिया जाएबे, और वो भी दनहा वाला चा।

शाबाश जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का फ्रॉम द म्यूजिक फार्मेसी स्वीट मेलोडी विशाल खेमई जी का बिल्कुल नया सॉन्ग आप सुन रहे थे। तो साथियों 9 मिनट रह गया है 6 बजने में, तो आज का इस पहला अध्याय हमारे सूरीनाम संगीत का जो बैठक गाना है, एक जबरदस्त कलाकार को मैं लाता हूँ, सूरीनाम देश का हॉलैंड देश का जबरदस्त गायक मैंडोलिन हारमोनियम सितार प्लेयर सब एक में कुछ गाने लिखा है, कुछ कंपोज किया है और दिस इज ओक इंच फन हेम ओक कंपोनेट उस्ताद का उस्ताद कुमार कल्लू जी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाता है ये अति सुंदर बयान जो 2 दिन पहले वो निकाला है और आप सभी के खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। जबरदस्त कलाकार हमारे सूरीनाम देश और हॉलैंड देश का जिस पे हमें नाज है और गर्व है, मैं पंछी अलबेला खसोंग दौर माएस्त्रो कुमार कल्लू जी।

0: शाबाश शाबाश शाबाश, मशहूर गायक हमारे सुरीनाम देश हॉलैंड देश का द ग्रेट मैंडोलिन प्लेयर, हारमोनियम और गायक कंपोजर द वन एंड ओनली मैस्ट्रो कुमार कल्लू जी का बिल्कुल नया सॉन्ग आप सुन रहे थे। तो साथियों, दो मिनट रह गया है 6 बजने में, यहीं तक था आज का पहला अध्याय सरनामी संगीत का जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं दूसरा अध्याय को पेश करने वाला हूँ, सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। आफ्टर द ब्रेक, कहीं जाना मत।
1: लाइव फ्रॉम देन हार्ट, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

0: बावन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप के खिदमत में लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। सितंबर 2020 का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। 3 मिनट गुजर चुका है 6:07 साथियों, हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। हैप्पी वीकेंड एवरीबॉडी के लिए जो प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नतुलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स ससलोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नतुलक बदंत फॉर एट लाइस्ट्रन। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें इश्तिहारे डेंक अनफाउन हिंदुस्तानी रेडियो सर्विस ग्रांट और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश है ना, अब मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और ओल पता आप श्रोताओं को ऑल इंडिया भर में नहीं मिलेगा। साथियों आप आजमा कर तो दे, सभी जानकारी बेल फॉर मांडा टॉट फ्रेडा op de volgende telefoonnummers tijdens kantooruren. Kantoorkaartarka nummer 073-65-2047. Als je kaartarka nummer 073-62-2077. De job hier in de kakaan hona, denk aan van Hindustani Radio. Je bent van harte welkom hoor. इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रेक्लाम बनाते रहना, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी है ना। एन तिलक अगर हो सके थोड़ा बहुत ढोंढोड़ा भी पीट देना। प्रोग्राम जो तौर से लोग सुनते हैं लॉन्दलक एंड इंटरनेट के लहरों द्वारा वर्ल्ड वाइड, और इसके लिए आप सभी को तय दिल से धन्यवाद। ओक डिमेंसिटी उन्स फना इंटरनेट के लहरों द्वारा सुन रहे थे है, और आप सभी को भी हैप्पी हैप्पी वीकेंड। बेंट यू नो के लिट फन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बेंटी ने निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और रो को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। साथियों रिसेंट है वो ओक ऑन से एक karaoke clubje opgericht, recent niet hoor. We zijn al ruim een jaar bezig en we hebben links rechts al een paar keer opgetreden en een goede respons, hele goede respons zelf van luisteraars al gekregen en ontvangen. Ook live hebben we een keertje op de radio al opgetreden. O, zat je ook om aan om kijken, elke laatste donderdag van de maand live karaoke bij Fahon Hindustani Radio vanaf 6:00 middags. Zo'n programma kunt u तो आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और आकर इस छोटा सा मोटा सा जो फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो का परिवार बनती जा रहे हैं, आप भी आकर उसमें शामिल हो जाए। सभी जानकारी इसके बारे में आप तारकृत है इस कंटोर यूरफमादक तो फ्रेडाग op 073-65-2047, dan wordt u automatisch doorverbonden naar onze teamleider, de one and only maestro Johnny Number One. Waar bij jullie zult hem ook een member benen, en ook op je benen. U bent van harte welkom. Wat ik in mutabik ek hiddam lekker chilte hai, aap sabhi ko dusra adhyay hamare Surinami sangeet ka, Surinami sangeet, en dat is meestal Surinami Indian pop music. Ik heb er just song recht to come player mein aap sultan ke shiva mein Dheeraj Shafira en Nathan from the music formatie Showtime Hindi bubbling mashup for you.
1: 6 million ways to die, choose one.

Yaman, Indie Bubbly Mashup from the Music Formatie Showtime from Suriname. Direct Safira en Nathan Keawasumi. Pandramit guzarne wala hai, che bachkar, aur aap chun hai, Fahun Hindustani Radio par Raviwar ka Ratri ka program aap sun rahe hai. Jor tor se Suriname Indian Pop Music. अगला बयान नौजवान कलाकार हमारे सूरीनाम देश का रजनी बुद्धू जी को लाते प्रोग्राम में और हार दूर ब्राक वेट एन हेल ग्रोथ सक्सेस में दिट नंबर सजना ओ सजना हेव से ongeveer, ja, en dat is heel goed en heel veel hoor voor een Surinaams artiest. 5.602.000 views al gehaald via YouTube. Music produced by Maestro Jwala, Sajna O Sajna by Rajni Budhu.

और जिंदगी भर करते रहना, ये कह रही है मशहूर गाने वाली सूरीनाम देश हॉलैंडिस रजनी बुडू। म्यूजिक प्रोड्यूस बाय ज्वाला। और श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि एक सूरीनाम देश का कलाकार जब से ये निकाला है ना 2023 is het gelanceerd en ze zit dicht bij de 6 miljoen aan, hoor. Groot compliment voor haar natuurlijk. Waar we heel trots op zijn. Kyunki ye hamara Surinami sangeet ka kamaal hai na. Normally today kya hai 6:30 bajne mein aur aap jor tod se Surinami sangeet सुन रहे हैं और मजे ले रहे हैं। मौसम भी हसीन है यारो, तो क्यों नहीं, क्यों नहीं। एक और जबरदस्त सॉन्ग फ्रॉम द म्यूजिक फार्मेसी नो मर्सी फ्रॉम सूरीनाम, लीड सिंगर एंड बैंड लीडर मैस्ट्रो रैंडी बैटाली जी के ब्यूटीफुल आवाज में न्यू सॉन्ग हाई शोना अंत लमहो।

Beautiful song, I'm sure Ganevala Amare Surinam Disca from the music pharmacy No Mercy. Bassman, band leader and lead singer, the one and only Randy Vitality. Che beautiful avance, mi dice un drbiana, absurdo, e te. Charmed Bucky Hayes, sorry, sorry, che, but name is at you. अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे सूरी नाम देश का शर्विन तेजू को लाते हैं प्रोग्राम में फ्रॉम द म्यूजिक फार्मासी मस्ती ग्रुप और वो सुनाता है आप सभी को हम तो से मांगेला कुछ बोले

सुनाया आप सभी को मशहूर गायक फ्रॉम सूरीनाम शर्विन तेजू फ्रॉम द म्यूजिक फार्मेसी मस्ती ग्रुप की हम तो से मांगेला कुछ बोले तो सुन ले तो का मात्रा बोले एक मिनट गुजर चुका है साथियों 6:30 तो वक्त हो गया है ना कुछ शेर शायरी हो जाए ना हमारे शेर के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है साथियों की अरे क्या चांद जमीन पर आया है, क्या चांद जमीन पर आया है आपकी इस खिलखिलट की आखिर वजह क्या है। वैसे तो आप वो ताज है जिसकी चमक ही काफी है, वैसे तो आप वो ताज है जिसकी चमक ही काफी है, पर आपकी मुस्कुराहट उस ताज की वो शान है जिसकी आरजू पूरा जमाना करता है। उसकी आवाज सुनकर मुझे पहली बार अंदाज हुआ था, उसकी आवाज सुनकर मुझे पहली बार अंदाज हुआ था कि बस आवाजें जिसम में जान डाल देती है। बोले उनकी आवाज सुनकर मुर्दों में जान भी आ जाती है। इश्क तुमसे है ये बात है सच्ची, इश्क तो तुमसे है ये बात है सच्ची, तुम्हारी बातों में है कुछ बात अलग सी, इसीलिए किताबों की खुशबू से रोशन हुआ सफर मेरा, किताबों की खुशबू से रोशन हुआ सफर मेरा, इल्म के हर कदम ने बेहतर किया हुनर हमारा।

चुपचाप क्यों सुना जाए, हर एक बात को चुपचाप क्यों सुना जाए, कभी तो हौसला करके नहीं भी कहा जाए। तुझसे जुदा होके भी तेरे साथ हूं, तुझसे जुदा होके भी तेरे ही साथ हूं, हर पल बस तेरा प्यार का हकदार हूं। तो ये था कुछ शेर्स साथियों, हमारे शेर्स की चाहने वालों के लिए। आगे के प्रोग्राम में कोशिश करूंगा कुछ और सुनाने को। 5 मिनट गुजरने वाला है 6:30 बजकर। अगला बयान एक और जबरदस्त गाने वाली हमारे सूरीनाम देश का नीलम माता दिन को लाते हैं प्रोग्राम में। फ्रॉम द म्यूजिक फार्मेसी फ्री स्टाइल, आप सुनिए लव एंथम, I do it for you.

beautiful song, wonderful song, love anthem from the music formatie freestyle lied Ganewale, the great Nilam Mata Dinjike, beautiful awas me. Het is een drabiana persoon rete. अगला बयान जरा दिल को थाम लीजिए क्योंकि अब आने वाला है प्रोग्राम में हम लोगों का अपना अनाउंसर साथी मशहूर गाने वाला और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का जबरदस्त अनाउंसर साथी द वन एंड ओनली मैस्ट्रो अनिल सरजू जी के ब्यूटीफुल आवाज में और साथ उनका दे रहा है मशहूर गायक हॉलैंडीज का श्रीमान इरविन अब्दुल जी. दो साथियों जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है संगीत के दुनिया में, द इन हवाओ मैशेप, चाहे आज मुझे ना पसंद करो, क्या आवाज ये है ये दोनों भाइयों को, सोहेल दीफान अनिल दीफान इरविन, मिलके सुनते हैं लवली सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम. हैप्पी हैप्पी संडे, हैप्पी हैप्पी वीकेंड टू एवरीबॉडी.

शाबाश शाबाश, मशहूर गायक हमारे सुरिनांदी सोलंदीज का मैस्ट्रो राजेश शिवनंदन, म्यूजिक रे अरेंज मंत बाय मैस्ट्रो कमलेश राम खेलावन। 7 मिनट बाकी है 7 बजने में साथियों, तो एक आखिरी बयान आप सुनेंगे आज के हमारे सरनामी संगीत का प्रोग्राम में, और वो सुनाने वाला है जबरदस्त गायक हमारे सुरिनाम देश का, फ्रॉम द म्यूजिक फॉर्मासी द स्टार्स, रोहित छेदी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाता है आप सभी को ओरे पिया।

फिर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में नतीलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सुसुलो बिलोबियन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नतीलक बदंत फॉर हेट लाइस्ट्रन जो भी रेडियो का काम हो खास फरमाइशें जरूरी खबरें इश्तिहारे देंक अनफाहन हिंदुस्तानी रेडियो किफायती से नाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो ना आप मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायती सस्ते दाम में। मैं तो आप श्रोताओं से सदियों से कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा। साथियों आप आजमा कर तो देख सभी जानकारी बेल टेनेंस कंटोरियर ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स कंटोर 0732427 और स्टूडियो कतार का नंबर है 0732427। जो भी रेडियो का काम होना देंक अनफाहन हिंदुस्तानी रेडियो बेंट फन हार्ट वेलकम और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। दिस खनीतर लेकर

इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यार, वो चर्चा करते रहना, और अगर हो सके तो थोड़ा बहुत ढंढोड़ा भी पीट देना फाहुन हिंदुस्तानी के बारे में, क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है ना। Bent u nog geen lid van Fahun Hindustani Radio? De Guzaris bent u niet binnen een keer jaren haai, kia api, jelsi jelt Fahun Hindustani Radio ka member bane, auro ko bhi manai. Aapko to dheer sare fayda hi fayda hai, sabhi jankari iske bare mein, aap taar kare op News 23, 365, 2247. Dan wordt u automatisch doorverbonden naar onze teamleider, the one and only maestro, Johnny number one, तो आप भाई रॉय से कुछ बातें शाते कीजिए हमारे फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के मेंबरशिप के बारे में। जैसे आप लोग के मालूम है तो फाहुन का हिंदुस्तानी परिवार जो है ना वो बनते और बढ़ते जा रहा है, तो आप भी आकर इसमें शामिल हो सकते हैं। सभी जानकारी 973562247 पर आप तार करें, एंड यू हैव टेक फॉर फोरडेल और आल्सिलेट वर्ड फ्रॉम फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, एंड वी हैव ओक ऑन से एक कराओके टीम वार हेल फील ओमरूपर्स एंड ओमरूपस्टर्स लाइव आम इट सिंगर्स हैं, एंड सो लुक इस इट वांट टू हैव एन पार केर आल opgetreden, heel veel goede respons, een keertje ook live op de radio. Volg onze social media en dan hoort u wanneer wij live voor u gaan optreden in de bepaalde zalen hier in Den Haag en omgeving. En onthoud dit zaadje elke laatste donderdag van de maand vanaf 6 uur live karaoke op Fahun Hindustani Radio. सात मिनट गुजर चुका है साथियों, सात बजकर एकदम निकल चलते है आप सभी को कुछ नए नए सुपर हिट सॉन्ग्स द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के, जो मैं यहाँ पर चुन चुन कर रख चुका हूँ आप सभी को सुनाने के लिए। अगला बयान सुनाने को जा रही है आप सभी को, लाते हैं सुंच को माइक्रोफोन के सामने, द ग्रेट सुनिधि चौहान का ये बिल्कुल सुपरहिट सॉन्ग आंख क्या बात है, लीड वोकल बाय सुनिधि चौहान, और साथ दे रहे उनका रुशा एंड ब्रीजा, कंपोजर्स प्रतीक्षा श्रीवास्तव अमन खरे और परुष कुमार, अल्फाज है प्रतीक्षा जी का, मिलकर सुनते हैं बिल्कुल सुपरहिट सॉन्ग आंख।

And dear beautiful song, आप सभी सुन रहे थे गाने वाले शान जी के ब्यूटीफुल आवाज में। म्यूजिक बाय राम संपत और लेखक और अरेंजमेंट भी मैस्त्रो राम संपत ने शान जी के साथ मिलकर किया। ब्यूटीफुल सॉन्ग। 17 मिनट गुजर चुका है साथियों, 7 बजकर रविवार का रात्रि का प्रोग्राम 6 सितंबर 2020 का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। अगला बयान जबरदस्त गायक इस जमाने का द ग्रेट पवनदीप राजन को लाते हैं प्रोग्राम में और उन्हीं के संगीत पे आप सुनेंगे रिकी खान का लिखा हुआ और कंपोज किया हुआ है ब्यूटीफुल सॉन्ग दुनिया वालों ने, द ग्रेट ग्रेट ग्रेट पवनदीप राजन, जो एक एक्सीडेंट के बाद ग्रेट कमबैक बना रहे हैं।

दुनिया वालों ने क्या बात है जबरदस्त सॉन्ग सुनाया आप सभी को, इस जमाने के मशहूर गाने वाला और द विनर फॉर इंडियन आइडल सीजन 13 पवनदीप राजन के ब्यूटीफुल आवाज में। म्यूजिक अरेंज एंड कंपोज बाय रेकी खान। 8 मिनट बाकी है साथियों, 7:30 बजने में, तो अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं। एक और जबरदस्त गाने वाली एंड ऑफ द विनरेस फॉर इंडियन आइडल 15 लाते हैं आप सभी को फ्रॉम द मूवी मर्डर 2। असल में ये अति सुंदर बयान को गाया है सुनिधि चौहान जी ने, लेकिन इस बार आप सुनिए मानसी घोष द विनर फ्रॉम विनरेस फ्रॉम इंडियन आइडल 15। मिलके सुनते हैं आजरा करीब से, क्या गला है क्या स्टाइल है ये मशहूर कलाकारा की। रिमेंबर द नेम मानसी घोष।

Tjaba te, wat een stem en wat een gevoel. Remember the name, Manishi Ghosh, winnares van Indian Idol 15. En origineel gezongen door Sunidhi Chauhan, Alfaze, Kumarjika, Aur Mahan Sangeetkar, Siddharth Haldipurka, original Sangeet. Team lead rank kya hai sadhi. साथ बजने में साथियों अगला बयान एक जबरदस्त सॉन्ग है वन ऑफ माय फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर कंपोजर इस जमाने का द ग्रेट जीत गंगुली जी का बनाया हुआ है अति सुंदर धुन और गाने वाली है इस जमाने के मशहूर गाने वाली द ग्रेट अरुणिता कांजीलाल जी अल्फाज़ है रश्मि विराग जी का मिलके सुनते हैं उरे बावरे

Leniwala Nagba, composed by one of my favorite composer, singer, producer is Zamanike, the great Jeet Ganguly ke saaj par aap sun rahe the is Zamanike mashoor gaane wali the great Arunita Kanjilal ji ko. अगला बयान है कि तरफ लेकर चलते हैं आप सभी को एक और जबरदस्त गाने वाली इस जमाने के हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का जो काफी हलचल और नाम कमा चुके हैं मचा चुकी है. मैं बात कर रहा हूं इस जमाने के मशहूर क्लासिकल गाने वाली द ग्रेट स्नेहा शंकर जी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाती है आप सभी को Naina More, finalist ook geweest van Indian Idol Season 15 ka. Milke sunte hai a great song, composed and arranged by music director Deepak Pandit. Alfaze hai, thumri hai gayak traditional, to milke suniye.

the great, great, great Sneha Shankar. के ब्यूटीफुल आवाज में जी सुंदर बयान आप श्रोताओं सुन रहे थे एक ठुमड़ी दीपक पंडित के साज पर, और इतना ठहराव से वो गाई है ये नगमा को, तारीफे काबिल तारीफे जितने करे कम है। पवन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों, 6 मिनट गुजर चुका है 7:30 बजकर, तो कुछ आखिरी शेर सो जाए ना आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। अर्ज किया है साथियों की एक मिसरा है जिंदगी मेरी, एक मिसरा है जिंदगी मेरी, आप चाहे तो शेर हो जाए इस

कैसे कहो कि अपना बना लो मुझे, कैसे कहो कि अपना बना लो मुझे, निगाहों में अपनी समा लो मुझे। आज हिम्मत करके कहती हूं, आज तो मैं हिम्मत करके कहती हूं, मैं आपकी हूं, अब आप ही संभालो मुझे।

ki nisbat us qadar khoye hamare ishq ki nisbat us waqt khoye jahan kehte hai ki main pahunch jaunga lekin aap nahi pahunchenge ye bhi hota hai saathiyo teri hansi ne mere dil ko jeet liya kya baat hai तेरी हंसी ने मेरे दिल को ही जीत लिया दिल हर रोज खुशी का सबाब तुझ को ही समझता है दिल हर रोज खुशी का सबाब तुझको समझता है काश कोई मिल जाए अपना काश कोई मिल जाए अपना आज बहुत जी भर कर रोने का मन है मेरा तो रो ले भाई रब करे जिंदगी में ऐसा मकाम आए रब करे जिंदगी में ऐसा मकाम आए मेरी रूह और जान आपके काम आए हर दुआ में बस यही मांगते हैं रब से कहे अगले जन्म में भी आपके नाम के साथ मेरा नाम आए आखिरी शेर साथियों आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में मैं चाहूं तो वो अल्फाज ना लिख पा जिसमें मैं चाहूं तो वो अल्फाज ना लिख पाऊं जिसमें बयां हो जाए कि कितनी मोहब्बत है तुमसे और मुझसे तो ये था कुछ शेर्स आखिरी शेर्स आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम 21 मिनट रह गया है साथियों 8 बजने में वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है लेकिन उससे पहले ये अति सुंदर दिल को छू लेने वाला बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को इस जमाने का मशहूर गाने वाली और द विनर फ्रॉम इंडियन आइडल 16 मेयफ्राउ ज्योति रमाई ब्यूटीफुल गाने वाली इस जमाने की मिलके सुनते हैं तू मेरा जानू एंड हैट विनिंग द नंबर लेट अस फॉलोड सुनिए

0: Well, just another day of her proving why she has a million followers. You're a superstar.
1: Thank you so much.
2: कमाल की बात आएगी थी, डायनामिक्स बड़े अच्छे थे. जब एफर्टलेसली कोई गाता है ना मजा लेकर, तब सामने वाले को मजा भी आता है. अमेजिंग.
1: तुमने इतना अच्छा गाया है और तुमने इतना मन जीत लिया है. खुश रहो हमेशा और तुम्हारे फॉलोअर्स और बढ़ते रहे. थैंक यू सो मच मैम.
3: फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर
4: ब्यूटीफुल सॉन्ग. सुनाई आप सभी को इस जमाने की मशहूर गाने वाली और डेविनर एस फन इंडियन आइडल 16 ज्योतिर्माई जी. 15 मिनट रह गया है 8 बजने में. वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है साथियों, लेकिन उससे पहले ये अति सुंदर बयान टैलेंटेड कलाकार इस जमाने का इंडियन आइडल 16 का फिनालिस्ट चैतन्या मौली सुनाने वाला है आप सभी को. तुझे देखा तुझे देख देख सोना.

beautiful song, wonderful song, आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया, और वो भी इस जमाने के मशहूर गायक एंड फिनालिस्ट फ्रॉम इंडियन आइडल सेस्टीन द ग्रेट चैतन्य मौली, टैलेंटेड कलाकार। साथियों, 9 मिनट रह गया है 8 बजने में, धीरे धीरे वक्त भी करीब आ गया है आप सभी से विदा लेने को, लेकिन जाते जाते आदत से तो मजबूर है ना कुछ जरूर गुनगुनाऊंगा। तो साथियों, यहीं तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम, जो समाप्त होने को आया। आशा और उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूं साथियों, कि जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप सभी को सेवा और खिदमत करने में, ये आशा उम्मीद है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले बुधवार रात्रि 8 बजे में आप सभी से फिर मिलने वाला हूं आवाज के जरिए, गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड नामक प्रोग्राम लेकर, खलिंट मेट ओल्ड इज गोल्ड नाट्यूलक संगीतकारों का दास्ता नाम कार्यक्रम। तो मुझे आप सभी इजाजत दे, हमारे बाद आप सभी को सेवा और खिदमत करने वाला है बड़का भैया वन एंड ओनली मास्टर चंद्रसेन गंगा मेट सेन वेकलिक से प्रोग्राम गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड। प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, हैप्पी हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। और अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो आने वाले बुधवार रात्रि 8 बजे में जरूर मिलने वाला हूं आप सभी से आवाज के जरिए।

जाते ना कुछ न कुछ गुनगुना देता हूँ। और एक बार फिर वही महान फनकार, द ग्रेट सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मैस्त्रो दादा हेमंत कुमार के याद में।

जीते हो किसी ने देश तो किया, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों की सेवा में सादर सा प्रेम, नमस्ते, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है, www.faunfm.nl पर, वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। जो बीमारे, लाचारे, तंदुरुस्ती, दुआ के प्रार्थना है, जिनके घर में कोई शादी हो या कोई भी उत्सव हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम यहाँ से शुरू हो रहा है, इस उम्मीद के साथ आप हमारा साथ अवश्य देंगे। आप जहाँ भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, आप सबको हृदय से स्वागत किया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। मैं हूँ आपका सेवक गंगा, और कुल घड़ी तक हम आपका साथ रहेंगे। उम्मीद है आप हमारा साथ जरूर देंगे। अगला गीत, जी हाँ, अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, क्या ख्याल है, अराउंड द वर्ल्ड। जी हाँ, मैत मुकेश और शारदा जी।

मैं तू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस शारदा जी के साथ अराउंड द वर्ल्ड में से निकाले हैं शंकर जय किशन के साज पर ये शानदार गीत, प्यारा गीत हमने पेश की। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो चलिए हम आपको ये सुनाते हैं। क्या ख्याल है, सुन लीजिए इस तरह से।

सदा रहे हैं, सदा रहेगी। रफ़ी साहब ने अपने प्यार का इजहार की। इस तरह से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने ये गीत चलाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। जी हाँ, चलो सुनते हैं कि चाहे दिन हो या रात हो, अगर तुम रात कहोगे तो हम रात की कहेंगे, अगर जो दिन कहो तो हम भी दिन कहेंगे।

हाँ, जो तुमको पसंद वही बात करेंगे और कोई बात ही नहीं करेंगे। अगर कहो दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। बहरहाल ये गीत सुना आपने माइक मुकेश की आवाज में है। चलिए अगला गीत है पेश करने वाले हैं इस तरह से।

0: रूप तेरा मस्ताना, ये शानदार गीत चला पावन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में www.pinfaunfm.nl पर आप चून हैं। जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। इंटरनेट रेडियो या वीफी रेडियो पर आप चून हैं, तो जहाँ भी आप होंगे, जो भी कर रहे होंगे, आप सबका हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए, तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊं? दरअसल में ये गीत हमने चून भी नहीं किए, तो मुझे भी नहीं पता इस गीत के बारे में। और बहुत दिन हुए हमने टेक्स्ट पढ़े हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते ये गीत कौन सा है। तो हो सकता है शायद आपको पता हो, चलो साथ मिलकर सुनते हैं। हाँ, इतना तो पता है कि मैथ्यू मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस।
1: अरे गौरी, अरे गौरी, तुम हवा में कैसे पहुंच गई? अरे मैं कुछ करता हूँ, ठहरो तुम।
2: ठहरो,
1: फिक्र मत करो, हम तुम्हें अपनी बाहों में उठा के ले चलेंगे।
2: तुम तो उठा लोगे, लेकिन गांव वाले क्या कहेंगे?
1: अरे गांव वाले क्या कहेंगे, यही कि चंदन अपनी होने वाली दुल्हन को अपनी बाहों में लिए घूम रहा है।
2: छोड़ दे मुझे, हट बेईमान कहीं का।
1: अरे

माइती मुकेश, माइती मुकेश और साथी मैं आशा जी आपको मिल के सुनाए हैं यह गीत और हमने पेश की फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। महेंद्र कपूर जी, चलो सुनते हैं आपको क्या सुना रहा है।

जब याद किसी की आती है, पद्मश्री महेंद्र कपूर की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ये शानदार गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में है। चलिए, कार्यक्रम में आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ। तो क्या ख्याल है अगर जब मैं यार आपको ये गीत सुनाऊँ, इस तरह से आ रहा है।

दिल में किसी के प्यार का लता जी की आवाज में सुनाया गया, जबकि आप उपस्थित हैं। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर चून है, चून करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कार्यक्रम भी सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, हमने चून कर ये गीत रखे हैं। जी हाँ, बस आ रहा है ये शानदार गीत इस तरह से।

मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी साथ दी और शानदार गीत हमने पेश किए, जबकि आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपके आपके लिए हमने गीत ये रखे हैं, क्या ख्याल है, बस इत्मीनान से ये लवली गीत सुनिए।

रफ़ी साहब और शारदा जी मिलके आपको ये द्वेत सुनाएं जब भी ये दिल उदास होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि राज कपूर ने कहा कि राधा आज सिर्फ गाएगी भी नहीं लेकिन नाचेगी भी, तो आप सोच सकते हैं मैं कौन सा गीत चलाने वाला हूँ, और नहीं सोचे होंगे तो इस तरह से आ रहा है शंकर जय किशन के साथ पर।

माइती मुकेश जी और लता जी ये दोनों मिलके फिल्म संगम में से सुनाए हैं आपको ये शानदार गीत शंकर जयकिशन के साथ। पर कहा जाता है ये पहला फिल्म था जो देश से बाहर बना संगम, लेकिन मुझे इस पक्का पता नहीं है क्योंकि मैं दुविधा में हूँ। सिंगापुर बना था शमी कपूर का या राज कपूर का संगम। बहरहाल ये गीत हमने चलाए हैं ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म मुद्दत में से निकाले हैं जी हाँ, आशा जी और मोहम्मद अजीज़।

फिल्म मुद्दत में से निकाले हैं आशा जी और मोहम्मद अजीज जी। जब मैं कहूँ बूंद जो बन गई मोती निकली सेफ न सस्त, मैं तो मुकेश और सुमन कल्याणपुर जी, तो क्या ख्याल है अगर ये गीत मैं आपको सुनाऊँ इस तरह से।

गीता राय जी और आशा जी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत हमने पेश की और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और गीत हमने निकाले हैं निकली फैफ तक से ओपन एयर के साज पर और पेश किए ये शानदार गीत। आपको एक बात बता दूं, शायद आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, लेकिन फिर बता देते हैं। उस समय मैं 7 साल का था, जिंदगी में पहली बार ये फिल्म हमने देखे हैं थिएटर में। वैसे तो 83 साल में देखे हैं, लेकिन थिएटर में पहली बार गए हैं थिएटर लुक्सोर में गए ये फिल्म को देखने। बहुत अच्छा लगा था थिएटर में बैठ के, एक कुर्सी पर अच्छा लगा था, वैसे तो बांगी पर बैठ कर देखते थे। बहरहाल ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म सुनहरा संसार में से निकाले हैं नेकदी फैफिन सैफिन तक नौशाद अली के साज पर। और लता जी।

लता जी और मैं तू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं फिल्म सुनहरा संसार में से निकाल कर 1975 का ये गीत नौशाद अली के साज पर हमने चलाए हैं। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है, शाम का वक्त है तो लीजिए इस तरह से।

देखती हूँ जिधर आशा जी। जी हाँ, आशा जी फिल्म हांगकांग में से निकाले हैं निगेटिन ट्विन शस्त्र और ओपन नैयर के साथ पर हमने चलाए हैं। चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं, जब आप भी हैं और मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है।

यार न कैसे हो मुकेश जी और लता जी मिलके आपको सुनाएं मदन मोहन के साज पर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, वो है क्या ख्याल है अगर जो मैं आपको ये सुनाऊं। महेंद्र कपूर जी, फिल्म का नाम है सम्राट, संगीत सम्राट तानसेन। जी हाँ, फिल्म का नाम है संगीत सम्राट तानसेन, फिल्म का नाम है निगेटिव ट्विन, शस्त्र से हम निकाले हैं। इस तरह से हम आपको सुनाते हैं।

दिली दुनिया है मेरी, महेंद्र कपूर जी और लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत। और फिल्म लिखती तू ऐसे कहाँ, देखते हैं संगीत सम्राट तानसेन के साज, फिल्म संगीत सम्राट तानसेन में से निकाल कर हमने पेश किए कल्याण जी आनंद जी के साज पर ये गीत था। चलिए अगला गीत है हम चलाने वाले हैं आपके लिए, बस आप ही हैं मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं मैं चला रहा हूँ, तो क्या ख्याल अगर ये आपको ये सुनाऊँ इस तरह से। अच्छा जी और रफी

इजाज़त हो तो सुना दूँ। ये गीत चला ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, आशा जी और रफ़ी जी ने आपको मिलके सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं द मैन विद द गोल्डन वॉइस। द मैन विद द गोल्डन वॉइस क्या ख्याल है?

एवरग्रीन, जी नहीं एवरग्रीन नहीं, लेकिन द मैन विद द गोल्डन वॉइस, तलत साहब ने आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश किए। जब आप भी हैं मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है, ये गीत तो आप बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम में फिर भी मैं चला रहा हूँ फिल्म अनुपमा में से निकाल कर नेक तीन सेस्तक, और हेमंत कुमार के साज है लता जी है।

0: তোমাদের
1: উঠো না, গা।
0: চলো মুহ হাত ধুলো, याद नहीं, আর দাওয়াত তো জানি।
1: अभी तो बहुत वक्त है, उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो ऐसा मालूम होता है

धीरे धीरे मचल ऐ दिले बेकरार। फिल्म अनुपमा में से निकाले हैं हेमंत कुमार के साथ पर लता जी ने पेश की। और निगेटिव सेंसेस का ये फिल्म 1966 का ये फिल्म है। चलिए जहाँ आप भी हैं मैं भी हूँ तो आपको हम क्या सुनाते हैं। ये गीत हमने चुन की है लेकिन हमने सुना नहीं। किशोर कुमार जी आपको सुना रहा है। फिल्म है देखते हैं संसार में से निकालते हैं चित्रगुप्त के साज पर। क्या ख्याल है एवरग्रीन किशोर कुमार।

हाथों में किताब, बालों में गुलाब, जबरदस्ती की प्यार, हम आपको सुनाए हैं ये चटपटा चुटकुला गीत, एवरग्रीन किशोर कुमार ने आपको सुनाए हैं ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। अगर ये आपको किसी से प्यार है और आप उनके आँखों की तारीफ करना चाहते हो और आपको नहीं पता है कि उनकी आँखों की तारीफ कैसे किया जाए, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ, रफ़ी साहब सुनाता है आपको इस तरह से। मदन मोहन के चास साज पर फिल्म चिराग में से निकाल कर निगति निघ्न शस्त्र 1969 का ये गीत।

तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा किया है रफ़ी साहब की आवाज़ में लता जी मी साथी, और हम आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, ये बंदा जैसे रफ़ी साहब कभी शराब नहीं पीता था, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है किशोर कुमार जी भी शराब नहीं पीता था, लेकिन मुझे पता नहीं पक्का, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल वो भी शराब नहीं पीता था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये गीत गाए हैं एवरग्रीन किशोर कुमार, फिल्म कटी पतंग में से हम आपको सुना रहे हैं।

सागर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले,

एवरग्रीन किशोर कुमार ने आपको सुनाए हैं, ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर फाउंड स्थानीय रेडियो, जी हाँ फिल्म कटी पतंग में से निकाल कर। चलिए माइट मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस इस तरह से।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 3 2 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

हाँ अगला गीत मैं चलाने वाला हूँ, तो ये है इस तरह से मैं मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ रोटी कपड़ा मकान नेगन तीन फिर से इवन तक का ये गीत आपकी जानी पहचानी गीत है।

मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी लता जी और मैं मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस, रोटी कपड़ा मकान में से आपको सुनाए हमने ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और आपका हृदय से स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं। क्या ख्याल है, इस तरह से आ रहा है।

शंकर जय किशन के साज पर मैं थी मुकेश, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला आपको सुना है निकती एन सही फिल्म का एक गीत 1971 का और फिल्म नादान में से चला। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है, ये लंबा चौड़ा गीत सुनिए रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: देख लीजिए, अब कोई नहीं कह सकता कि सर धड़ से अलग था।
1: शाबाश, ये लीजिए आपका इनाम।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: मुस्तफा बाबा, जरा आंखों पर पट्टी बंधवा लीजिए ना।
0: बांधिए बांधिए।
1: कल रात को मैं फिर आपके घर आऊंगी।
0: किसी और की गर्दन काटने का इरादा है क्या?
1: नहीं नहीं, सिर्फ आपसे मिलने।
0: जरूर आइए जरूर आइए।
1: चलिए
0: चलिए चलिए।

हम तेरे चिराग है, जलाए जा बुझाए जा, तवारीख गवाह है, यानी खस्की दिन इतिहास गवाह है, अली बाबा एंड द 43 में ये गीत हमने निकाले हैं। आओ ये असली कहानी है, सही कहानी है, क्योंकि कितने किताबों में आया है, कितने पुस्तकों में इसका जिक्र हुआ है। उषा खन्ना के साज पर नेकदिन ससन सस्त का ये फिल्म हम आपको सुनाएं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से। जी हाँ।

ललिता जी और हेमंत कुमार जी, ये दोनों मिलके ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी सुन रहे हैं और आपके धन्यवाद। एक दो लोग जो ऐप किए कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहता है। बहरहाल वे लोग जान गए हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, रफ़ी साहब का ये गीत सुनिए। ये गीत है फिल्म बेरहम का, जी हाँ, बहुत प्यारा गीत है। नेगेटिव तख्त का ये फिल्म है और बहुत प्यारा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये गीत में बहुत सा ज्ञान भरा हुआ, इसे ध्यान से सुनिए, अगर समय मिले तो सुनिए अवश्य, और अगर आज बिजी हो गए तो काम करते रहिए, लेकिन ये गीत सुनिए, इनकी शब्दों पर ध्यान दीजिए।

पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा, मालिक ने जो लिख दिया है वो बदल ना पाएगा। पता है सही है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी गाया गया है कि भागवत भगवान की आरती पापियों के पाप से है तारती, लेकिन पता नहीं। बहरहाल यह गीत हम आपको सुनाएं, निकती तख्त का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। हमने कहा इन गीत इसलिए कहा कि वर्मा मालिक के लिखे हुए गीत हम आपको सुनाएं कि कितने प्यारे शब्द है इस गीत में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। कहानी किस्मत की टाइटल सॉन्ग।

कहानी किस्मत की मैत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाइए ये शानदार गीत ओफर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत। इस तरह से आ रहा है

महेंद्र कपूर जी और हेमंत कुमार जी की आवाज़ में ओपेनहाइमर के साथ पर फिल्म संबंध में से निकाल कर ये गीत हम आपको सुनाए ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक ही गीत और हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कार्यक्रम लेकर बढ़ेंगे। ये गीत इस तरह से है।

हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, ये शानदार गीत चला लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हमने पेश की www.pinfaunfm.nl पर। आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। या शाम के कार्यक्रम में तो लीजिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

0: आई लव यू, ये शानदार डुएट हमने पेश की हो परफॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं ओम मैं चला रहा हूँ, इस तरह से हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।
1: Thank you.

फन फन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तैयार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी राशि, लगन तथा स्वप्न के बारे में। तो हम पहले बढ़ते हैं लगन के बारे में। मनुष्य प्रायः पहले चार सुखों के बारे में ही स्वप्न देखता है, क्योंकि वह इन्हें कर्मानुसार पसंद करता है। ये चार सुख इस प्रकार हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। हम सब देखते हैं कि किस लगन वालों के लिए किस किस ग्रहों के योग से ये सभी स्वप्न साकार होते हैं। पहला है मेष लगन। इस लगन के जातकों के चारों सपने इस प्रकार साकार होते हैं। यदि लग्नेश मंगल बलवान शुभ ग्रहों के द्वारा देखा गया हो या शुभ ग्रह लगन में हो तो स्वास्थ्य दीर्घ आयु का सपना साकार होता है। लक्ष्मी साकार स्वप्न के लिए चंद्र केंद्र त्रिकोण स्थिति के 2 व 12 के स्थान पर गुरु शुक्र हो तो जातक पर लक्ष्मी की पूर्ण कृपा हो जाती है। केम ध्रुव प्रयोग हो या लगन 2/8 पाप ग्रह हो तो लक्ष्मी का स्वप्न अधूरा रह जाता है।

हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। दूसरा है वृष लगन। इस लगन वालों के चारों स्वप्न इस प्रकार साकार होते हैं। स्वास्थ्य दीर्घ आयु का स्वप्न तब साकार होता है जब लग्नेश शुक्र बलवान हो, शुभ ग्रह देखते हो या शुभ ग्रह लगन को देखते हो। निर्बल होने से शरीर के स्वप्न को निर्बल कर देते हैं। आर्थिक विषय का स्वप्न तब साकार होता है जब बुध बलवान शुभ ग्रह धन लाभ स्थान में स्थित हो या इन स्थानों को देखते हो। बुध निर्बल हो तथा केमद्रुप योग होने से स्वप्न निराधार हो जाएगा। सुनने वालों अब हम आगे बढ़ते हैं मिथुन लगन की ओर। इस लगन वालों के स्वप्न इस प्रकार है। बुध गुरु केंद्राधिपति दोष से युक्त होने या निर्मल होने पर यह स्वप्न शून्य मात्र रह जाते हैं। आर्थिक विषय का स्वप्न तब साकार होता है जब धनेश चंद्र लाभेश मंगल बलवान को शुभ ग्रह देखते हैं। चंद्र बलवान के दोनों और शुभ ग्रह हो इसके विपरीत होने पर निराधार हो जाएगा। सुखी ग्रह जीवन का सपना तभी साकार हो पाएगा जबकि सप्तमेश गुरु बलवान हो। गुरु केंद्राधिपति दोष होने से स्वप्न बिगड़ जाता है। संतान सुख का सपना तभी साकार होगा जब पंचमेश शुक्र बलवान हो। इसके प्रतिकूल होने पर जातक संतान की ओर से दुखी रहेगा।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं कर्क लगन की ओर। कर्क लगन स्वास्थ्य दीर्घायु का सपना तब साकार होगा जब लगनेश चंद्र बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो, या लगन को शुभ ग्रह देख रहे हो या वहाँ स्थित हो। निर्बल होने पर या केंद्र त्रिकाण में कोई शुभ ग्रह ना होने पर स्वप्न निराधार हो जाएगा। लक्ष्मी स्वप्न कर्क लगन वालों का जब साकार होता है तब चंद्र बलवान के दोनों ओर शुभ ग्रह धन लाभ भाव में स्थित हो या इन स्थानों को देख रहे हो। निर्बल रहने पर स्वप्न अधूरा रहकर जीवन को अशांत कर देता है। स्त्री स्वप्न साकार करने के लिए शांति बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो या शुभ ग्रह बलवान सातवें भाव में स्थित हो या उस स्थान

को देख रहे हो, यदि सातवां भाव निर्बल हो, सप्तमेश निर्बल हो, शांति निर्बल हो, तो ग्रस्त जीवन खराब हो जाता है। संतान स्वपन सुखी होने के लिए पांचवां स्थान या पंचमेश बलवान हो, मंगल बलवान पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, इन योगों के निर्बल होने पर स्वपन भी निर्बल हो जाएगा।

सुनने वालों, अब हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं सिंह राशि की ओर कि सिंह राशि में सिंह लगन कैसे स्वप्न साकार करते हैं। सिंह लगन, इनको स्वास्थ्य शरीर का सपना साकार होने के लिए लगनेश सूर्य बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो, शुभ ग्रह लगन में हो या इनको देख रहे हो, इसके विपरीत शरीर में कष्ट होता है। अर्थ संबंध में बुध को शुभ ग्रह देख रहे हो, शुभ ग्रह धन भाव में स्थित हो या उन्हें देख रहे हो तो लक्ष्मी स्वप्न साकार हो जाता है, अन्यथा दरिद्र रहते हैं। इस लगन वालों को का सुलक्षणा स्त्री का स्वप्न तभी साकार होता है जब शनि बलवान हो, इसके विपरीत यह सपना अधूरा रह जाता है। योग्य संतान का चौथा स्वप्न फलीभूत होने के लिए पंचमेश बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो या शुभ ग्रह पांचवें स्थान पर बैठे हो, अन्यथा यह स्वप्न व्यर्थ हो जाता है।

सुनने वालों, अब आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर, यानी कन्या लगन। सुखी गृहस्थ जीवन के लिए बलवान गुरु केंद्राधिपति दोष रहित हो और इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, या सातवें बलवान ग्रह हो या इस प्रकार इनकी दृष्टि हो। मनुष्य संतान सुख तभी प्राप्त करेगा जब बलवान शनि पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या पांचवें बलवान शुभ ग्रह स्थित हो या इनकी दृष्टि हो। इसके विपरीत जातक संतान की ओर से दुखी ही रहता है।

सुनने वालों, सपन तो हम सब देखते हैं और सपनों का कुछ अर्थ भी होता है और उनके कुछ फल भी देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा लेके आई हूँ सपन और उनके फल, यानी जो लोग हम सपना देखते हैं उनके फल क्या निकलता है। जैसे अनाज भरना, तो उसका फल निकलता है धन लाभ। अगर सपने में हम अनाज देखते हैं तो उससे हमें धन का लाभ होता है। मरण होना, अगर हम मरने का सपना देखते हैं तो हमारी दीर्घायु यानी हमारी आयु लंबी होती है। आंधी देखना, यानी सपने में अगर आंधी तूफान देखते हैं तो उसका मतलब है संकट चिंता।

सुनने वालों, हम जैसे सपने देखते हैं और सपनों का मतलब भी होता है, और अभी मैंने आप सबको बताया कि उसके फल भी देखने के लिए मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे इमारत देखना। सपने में हम लोग इमारत का मतलब कि कोई बिल्डिंग देखे या कोई बड़ा मकान देखे तो उसका फल हमें मिलता है लाभ। तो हमें किसी भी चीज़ का लाभ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि खाली पैसे का लाभ हो, और भी किसी वस्तु का लाभ मिल सकता है। ऊंचाई से गिरना, अगर हम सपने में ऊंचाई से नीचे गिरते हैं तो उसका मान हानि या हमें हानि होती है। कुत्ते का काटना, अगर सपने में हमें कुत्ता काटता है तो उसका फल है शत्रु भय, कि हमें अपने शत्रु से भय है या किसी भी चीज़ से हम डर सकते हैं।

सुनने वालों, अगर हम सपने नाव देखते हैं यानी बोट को देखते हैं तो परेशानी फल मिलता है कि उससे हमें परेशानी कोई भी मिल सकती है। चित्र देखना कि सपने में हम किसी भी तरह का चित्र देखें तो उससे हमें राज्य लाभ कि हमें लाभ की प्राप्ति होती है। जहान देखना उससे हमें होता है स्त्री क्लेश

सुनने वालों, अगर हम सपने में जवाहरात, हीरे जवाहरात देखते हैं तो कार्य सफल, तो उसका फल मिलता है कि हमारे जो भी कार्य हैं सब सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं।

सपने में हम सुनने वालों, अगर तख्त पर बैठे हुए हैं तो उसका मतलब है इज्जत पाना। तख्त मीन्स किसी ऊंचाई पर बैठे हैं या किसी सिंहासन पर बैठे हैं या ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं तो हमें इज्जत मिलती है। तालाब स्नान, अगर हम तालाब में स्नान करते हैं तो उससे भी इज्जत मिलती है। दरिया में नहाना, उससे हमें रोग नाश होता है।

सुनने वालों, ये है फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। अब मैं आपके लिए थोड़ी और ज्ञान की बातें लेकर आई हूँ कि ध्यान रखने योग्य बातें। हमें कुछ ऐसी बातें ध्यान में रखनी चाहिए जिसको ध्यान में रख के हम थोड़ा सा अपना काम सुधार सकते हैं। सिर्फ ज़िंदगी ना गुजारो, उसे अच्छी तरह जियो। खाली ज़िंदगी गुजारनी नहीं चाहिए, उसे अच्छी तरह जीना भी चाहिए। सिर्फ छुओ नहीं, महसूस करो कि हमें कुछ चीज़ें सिर्फ छूनी नहीं चाहिए, उसको महसूस भी करना चाहिए। सिर्फ देखो नहीं, गौर करो। हम किसी चीज़ को देखते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाते, लेकिन उसे ध्यान से गौर से देखना ज़रूर चाहिए। सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। हम किताबें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाते, उन बातों को जीवन में भी उतारना चाहिए। सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो। हम कहीं भी जाते हैं, किसी की बातें सुनते हैं और कभी अनसुनी कर देते हैं, लेकिन उन बातों को थोड़ा ध्यान से ज़रूर सुनना चाहिए। सुनने वालों,

अब हम आगे चलते हैं। सुनने वालों, हो सकता है कि बेहतर काम करने के लिए कोई आपकी तारीफ ना करे, पर यह जान ले कि बढ़िया काम करने का एहसास ही खुद में एक बड़ा पुरस्कार होता है। कार्य के प्रति लापरवाही या देर से अथवा ना करने की प्रवृत्ति स्वयं अपने आप को धोखा देना होता है। फलदार वृक्ष और गुणवान व्यक्ति हमेशा झुकते हैं, सूखी लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते हैं।

अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों, किसी भी दिन का अफसोस मत कीजिए, अच्छे दिन हमेशा खुशी देंगे और बुरे दिन अनुभव देंगे, इसलिए हर क्षण का आनंद उठाने की ठान लीजिए। अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो पाए तो ज़्यादा अच्छा। ज़्यादा अच्छा क्यों? क्योंकि यही ईश्वर की मर्ज़ी है। दिल बड़ा रखो, दिमाग ठंडा रखो, वाणी मीठी रखो, फिर आपसे कोई नाराज़ हो तो कहना। सच बोलती हूँ तो टूटते हैं रिश्ते, चुप रहती हूँ तो खुद टूट जाती हूँ। दुनिया में कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है, बस हौसला और मेहनत की ज़रूरत है। इम्पॉसिबल को गौर से देखिए, वह खुद कहता है आई एम पॉसिबल।

सुनने वालों, अब हम आगे चलते हैं। कालवास, प्रत्येक वार को काल का निवास अलग अलग दिशाओं में होता है। रविवार उत्तर की ओर, सोमवार वायव्य, मंगलवार पश्चिम, बुधवार नेतृत्व, गुरुवार दक्षिण, शुक्रवार अग्निकोण, शनिवार पूर्व। इसलिए किसी में शुभ कार्य के लिए इन दिनों में संबंधित दिशाओं में यात्रा नहीं करनी चाहिए। रविवार को उत्तर में वज्र से शुरू करके एंटी क्लॉक वाइज चले। संबंधित वार को संबंधित दिशाओं की तरफ से विषैली किरणों का अंश आता जाता है और वे अपना क्रम बदलती रहती हैं। यह क्रम ठीक उसी क्रम में बदलता रहता है जिस क्रम को भारतीय ऋषि महर्षियों ने काल दिशा निर्धारित की है। इन दिनों में इन दिशाओं की यात्रा में शारीरिक रूप से विषैली किरणों का सामना करना पड़ता है और कार्य सफलता में भी बाधाएं आती हैं। उस पर ऐसी किरणों का प्रभाव होने से जब वह सामने वाले व्यक्ति के पास जाती हैं तो उसके शरीर से एक ऐसी गंध प्रवाहित होती है जो सामने वाले व्यक्ति को भ्रमित करती है। काल निवास की गणना नंबर वार घड़ी के विपरीत दिशा में चलकर करनी होती है।

सुनने वालों बाबा आगे चलते हैं। छिपकली गिरने तथा गिरगिट चढ़ने का फल। छिपकली तो आप सब लोग जानते हैं और गिरगिट होती है कैमलियन, और अगर हम सपने में इन दोनों को देखें और उसका क्या फल प्राप्त होता है, अब मैं वो बताने जा रही हूँ सुनने वालों। रोते हुए अगर हमें छिपकली या गिरगिट रोते हुए मिले तो उसका हमें फल मिलता है मनोरथ सिद्धि। हंसते हुए अगर हमें सपने में ये दोनों हंसते हुए मिले तो उनका फल मिलता है भयानक घटना। सोते हुए अगर ये दोनों हमें सोते हुए मिले तो उसका फल मिलता है देर से फल प्राप्त होता है, यानी उसका फल हमें जल्दी नहीं प्राप्त होता। जागृत अवस्था अगर हम इन दोनों को सपने में जागते हुए देखें तो तत्काल फल प्राप्त होता है, तो हमें तुरंत ही उसका फल प्राप्त हो जाता है सुनने वालों। भोजन करते समय कुछ भी फल ना हो, अगर ये दोनों हमें भोजन करते हुए दिखाई दिए सपने में तो उससे हमें कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता।

विश्वास तो दर्पण है, तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं, जोड़ो तो पहले जैसा अक्स नहीं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा।

0: संदेश का विषय है, जो विषय है अभी उसके बारे में बातचीत होगा। पर हमारे साथ स्टूडियो में शांता जी भी उपस्थित है और राजेंद्र जी। तो शांता जी पहले कुछ कहे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। राजेंद्र जी,
1: मोहब्बत तो बस एक एहसास है, मोहब्बत तो बस एक एहसास है, जिसे हो जाए बस वही खास है। मेरी आवाज़ के प्यारे सुनने वालों, सेविका शांता जी की प्यार भरी राम राम प्रणाम। आज जो कि हम यहाँ पर उपस्थित है, जैसे हमारे संजय जी ने कहा, ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम लेके, तो बढ़ चलते सुनने के लिए हमारा राजेंद्र जी क्या कहती है।
2: फाहून हिंदुस्तानी रेडियो को सुनने वाले सभी श्रोतागणों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। कुछ नया प्रोग्राम लेके, जो विषय है आज कपूर का है, कपूर की क्या विशेषता है, सब सुनने को मिलेगा। और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इस पे, और जिस लोगों को कुछ पूछना हो तो तार भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं संजय जी की तरफ, क्या कुछ कहना चाहते हैं तब तक?
0: जरूर कुछ कहना चाहता हूँ राजेंद्र जी, क्योंकि ये हर सप्ताह के तरह हम सब पहले अपने सभी सुनने वालों के लिए उदासी मन जो गीत है ना, क्योंकि किसी ने कुछ भेजा है ये उदासी मन के लिए।
2: हाँ, तो जरूर पहले
0: किसी ने भेजा है कि पति और पेप्सी को सामने रख कर उदास बैठा था ना। शांता जी, पेप्सी वो एक ड्रिंक होता ना।
2: हाँ, पेप्सी कोला।
0: बोले पति पेप्सी सामने रख कर के उदास बैठा था, पत्नी आया और पेप्सी पी गई और बोली कि आज उदास क्यों है। ऐसा पूछा है पत्नी ने पति से कि उदास क्यों है, तो पति बोला आज तो दिन ही खराब है, सुबह तुमसे झगड़ा हो गया, रास्ते में कार खराब हो गया और ऑफिस लेट पहुंचा, बॉस ने नौकरी से निकाल दिया, अब सुसाइड करने के लिए पेप्सी में जहर मिलाया था, वो भी तू पी गया। तो राजेंद्र जी चला दीजिए वो गाना।
2: हाँ, उदासी मन वाला गाना चलाना जरूरी है अब तो।
0: हाँ, ये तो चलाना ही पड़ेगा,
2: नहीं तो लोग उदास बैठे रहेंगे।

0: तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काय को करे। इस भजन को सुनने के बाद सबका मन उदासी से एकदम हट जाता है। और जैसा कि आपको आज का विषय पता ही है, मैंने बता रखा कि कर्पूर, कर्पूर यानी
1: कपूर कहते हैं राजेंद्र जी। जो हम लोग यहाँ पर करीना कपूर को तो थोड़ो बोलते हैं शांता।
2: नहीं, कपूर फैमिली से नहीं।
1: ओ, ये कपूर फैमिली से जुड़ा नहीं है?
2: नहीं, ये वो कपूर फैमिली है, ये कपूर ये एक वस्तु है ना,
1: वस्तु
0: नहीं। तो ये इसमें कपूर को डच में क्या बोलेला?
1: कहते हैं राजेंद्र जी उसे कहते हैं काम्फर।
0: काम्फर तो अंग्रेजी में बोले लमन
1: है,
0: अंग्रेजी में
1: बोले तो काम्फर अंग्रेजी है।
0: हाँ, अंग्रेजी है।
1: ना ना ना। तो दोस्तों, ये हम सब आज ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और जैसे कि पता चल ही गए हैं कि आज का विषय हम सब जो हमारे प्रयोग करते हुए हम काम्फर जो हम कपूर कहते हैं उसके बारे में अभी काफ़ी जानकारी हम सबको प्राप्त होने वाले है। पर राजेंद्र जी, वो तो पहला, क्योंकि हमारे विशेषज्ञों लोग ने हम लोग के लिए कुछ कार्यक्रम बनाने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ कर और खोज करके रख देते हैं। तो दूसरा क्या है आज का ऑफिशियल?
0: ऑफिशियल दूसरा है तीर्थ स्थल। भारत में एक ऐसा तीर्थ स्थल जिसमें कि लोग बहुत दूर दूर से देखने को आते हैं और उसको मोक्ष पाने की भी इच्छा रखते हैं, ऐसा तीर्थ स्थल जो उससे लोगों का, मुझे लगता कि लोग सुनेंगे तो जरूर जाएंगे, थोड़ा बचाए के।
1: हाँ, थोड़ा। हाँ, सही बात, आप एकदम बिल्कुल सरनामी हमारे हिंदुस्तानी में बात कर रहे हो राजेंद्र जी। श्लोक बदल जाते हैं, आपके बदलने में थोड़ा से भी देर नहीं लगा और हमारे भाषा में जो आप सहयोग दे रहे हैं। दोस्तों, आज जैसे कि अभी आपने सुने कि विषय जो है, और पहले हम लोग बात करेंगे कि जो हम कपूर प्रयोग करते हैं और कपूर कहाँ प्रयोग किया जाता है शांता जी?
2: यहाँ पे खास तौर पे हम देखते हैं तो हवन में प्रयोग,
1: हवन आदि में कपूर खूब प्रयोग किया जाता है।
2: हाँ, वो पहला, हाँ, जैसे हम जानते हैं ना,
0: कपूर की आरती भी होती है।
1: आरती भी होता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगिंद्रम। दोस्तों, अभी हम सब उसके बारे में जरूर काफी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, पर ये हम जाने कि हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं है, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। और अभी हम सब उस ओर बढ़ने वाले हैं जिस ओर से हम सबको काफ़ी जानकारी को प्राप्त होने वाला है। राजेंद्र जी, क्यों ना थोड़ा से संदेश सुना देते हैं तो फिर हम एक,
0: हाँ जरूर,
1: सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।
0: हाँ, संदेश की ओर बढ़ते हैं। कर्पूर सुर्खियों में, डॉक्टर भी कपूर इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। कल तक जिस कपूर के धुएं को पर्यावरणवादियों ने प्रदूषण कहकर खारिज कर दिया था, आज वही धुआं संकट में प्राणवायु बन गया है। यानी कि कुछ लोग पहले कहते थे कि ये धुआं है, इसको नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि इससे प्रदूषण होता है, लेकिन आज लोग कह रहे हैं कि इसकी प्राणवायु अच्छी है, प्राणवायु के लिए भी अच्छा है। एक समय था जब प्रत्येक घरों में सुबह शाम कपूर की आरती गाई जाती थी। संपूर्ण घर के कोने कोने में कर्पूर का धुआं किया जाता था। तत्पश्चात घर के सभी सदस्यों को कर्पूर की आरती दी जाती थी, जिसमें जलती लौ का धुआं दोनों हाथों से लेकर, चेहरे से लेकर सीने तक हथेलियां फेरी जाती थी। किंतु आधुनिकता की अंधी दौड़ के और चंद किताबों पढ़कर पाई डिग्रियों के आंकठ घमंड में हम इतने चूर हो गए कि इन्हें अंधविश्वास मान लिया गया। कर्पूर गौरम करुणावतारम आरती हमें ढोंग और समय बर्बादी लगने लगी। प्राणवायु कपूर आरती धुआं लगने लगी। खुद को वैज्ञानिक समझने वाले हमने ये जानने की कोशिश ही नहीं की आखिर हवन, कर्पूर, रीति रिवाज हमारी जीवन शैली का हिस्सा क्यों थे। हमारे पूर्वज विज्ञान से भली भांति परिचित थे। सनातन स्वयं एक विज्ञान है, लेकिन उस वक्त कोई वैज्ञानिक शब्दावली तो थी नहीं, अतः उन्होंने विज्ञान को धर्म से जोड़कर दिनचर्या का अहम हिस्सा बना दिया। आज वैज्ञानिक प्रयोग, मात्र 3-4 दशक पूर्व तक प्रत्येक घरों में हवन होते थे, किंतु आधुनिकता का सर्वश्रेष्ठ और पिछड़ा मानने की मानसिकता के चलते हमने सब कुछ भुला दिया।
1: राजेंद्र जी, ये बताइए कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि यहाँ हवन होता है, जहाँ पर कपूर को जलाया जाता, वहाँ पर ये जैसे कि आपने भी कहे कि वहाँ कोविड का भी
0: खतरा कम होता है,
1: खतरा कम हो जाता है
0: जी,
1: तो इसमें यानी कि इससे हमारे लिए जो हम समझते थे कि हमें धुआं जो हो जाता है और हमारे हानिकारक हो सकता है, तो ये हम गलत समझते थे।
0: हाँ, वो धुआं, ये धुआं अच्छा वाला है, कपूर वाला
1: धुआं अच्छा है।
0: हाँ।
1: अच्छा, तो ये बात है,
0: जैसे हवन करते हैं तो वो जो धुआं उड़ता है वो तो वायु वायुमंडल को शुद्ध करता है।
1: तो वैसे तो हवन हम सब करते हैं तो कुछ औषधियों के साथ ना।
0: हाँ।
1: तो उसमें तो ऐसा चीज मिलाया गया जिसे हमें कभी हानिकारक हो ही नहीं सकता
0: जी,
1: और इसमें कपूर डाल दो तो और भी बढ़िया।
0: हाँ, कपूर भी एक पेड़ का ही, पेड़ से ही बनता है।
1: पेड़ से बनता है?
0: हाँ, एक पेड़ कपूर का पेड़ होता है, उसी का सत निकाल के कपूर बनता है।
1: ऐसा?
0: हाँ।
2: तो मैं 10 में बता दूँ?
0: हाँ बताइए।
2: जैसे अभी राजेंद्र जी ने कहा ना, काम्फर कपूर का पेड़ होता है, यानी कि काम्फर बोम। द काम्फर बोम इज अ बोम दी मैक्सिमल 30 मीटर हॉग होर्ड। द फन ओरस्प्रोंग ग्रोइ द बोम अलेन इन जापान, कोरिया, मंगोलिया, इंडिया, ताइवान एंड साउथ ओस्ट चीना। काम्फर इज अ स्टफ दी फन हैट काम्फर हाउट वर्ड geëxtrateerd. Deze kamfer is een wit kristallijn poeder die als specerij en geneeskruid de mensheid als veel honderden jaren dient. De Japanners hebben gedurende de 17e en de 18e eeuw dit product het meest verkocht en hebben er veel geld mee verdiend. Kamfer wordt verkregen uit het hout van een kamferboom. Kamfer werd vroeger vooral bij reumatische aandoeningen en spierpijn gebruikt. तो हम आपको थोड़ा से बता दें कामफर के पेड़ के बारे में।
1: तो ये तो हमें पता ही नहीं था कि कामफर पेड़ से निकाला जाता है, पेड़ से, और उसका पेड़ होता है और उसे बनाया जाता है।
2: इसलिए हम ऐसे ऐसे आर्टिकल हम लोग लाते हैं ना, में ज्योति का प्रकाश इसलिए है,
1: जिसे हमारे जीवन का ज्योति में जो जो जल रहे हैं उसमें थोड़ा और प्रकाश
2: हो जाए। हाँ, वाकई में जैसे मैं भी नहीं जानती थी, ऐसे हमारे भी बहुत से सुनने वालों हो जो नहीं जानते हैं।
1: सही बात है राजेंद्र जी, क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़े, ताकि हम सब कार्यक्रम फिर आगे बढ़ा सके।
0: जरूर, एक सुंदर सा जो शंकर जी का गीत है, शिव शंकर सॉन्ग है, सोनू निगम जी ने गाया है, शिव भक्ति सॉन्ग से लिया गया है, उसको हम बढ़ाते हैं आगे।

0: जयती जयती शिव शंकरा, बहुत ही प्यारा जो भजन अभी सोनू निगम जी ने सुनाया है उसका, शांता जी आप क्या कहना चाहेंगे?
1: शांता जी, हाँ जी हाँ, ये काम्फर जो है ना, ये कपूर है, काम्फर एसेंशियल ओली वर्थ ओक इन अरोमाटिस अंदर आंदर गब्रुक बाई ऑनसाइफर हुइट येक येक पेशस kneuzingen, verstuikingen, ontstekingen, hoesten, koude rillingen, reumatische pijnen, spierpijn, artritis, slechte doorbloeding van de benen, schaafwonden, koorts, griep, infecties, opkomende verkoudheid. Is dat kelie aap kamfer gebruik kan zeggen hè? Ook kamfer je bij niet hè? Die jo ham gebruik karte hè? Hawan kelie. पर काम्फर वैन भी बिकाता है, काम्फर ओली स्पिरिट्स भी बिकाता है, आप उसको जो खरीदे तो उसके उससे ज़रूर से ओकर खबर एक अनवाइसिंग ख्याल कर लेना और पूछ लेना इससे कैसे इस्तेमाल करते हैं।
0: बहुत अच्छी जानकारी शांता जी ने दी है। अब जो हमारी जानकारी बची थी उसको हम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। काम्फर जो है उसका दोष भी हमने अपने बड़े बुजुर्गों को पर मर दिया, किंतु आपके बड़े बुजुर्ग तो पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु आप तो थे। आपने क्यों नहीं रीति रिवाजों के पीछे छुपे विज्ञान को जानने की कोशिश नहीं की? खुद को पढ़ा लिखा कहने वाले हम ये भूल गए कि विज्ञान बिना प्रमाण के किसी को विश्वास अंधविश्वास नहीं मानता। फिर आपने कैसे बिना प्रमाण के मात्र दुष्प्रचार में बहक कर सर्वश्रेष्ठ परंपराओं को अंधविश्वास ठहरा दिया? आज दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी के वक्त, मानवता पर संकट के वक्त, आधुनिक दुनिया पुनः शरण की शरण में है। हवन, कर्पूर, अजवाइन, हल्दी, हस्त प्रक्षालन,
2: उसे और कितनी चीज में प्रयोग करते। तो हमें ये बात भी ख्याल आता था कि हम सब जब छोटे थे ना
1: जी,
2: तो नारियल के तेल हम सब घर पे निकालते थे ना
1: जी,
2: तो नारियल तेल के बाद में और उसे मिला करके बोतल में, तो वहाँ सूरीनाम एक देश है जहाँ पर एक उसे हम क्या कहे, पशु नहीं कह सकते हैं, उसे हम पंछी नहीं कह सकते, उसका नाम है मस्किटा। बहुत काटते थे और दूसरा होते थे मम पीरा ना,
0: मस्किटा की मच्छर,
2: मच्छर हाँ, हाँ। आप कहते हैं मच्छर पर उसे हम लोग कहते हैं मस्किटा। बड़ा काट काट करके बस बना देते थे, और खास करके जब बरसात के समय आते थे ना तो बहुत काटते थे। तो हमें एक ख्याल है कि वो पहले लोग और जा करके नारियल के तेल से और कपूर लगा उसमें डाल करके और शरीर पे लगा देते, तो ये हमें पता नहीं कि ठीक था और कि नहीं ठीक था। शांता जी इसमें आप कुछ कह सकते हैं?
1: तो जैसे अभी ने कहा ना, तो उसका खैर जो है ना
2: हाँ,
1: उससे भी मस्किटास जो है, मस्किटा जो है ना
2: हाँ,
1: मच्छर जो हमारे राजेंद्र जी कहते हैं वो भागते हैं।
0: तो कपूर की जो स्मेल है उससे बैठ ही नहीं पाते, अगर बॉडी में लगाया है तो इसलिए वो भाग जाते तो काटे
1: निकालते।
2: क्योंकि मैं सर मक्का जब जाते थे ना राजेंद्र जी
0: जी,
2: तो मुझे बहुत मस्किटा काटा वहाँ। आज
0: सर मक्का कहाँ रहे?
2: अरे बहुत दूर है सूरीनाम में, और यहाँ वानिका से जो छुट्टे थे वहाँ, तो वहाँ सर मक्का में एक बोट लेकर हबड़ा होते थे स्तूपफेर, और हबड़ा होकर के और जाना पड़ता था, कितना दूर चलना पड़ता था, और वहाँ उस समय पे ना ही बिजली था ना ही पानी था, क्रान जो हम कहते हैं ना वो था ही नहीं। और एक चीज था वहाँ बहुत, वो था मस्किटा। तो बहुत मुझे काटा। तो आज जब हम जानते हैं ये बात आगे से, तो हम भी लगा लेते ना कपूर का तेल। आगे कार्यक्रम में क्या सुनाने वाले हैं आप?
0: आगे का जो कार्यक्रम है, इसलिए कहते हैं कि मजबूत जड़ों वाला वृक्ष ही आंधी तूफान झंझावतों में टिक पाता है। अगर यानी कि आप अगर मजबूत हैं, वृक्ष यानी कि मजबूत है, तो आंधी आए तूफान आए वो गिरने वाला नहीं है। वैसे ही आप अगर मजबूत हैं अंदर से, तो अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, हम सब ये लड़ाई अवश्य जीतेंगे। यही आज का कपूर का संदेश है। अब अगला संदेश इस गाने के गीत के बाद रहेगा।
2: राजेंद्र जी, मुझे तो इस संदेश सुन करके कुछ ख्याल आ गया।
0: हाँ जरूर
2: सुना सकता हूँ।
0: हाँ जरूर।
2: शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीतने के मूल मंत्र है।
0: हाँ।
2: शिक्षा कभी झुकने नहीं देती और संस्कार कभी गिरने नहीं देती। ये संदेश जो आपने दिए हम सबको कपूर के अंतर्गत काफ़ी और अच्छा संदेश, जो हम सब अभी भी, क्योंकि आजकल कुछ और मिलता है ना जो आप द्रोखेस में खरीद सकते हैं और लगा लो शरीर में तो और मस्कीटा नहीं काटते, पर नहीं पता है कि वो ठीक है या नहीं ठीक है।
1: अब जैसे हम भी यहाँ पे कुछ तैयारी करके खोज करके भी आई है, तो जो हम अभी आपने कहा ना कि हम सूरीनामे में नरियर के तेल में और कपूर मिलाते थे, तो ये तैखर बालम भी जो ना खबर करते उसमें भी मिला हुआ है मेंटोल और कॉम्फर।
2: तैखर बालसम
1: में भी कपूर खनिज के अंदर में खनिज मेदल खत भी खबर कर सके, जैसे अभी ना कहा स्पीड पेन फर सिक्त कर ऐसे वैसे जो हमने कहा उस सब में कम मात्रा से खबर कर सकते हैं।
2: अच्छा, तो राजेंद्र जी संदेश जो शांता जी भी सुना दिया कि तैखर बालसम में भी कपूर का प्रयोग किया गया है, ये एक चीज है जो सूरीनाम में बहुत प्रयोग किया जाता था ना, सभी के घर पे होते थे। और एक और चीज होते थे शांता जी, छोटी सा शीशी में बोतल में, और
1: जो कॉम्फर ओली
2: उसका नाम होते थे शिलिंग ऑयल। ये पुराना चीज है जो आजकल हमारे घर पे नहीं होते, पर हमारे घर पे पहले सूरीनाम में इन चीजों हर बार होते थे। और एक और होता था, उसको कहते थे अल्कोलाद, वो हरी हरी होते थे, वो सिर का दर्द के लिए होते थे, लगाते थे। पर राजेंद्र जी अगले विषय क्या रखे हैं आप आज का, जो कि कौन सा तीर्थ स्थान के ओर हम सब अभी छलांग लगा रहे?
0: हाँ, अगला जो विषय है वो बहुत विशाल विषय रहे, और उससे पहले हम चाहेला एक जो आदि योगी का कैलाश खैर गाना है, बहुत ही अच्छा है, शंकर जी के ऊपर है, हम चाहेंगे कि उसको लोग पहले सुने और इसके बाद अगला विषय की ओर।

0: आदि योगी उतरे मुझ में, ऐसा कहते हैं। खैर जी, तो आज की जो चर्चा चल रही थी, हम कह रहे थे कि एक तीर्थ स्थल की बात करेंगे। तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कासगंज जिले में एक कस्बा है, यह गंगा नदी के समीप स्थित एक तीर्थ स्थल है। यानी कि भारत के जो कस्बा मतलब एक छोटा सा शहर है और गंगा नदी के किनारे में है, तो तीर्थ स्थल कौन सा है इसके बारे में जानेंगे। यह भारत उत्तर भारत का एक प्रमुख स्थल है जो सूकर क्षेत्र के रूप में विख्यात है। सूकर क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कासगंज से 15 किलोमीटर दूर है। इस तीर्थ का पौराणिक नाम उखूल तीर्थ है।
1: कौन सा नाम कैसे है भैया?
0: पौराणिक मतलब पुराना बहुत, उखूल तीर्थ, उखूल उखूल तीर्थ के नाम से इसको जानते हैं। इसमें सोरो सुकुर क्षेत्र के प्राचीन नाम सोरोख्या का उल्लेख पाली साहित्य में भी है। सोरो सुकुर क्षेत्र में प्रत्येक अमावस्या सोमवती, अमावस्या पूर्णिमा, रामनवमी, मोक्षदा एकादशी आदि अवसरों पर तीर्थ यात्रियों का बड़ी संख्या में आवागमन होता है और गंगा में स्नान कर पुण्य प्राप्त करते हैं। यहाँ अस्थि विसर्जन का विशेष महत्व है। यहाँ स्थित कुंड में विसर्जित की गई अस्थियाँ 3 दिन के अंत में रेणु रूप धारण कर लेती है। यह महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि भी है। सोरो सुकुर क्षेत्र के तीर्थ पुरोहित जगत विख्यात हैं। इनके पास प्रत्येक परिवार के पूर्वजों का इतिहास रहता है। यानी जब पंडा लोग, आप जानते होंगे, गए होंगे हरिद्वार और बद्रीनाथ केदारनाथ, तो वहाँ पे पंडा रहते हैं। तो पंडा लोग क्या करते हैं कि पूरा इतिहास रखते हैं कि कौन कब तुम्हारे माँ बाप दादा पुरदादा कब आए। हाँ,
2: पंडा है क्या चीज़ राजेंद्र जी? बढ़िया से, क्योंकि ये बात मैंने सुना है कि पंडा के पास जाना चाहिए, और पर किस लिए जाना चाहिए, वो क्या करते हैं?
0: हाँ, पंडा जो रहे, पंडा यानी विद्वान पंडित, और उस तीर्थ स्थल स्थल के पंडित, कुछ लोग पुजारी रहते हैं जो भगवान के जो मंदिर होता है उसमें पूजा करते हैं, लेकिन कुछ लोग पंडा रहते हैं कि जो उनके भक्त आते हैं, मतलब उनके जो, जैसे आपका सूरीनाम है, तो सूरीनाम जब आप जाएंगे बद्रीनाथ तो बोलेंगे उनको कि सूरीनाम का पंडा कौन है, तो वो मिल जाएगा आपको वहाँ पे,
2: वहाँ
0: इजीली। हाँ, और उनका पास पूरा एक बही खाता होता है, ऐसा इतना बड़ा
2: खाता, बोले बड़ी बुक।
0: हाँ, खाता मतलब आपका पूरा 10 जन्मों का, आपका बाप दादा परदादा कौन कौन वहाँ गए।
2: 150 साल पुराना,
0: 150 हजारों साल,
2: उतना पुराना
0: जब गए होंगे जब से, तो वो सब वो एक मिनट में फटाफट बता देंगे, निकालेंगे, और आपके ये पिताजी का नाम है, दादा का नाम है, परदादा का नाम है, यहाँ आए, इस स्थान में आए, वो लिखा रहता है। और अब जब आप जाएंगे तो आप भी उसमें वो लिख देंगे, और फिर वो पंडा जब मंदिर बंद हो जाते, पट बंद हो जाते, तो वो लिखा देते पंडा के हमारे घर में आना, तो उनके घर में भी जाते हैं।
2: हाँ,
0: तो इस प्रकार से वो पंडा होते हैं बही खाता देखने।
2: तो राजेंद्र जी, जैसे कि हम लोग अपना नाम संस्कार आदि कराते, पर हम लोग में ये भी होता है, हम लोग संकल्प आदि के लिए गोत्र का प्रयोग कर किया जाता है।
0: हाँ, उसमें सब लिखा रहता
2: उसमें
0: है,
2: मिलेगा
0: आपका गोत्र कौन सा है, आपका दादा का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, और सब नाम रहे, गोत्र रहे, और ऋषि आपके कौन से, किस गोत्र से आए,
2: सब उसी में,
0: सब सब।
2: तो ये कहाँ पर मिलेगा?
0: ये यहाँ पे भी मिलेगा, जहाँ पे आज बात चल रही, वहाँ पे भी, जहाँ जहाँ आपके पूर्वज गए होंगे।
2: हाँ जी,
0: वहाँ पे मिलेगा,
2: वहाँ पर
0: हरिद्वार में तो सब गए होंगे,
2: हरिद्वार में गए होंगे। हाँ,
0: तो वहाँ पे मिलेगा। पहले लोग यात्रा पे जाते थे, जैसे आपके पूर्वज 150 साल पहले वाले,
2: हाँ जी,
0: बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, पहले पैदल जाते थे हरिद्वार ऋषिकेश से।
2: हाँ,
0: उसमें 2-3 महीने का समय लगता था, कुछ लोग 6 महीने भी लगाते थे।
2: अच्छा,
0: गर्मी में जाते थे, और जब सर्दी आ जाते थे तो लौट के आते थे, चारों धाम यात्रा करते थे। तो जब पंडा के पास जाते थे तो वो सब वहाँ पे लिख देता था कि ये लोग यहाँ आए, वहाँ एक इस प्रकार की व्यवस्था रहती है।
2: तो अब तो जाना पड़ेगा वहाँ।
0: हाँ, जरूर जाना पड़ेगा, मैं तो गया हूँ, और मैंने हर जगह अपना इतिहास लिखा है, और हमने पिछले वालों का भी देखा है, तो मैं तो वही बात करता हूँ जो मैंने खुद देखा है, बताई बात नहीं। तो बढ़ते हैं एक, और कुछ आप पूछना चाहते हैं?
2: नहीं, कुछ कहना चाहता हूँ।
0: जरूर
2: कह दो।
0: हाँ, कह दो
2: कि दुनिया में लाखों पेड़ गिलहरी के देन हैं।
0: हाँ,
2: दुनिया में लाखों पेड़ों गिलहरी के देन हैं, वे खाने के लिए बीज जमीन में छुपा देती है और फिर जगह भूल जाते हैं। आप भी अच्छे कर्म करो और भूल जाओ, समय आने पर वे फल जरूर देंगे।

भारत उत्तम नगर से, रिंकू पाजी इसमें लिखा गया है और उन्होंने कहा कि दिया और बत्ती अपनी अपनी जगह सही होते हैं, आग कोई तीसरा ही लगाता है। तो ये भी थोड़ा से हम लोग यहाँ सुना देते हैं और इसी प्रकार से कोई अगर अच्छा संदेश है आपको तो ज़रूर और भेजना, ताकि रोज़ हम सबको कम से कम थोड़ा से तो हंसना है। और राजेंद्र जी, ये तीर्थ स्थल जो आप कह रहे हैं उसके वृतांत जो सुना रहे, तो आगे क्या है?

0: हाँ, बढ़ते हैं आगे। मोक्ष स्थली सोरो, जहाँ पृथ्वी का उद्धार भगवान ने बराहा रूप में किया, सुधांशु निर्भय पृथ्वी के पुनर्संस्थापन के उपरांत पृथ्वी को ज्ञानोपदेश एवं अपनी बराहा रूपी देह का विसर्जन परमात्मा ने जिस पुण्य क्षेत्र में किया, वह स्थान आज भी सोरो यानी कि सुकुर क्षेत्र में नाम से जन जन की श्रद्धा के केंद्र के रूप में विद्यमान है। भगवान ब्रह्मा के पुण्य प्रभाव से इस स्थान को विश्व संस्कृति के उद्गम स्थलों में से एक माना गया है। बात उस समय की है जब दैत्यराज हिरणाक्ष पृथ्वी को जल के अंदर ले गया, तब उसके उद्धार हेतु भगवान ने ब्रह्मा रूप में लीला करने का निश्चय किया। पृथ्वी के पुनर्संस्थापक के उपरांत पृथ्वी को ज्ञानोपदेश एवं अपनी ब्रह्मा रूपी देह का विसर्जन परमात्मा ने जिस पुण्य क्षेत्र में किया, वह स्थान आज भी सोरो यानी सुकुर क्षेत्र के नाम से
1: सुकुर क्षेत्र जैसे कि आप सुना रहे हैं भारत के कहीं कहां,
0: उत्तर प्रदेश जी, सोरो के नाम से जन जन की श्रद्धा के केंद्र के रूप में विद्यमान है। भगवान ब्रह्मा के पुण्य प्रभाव से इस स्थान को विश्व संस्कृति के उद्गम स्थलों में से एक माना गया है। भगवान श्री ब्रह्मा के देह विसर्जन के प्रभाव के कारण यहाँ स्थित हरिपदी गंगा में मृतक की अस्थियाँ प्रभाव के तीसरे दिन ही जल में विलीन हो जाती है।
1: यानी कि जो अपना अस्थियाँ विसर्जन करने को जाते हैं,
0: हाँ,
1: तो वहाँ छोड़ते हैं,
0: तीन दिन में विलीन हो जाती, यानी कि समाप्त हो जाती
1: एकदम से।
0: हाँ, विश्व में कोई दूसरा स्थान ऐसा स्थल नहीं है जहाँ अस्थि गलती हो। अगर आप हड्डियां उसमें डाल देंगे तो वहां गल जाएगी,
1: गल जाता है।
0: भगीरथी गंगा यद्यपि हम सभी के लिए परम पुण्य प्रदा है, किंतु उसके जल में भी अस्थि गल नहीं पाती। आधुनिक वैज्ञानिक प्रयासों के बावजूद इस जल की इस विशेषता के रहस्य का पता नहीं लग पाए हैं। यह वही सुकुर क्षेत्र है जो कालांतर में ब्रह्मा अवतार के रूप में कोकामुख कुब्जा भ्रक तीर्थ के नाम से विख्यात है।
1: तो राजेंद्र जी, ऐसा देखा जाए कि हम सब अभी ये लगता है कि हम गंगा तीर्थ करने को जाते थे और ज़्यादा तादाद में लोग उसी के चिंतन करते, पर जैसे कि आप कह रहे हैं कि और भी तीर्थ स्थानों है भारत में, गोमती नदी,
0: हाँ गोमती नदी है,
1: वो भी इसी प्रकार का तीर्थ स्थान है।
0: हाँ, गंगेश यमुनेश गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन संधिमन कुरु, ये सात नदियों में से गोमती नदी नहीं आती है, गोमती नदी अलग में आती है, लेकिन नदियाँ बहुत सारी भारत में हैं और लखनऊ शहर से होते हुए भी गोमती नदी बहती है। तो पहले ज़माने में लोग जब शहर बनाते थे तो नदी के बगल में बनाते थे, इसलिए जैसे जो भी शहर है बड़े बड़े आप देखेंगे तो नदियों के किनारे में बने हुए हैं
1: सभी शहर और नदियों के किनारे।
0: हाँ, नदी पानी रहता था तो पानी की कोई कमी न रहे, हाँ, इसलिए नदी होना जरूरी था।
1: ऐसा,
0: हाँ, इसलिए नदियों के किनारे बना था।

0: जैसे कि श्री बरहा दर्शन, इस क्षेत्र के प्रधान मंदिर की बरहा मठ का 17वीं शताब्दी में नेपाल नरेश ने जीर्णोद्धार कराया था। इस मठ में प्रधान देव श्री क्षेत्राधीश बरहा अपने श्वेत वर्ण विग्रह में मां लक्ष्मी के साथ सुशोभित है। साथ ही इसके प्रांगण में भगवान के विराट रूप का अलौकिक दर्शन भी होता है। श्री हरि गंगा क्षेत्राधीश श्री बरहा मंदिर के बिल्कुल सामने प्रतिष्ठित श्री हरि गंगा का विशाल कुंड मृत आत्माओं की मुक्ति के साक्षात पर्व के रूप में विद्यमान है। यह वही पवित्र कुंड है जहाँ विसर्जित अस्थियाँ 3 दिन के अंदर जल में विलीन हो जाती है। श्री गर्दवट तीर्थ इस पवित्र भूमि के अंदर ही गर्दवट तीर्थ है जहाँ आदिकालीन विश्व का एकमात्र प्राचीनतम गर्दवट विद्यमान है।
1: तो राजेंद्र जी, ये जल किसी और तरीका के जल है उसमें ताकि वो मिल जाता है अस्थियाँ सब कुछ?
0: नहीं, इस जल में ऐसी विशेषता है कुछ कि जो हड्डी डालने से वहाँ पे 3 दिन के अंदर
1: वो गल जाता है।
0: तो ऐसी कुछ जल में कुछ विशेषता है, वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए।
1: वैज्ञानिक कहते हैं वेतनस्काप।
0: हाँ,
1: अच्छा,
0: आगे बढ़ते हैं एक सुंदर सा गीत की ओर और इसके बाद हम
1: फिर आगे ये
0: जारी रहे
1: तीर्थ स्थल के बारे में और जानकारी हम सबको जरूर प्राप्त होने वाला है।
0: जरूर।

0: नमो नमो ही शंकरा। शंकरा तो नमो नमो रहे ही, आप कैसे रहे?
1: हम अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं क्योंकि शांता जी भी कुछ कहने वाले हैं। शांता जी, क्या आज अपने पिटारा से भर के लाए हैं?
2: तो जो आपने जो मौका दी है संजय जी, राजेंद्र जी, तो मैं ये कहूँगी कि करना सीखो, करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से वही उम्मीद रखते हैं। और साथ ही साथ ये भी कह दूँ कि प्रभु ना दंड देता है, प्रभु ना माफ करता है, वो तो कर्म फल तराजू है जो बस इंसाफ करता है। सुख दुख का बटन तेरे हाथ में है बंदे, तू खुद ही ऑन करता है, तू खुद ही ऑफ करता है।
1: बंदे, तू खुद ही ऑन करता है और तू खुद ही ऑफ करता है। सुनने वालों, ये संदेश ये समझने के बात हो जाता है शांता जी, क्योंकि लोग अभी हम जरूर उसके बारे में और चर्चा करेंगे, पर राजेंद्र जी, हमारा कार्यक्रम का और जो घड़ी जो होता है ना, वो चल रहा है और हम लोगों का संदेश आज जरूर ये तीर्थ स्थान का बारे में और सुनाना है। और अभी हम सब अगले सुंदर गीत भी चलाने वाले हैं।
0: हाँ, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आगे का जो हमारा कार्यक्रम है थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इसके बाद
1: जरूर
0: चलाएं। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन वृक्षों में अभय भट्ट, यानी अभय भट्ट प्रयाग में है, अभय भट्ट सिद्ध भट्ट उज्जैन में है, बंसी भट्ट वृंदावन में है, एवं गंधर्व भट्ट सुकूर क्षेत्र के सोरों में माने गए हैं। इसी गंधर्व भट्ट क्षेत्र के वर्तमान प्रांगण में श्री विदया का यांत्रिक स्वरूप संभवतः विश्व की एकमात्र कृति है। कूर्म पृष्ठीय श्री यंत्र का यह स्वरूप कहीं और देखने को नहीं मिलता। इसकी प्रतिष्ठा आदि शंकराचार्य जी ने की थी। व्यवस्था तीर्थ यह वह स्थान है जहां भगवान सूर्य ने सहस्त्रों वर्ष तप किया था। उनके इस कृत्य से अति प्रसन्न होकर प्रभु ने दर्शन दिए एवं उनकी इच्छा के अनुसार गीता का उपदेश सर्वप्रथम दिया। बहुत कम विद्वान इस तथ्य से परिचित होंगे कि महाभारत में श्री कृष्ण के अर्जुन को गीता उपदेश से काफ़ी पूर्व श्री गीता रहस्य को श्री हरि ने इसी सकुर क्षेत्र में भगवान सूर्य को समझाया था। सोम तीर्थ भगवान चंद्रदेव ने अपने साप से मुक्त होने के लिए इस पावन धरा पर सहस्त्रों वर्ष कभी सिरोमुख कभी अधोमुख नाना प्रकार से तपस्या की थी, तो भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें न केवल साप मुक्त किया वरन या वर भी दिया कि हे चंद्र, तुम्हारी साधना के प्रभाव से वर्ष में दो दिन यहाँ का जल दूध का रूप ले लेगा एवं जग विख्यात होगा। आज भी चैत्र शुक्ल नवमी को यहाँ स्थित कूप का जल दूध का रूप ले लेता है। तुलसी स्मारक मंदिर विश्व को रामचरितमानस की अनुकम्प कृति देने वाले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का जन्म यहीं सुकुर क्षेत्र में हुआ एवं उनकी शिक्षा दीक्षा भी यहीं श्री नरसिंह पाठशाला में संपन्न हुई। आज श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी एवं उनके गुरु श्री नरहरि जी के वंशज जीवित हैं। तुलसीदास जी के मकान में जीर्णोविशेष आज भी विद्यमान हैं।
1: तो राजेंद्र जी, अभी तक वो स्थान अभी तीर्थ स्थान की तरह बनाया हो?
0: हाँ, हरिपदी गंगा के मध्य सन 1945 में तत्कालीन जिलाधीश द्वारा स्थापित गोस्वामी श्री सुंदर प्रतिमा उनके स्मारक के रूप में आज भी विद्यमान है। महाप्रभु वल्लभाचार्य की बैठक, वल्लभ संप्रदाय के अनुयायियों की श्रद्धा का केंद्र, उनकी 84 बैठकों में से 33वीं बैठक इसी पावन भूमि पर स्थित है।
1: तो राजेंद्र जी, आपने तो हिंदी में बोल दिया कि केंद्र का मतलब,
0: केंद्र मतलब जैसे
1: यानी कितना टुकड़ा,
0: बीच का स्थान, केंद्र यानी जैसे भारत का बीच का जगह है, केंद्र है।
1: हाँ,
0: मध्य प्रदेश तो वैसे ही उस जगह का जो केंद्र है वो है।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो इसके आगे बढ़ते, यहाँ बिट्ठुल नाथ जी की व गुसाई जी की भी बैठक विद्यमान है। गुसाई जी यानी कि भगवान कृष्ण के भक्त हैं और जो सेवा आज भी होती है वृंदावन में वो गुसाइयों के पास है और बिट्ठुल नाथ का वहाँ पे मंदिर भी है
1: वहाँ वृंदावन में।
0: हाँ।
1: अच्छा, मैंने सुना है वृंदावन में एक मंदिर भी है जिसको कहते हैं कि पगला बाबा,
0: पगला बाबा मंदिर है ना, बहुत बड़ा मंदिर है,
1: बहुत बड़ा, सात मंजिल का,
0: हाँ,
1: संगमरमर का,
0: और एक भूत मंदिर भी।
1: कौन सा मंदिर?
0: भूत मंदिर।
1: भूत मंदिर,
0: हाँ, भूतों ने बनाया था रात में।
1: अच्छा,
0: एक ही रात में बना लिया था और बहुत बड़ा बन गया था, फिर बाद में उसको तोड़ना पड़ा क्योंकि उसमें जहाज ना टकरा जाए ऊपर।
1: अच्छा,
0: आगे बढ़ते हैं ये गीत की ओर और इसके बाद बात करेंगे।

0: पहले कहावत है ना कि ना पहले हमारे पास 4G होते थे ना 3G होते थे, बस पिताजी होते थे और जहां तनी से कुछ गड़बड़ करो गुरुजी होते थे और बस
1: यहीं तक जी
0: यहीं जी थे, आगे कोई जी नहीं थे। और देखो ये इंटरनेट द्वारा भारत में कितना अशुद्ध से ये कार्यक्रम ये पूरा वहाँ पर सुना जा सकता है। हमारा जो आज का विषय है तीर्थ स्थान, जो हम इस समय उसके बारे में वृतांत को सुना रहे हैं और लोग सुन करके इस पे जरूर इस पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि लोग को तीर्थ को करना है, लोग को अच्छा लगता है ऐसा तीर्थ के संदेश सुनने को।
1: संदेश आगे बढ़ते हैं, ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो पहले सोरो शुकर क्षेत्र के निकट ही गंगा बहती थी, किंतु अब गंगा दूर हट गई। पुरानी धारा के तट पर अनेक प्राचीन मंदिर स्थित हैं। जो पुरानी धारा थी उसके नज़दीक बहुत सारे मंदिर आज भी स्थित हैं, लेकिन अभी थोड़ा गंगा दूर चली गई। यह भूमि भगवान विष्णु के तृतीय अवतार भगवान ब्रह्मा की मोक्ष भूमि एवं श्री रामचरितमानस के रचनाकार महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी और अष्टछाप के कवि नंददास जी की जन्मभूमि भी है। इतने विशाल विशाल लोगों की ये भूमियाँ हैं, तो क्यों ना इन भूमि के लोगों के लिए एक सुंदर सा नगमा चलाया जाए।
0: क्योंकि ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि दोस्तों सुनने वालों जो इस समय ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो जरूरत से ज़्यादा सोचना भी इंसान की खुशियाँ छीन लेता है। तो ज़्यादा सोच वोच ना करो, क्योंकि अपना खुशियाँ हमें जो खुशियाँ मिलने वाले हैं वो हमारे पास रहे और हम सब ये आनंद के जिंदगी और लेकर चलते रहे। हम सब एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ रहे हैं,
1: बहुत विशाल गीत सुनाने वाले हैं।
0: बहुत विशाल, बिल्कुल एकदम सिरिनामी भाषा में, सिरिनामी भाषा हमारा जो आपने और कहने लगे है। राजेंद्र जी, आप जैसे और संस्कृत का हॉलैंड में जो हम सबको और अपना हमारे गुरु है संस्कृत के, तो ऐसे आपको अच्छा भी लगता है हमारा सरनामी हिंदुस्तानी? हाँ, बात करने को
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत अच्छा,
2: बहुत अच्छा है, कारण कि ना हमारे सरनामी भाषा जो है ना, यहाँ के गोरे भी सीख के है।
1: हाँ,
2: यहाँ के गोरे जब बाजार जाओगे तो वे कहेगा हमारे हमारा हिंदुस्तानी भाषा में कहेगा। अगर आप भी जाओगे वहाँ गोश्त खरीदने ना,
3: एक बार ऐसे वहाँ पे एक दोस्त के साथ गई, तो वो भीतर गए दुकान में, तो वो कहने लगा कि मुझे ये वाला चाहिए। तो वो मारोकान वाला जो कस्टम जो वहाँ बेचता था ना, वो कहा छोटा छोटा कद्दू।
0: राजेंद्र जी, थोड़ा सा कुछ और मन था कहने को,
1: जरूर
0: कह दूँ?

0: कह दो।
1: क्योंकि अच्छा सोच, अच्छा विचार, अच्छे भावना मन को हल्का करती है। बस आप गीत चला दो।
0: जरूर, फिर मन और ज्यादा हल्का हो जाएगा।

0: तो भी न्याय के मार्ग से मेरा कभी ना पग डिगने पाए। यानी कि जो अगर न्याय है, सत्य का रास्ता है, तो उससे पग यानी कि पैर डिगने नहीं पाए, हिलता नहीं है। बहुत ही अच्छा संदेश इस भगत भजन से हमें को देखने को सुनने को मिला। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी ने रामायण की कथा अपने गुरु नरसिंह दास जी से प्रथम बार यहीं पर सुनी थी। नंददास जी द्वारा स्थापित बलदेव का श्यामायन मंदिर सोरो शुकुर क्षेत्र के प्राचीन मंदिर हैं। पौराणिक गुटवट यहाँ स्थित है। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की 23वीं बैठक है। यहाँ हरि की पौड़ी में विसर्जित की गई अस्थियाँ 3 दिन के अंत में रेणु रूप धारण कर लेती है, ऐसा आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ भगवान बारहा का विशाल प्राचीन मंदिर है। मार्ग शीर्ष मेला यहाँ का प्रसिद्ध मेला है। मंगशीर यानी कि कार्तिक के बाद जो महीना आता है, कौन सा महीना रहेला? नवंबर।
1: नवंबर
0: में तो यहाँ का प्रसिद्ध मेला वहाँ पे लगता है। अब बात करते हैं पुरावशेष की। भागीरथी गंगा नदी के तट पर एक प्राचीन स्तूप के खंडहर भी मिले हैं, जिनमें सीताराम के नाम से प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा बेन ने करवाया था। प्राचीन मंदिर काफ़ी विशाल था, जैसा कि उसकी प्राचीन भीतियाँ की गहरी नींव से प्रतीत होता है। अनेक प्राचीन अभिलेख भी इस मंदिर पर उत्कीर्ण हैं, जिनमें सर्वप्रथम अभिलेख 1226 यानी विक्रम संवत 1169 ईस्वी का है। इस मंदिर को 1511 के लगभग सिकंदर लोदी ने कुछ नुकसान भी पहुंचाया था, लेकिन बाद में इसको रिपेयर किया गया। तो ऐसी मंदिर इस जो आज का हमारा तीर्थ स्थल की जानकारी थी, इस प्रकार थी। और बहुत सारे लोग तो उत्सुक होंगे जाने के लिए और वहाँ देखने के लिए। अब संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
2: कहना तो बहुत चाहता हूँ, पर क्या कहूँ राजेंद्र जी,
0: कुछ तो कहो, कुछ
2: सब
0: काम
2: कुछ
0: है
2: सीखना ही ज्ञान नहीं है। कहलाता है कि सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नज़रअंदाज करना भी ज्ञान है। तो शांता जी भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ तैयारियाँ कर चुके हैं कहने के लिए।
3: तो जैसे आपने अभी पढ़ा ना, आपने बताया कि हर बात थोड़ा सा स्वयं कभी उसको भी,
2: मैंने ये तो नहीं कहा ना,
3: बहुत महत्व देता है, तो इसलिए मैं भी वेट करती हूँ, गौरती हूँ कि कब मेरी पारी आवे, तो मेरी बारी भी आएगी ना। कहते हैं
2: पारी आवे तो मेरी बारी भी आ गया। तो शांता जी, आपके सुनने के लिए लोग, और यानी कि अभी टेलीफोन भी आए थे श्रीमती राजकुमारी जी, जो कह रहे थे कि सही साथियों के साथ ये कार्यक्रम को सुनते, तो बहुत बहुत सभी को हार्दिक से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा भी ऐसे इस प्रकार से इन बातों को सुन करके हौसला और बढ़ते हैं, और हम सब सेवा के रास्ते के ओर बढ़ते हैं। निकल चाहे हवा है या और बारिश है, हम सब कोशिश करेंगे और भी, और इसी प्रकार से अच्छा अच्छा संदेश अपने सभी सुनने वालों के लिए लेकर के यहाँ उपस्थित होने के। तो शांता जी, आप पिटारा से अपने क्या छोड़ने वाले हैं?
3: ऐसे बात है कि जिंदगी ने पूछा सपना क्या होता है, तो हकीकत ने बोली बंद आँखों में जो अपना होता है, सुनिए, बंद आँखों में जो अपना होता है, खुली आँखों में वही सपना होता है।
2: खुली आँखों में बस, शांता जी ने जैसे सुनाया, राजेंद्र जी क्या बात है कि आज हमारे सूरीनाम के, क्यों हम पहले बच्चे की ओर बढ़ते हैं कुछ?
0: हाँ, हम बहुत दिनों से बच्चों का जो बच्चे मन के सच्चे वाला गीत नहीं सुने और लोगों को नहीं सुनाए, तो क्यों ना हम आज उसकी ओर बढ़ें, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट गाना रहेगा वो सूरीनाम हमारा प्यारा देश, और इसके बाद जिस
2: तो हमारे सुनने वालों भी अभये से तैयार हो गया कि हमारा सूरीनाम भी अभी आने वाले है।
0: हाँ,
2: पर बच्चों के लिए कुछ चला
0: बच्चों
2: देते
0: के लिए सबसे पहले हम चलाएंगे, इसके बाद दूसरे ओर बढ़ेंगे।

0: बच्चे मन के सच्चे, तो बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, उनके मन में जो होता है वो बोल देते हैं, किसी भी प्रकार का मन में कुछ नहीं रखते, इसलिए कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि झूठ जानते नहीं, झूठ तो बाद में सीखा जाता है इस दुनिया में, इसलिए लोग बाद में बोलते हैं, लेकिन जब बच्चे रहते हैं तो। संजय जी, आपने कभी झूठ तो नहीं बोला जब आप बच्चे थे?
1: आपने ऐसा सवाल कर दिया जहाँ हमें भी अब जो इस जवाब देना है तो बहुत सोच समझ के देना पड़ेगा, क्योंकि सवाल ये है कि आपने कभी झूठ तो नहीं बोला। तो दोस्तों, ये इस पे मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि छोटा मैं तो कुछ ना कुछ किए होंगे। शांता जी, बगल पड़ोसी के आम के पेड़ से अपना घर का आम छोड़ करके बगल का आम और पसंद होते थे, और ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है जिसे कि कभी काल के छोटा पे कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाते हैं, पर मन के सोच तो सच्चे होते हैं राजेंद्र जी।
0: हाँ, ये तो है,
1: मन का तो सच्चे होते थे, और अपने आप को तो बचाना पड़ता था, क्योंकि गलतियां तो हो ही जाते थे। शांता जी, आपने कभी कुछ गलती की है छोटे पे?
2: जैसे सभी बच्चे करते, शरारत हरारत सब कुछ होता है। हाँ, हम भी वैसे ही अब पड़ोस के पेड़ पे चल जाते थे,
1: चढ़ जाते थे।
2: हाँ,
1: चढ़ गए
2: सिर बोंकी, जाने
1: सिर बोंकी। आप राजेंद्र जी, आपको पता सिर बोंकी क्या है?
0: हम न जाने लम्मान सिर बोंकी का रकम रहे,
1: नहीं जानते।
2: एक फल होता है।
0: ओ, सिर बोंकी एक फल रहे।
1: हाँ। एक फल होता है। फल तो प्रयोग होता है, पर उसका लकड़ियों को बहुत लोग पसंद करते थे जलाने को।
2: अच्छा।
1: चूल्हा जलाते थे ना, तो सिरबोंकी का लकड़ी बहुत अच्छा होते थे चूल्हा जलाने।
2: और छोटा जाने पहले कोई करोस पाप रहा ना।
1: हाँ जी।
2: सैकर शुक्र।
1: हाँ।
2: ब्राइनो सैकर, तो वो सब हम चुपके से जाकर लेकर खाते थे।
1: चोरी भी किया है।
2: मेरे दो भाई और मैं तीन जने मिलकर हम जाकर लेकर खाते थे। मम्मी तो मना करती थी, क्योंकि वो तो नाश्ता थे ना सुबह के टाइम में।

0: यहाँ ये भी कहा जाता कि जो समय का मोल समझते हैं, समय उन्हें अनमोल बना देता है। तो राजेंद्र जी, आप अगर हम सब जो इस समय अगोर रहे हैं,
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, आप अपने बारे में बताए, हमने अपने बारे में बताया, अब राजेंद्र के बाद
0: आपको तो कहना ही पड़ेगा।
2: हाँ, हम जब बच्चे थे, नहीं हम तो अभी भी बच्चे ही हैं। अच्छा। आप लोगों के सामने तो आप देख ही रहे हो कि हम एकदम दूसरे प्रकार के बच्चे रहे। और जब बचपन में हम लोग भी सेब दूसरे के तोड़ने जाते थे, हमारे यहाँ तो सेब बहुत होता है, और प्लम है, सेब है, नारंगी है, नारंगी हम दूसरे के टपा देते थे रात को और खीरा और इस प्रकार का जो तुरंत खाने वाली चीज़ होती थी उसका चोरी भी नहीं माना जाता था, तो इसलिए कहते थे कि उस चीज़ का कोई चोरी नहीं माना जाता था, आप ऐसे करके खा सकते थे। तो हमने उसका आनंद लिया बचपन में, तो अगर नहीं लिया होता तो बचपन तो फीका हो जाता, इसलिए अच्छा ही रहा। और गंगाराम पंडित जी ने तो अपने बहुत सारी बात बताई बचपन की, वो जो सुनी रहे प्रोग्राम, तो अगली बार प्रोग्राम में वो अपना शेयर करेंगे।
0: जरूर, वो जरूर कार्यक्रम में शेयर करेंगे कि अपना बचपना उन्हें, क्योंकि अभी तो बस कुछ ज्यादा अवस्था के नहीं है, तो जरूर अपना प्रोग्राम में शेयर कर सकता
2: जरूर,
0: है
2: जरूर।
0: क्योंकि ये मत कहना राजेंद्र जी, दो चीज पूछना कभी नहीं है यहाँ हॉलैंड में, अलाउड नहीं किया जाता है। और वो होता है, पहला होता है किसी से उनका आयु ना पूछे, और दूसरा उनका वजन ना पूछे, ऐसा क्यों है?
1: और तीसरा है कोई व्यक्ति जो कमा रहे ना उसका आमदनी ना पूछना,
0: आमदनी ना पूछना। हमारा वक्त पे ध्यान देना है, तो
2: वक्त पे ध्यान है। और बहुत दिनों से हमने सूरीनाम हमारा प्यारा देश जो गाना है वो
0: चला दो,
2: नहीं सुनाया, तो उसका तुरंत जल्दी से उसको सुनाएंगे।
0: हाँ, सन्नामे में तो नहीं है, अनाउंस कर दो उसके। कैसे
2: सूरीनाम?

0: सूर्य नाम हमारा प्यारा देश तुझ पे मरने से इनकार नहीं। संजय जी आप
1: बड़ा सुंदर गीत आज फिर चला दिए राजेंद्र जी, और मन एकदम खुश हो गया है। और बस जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायत है वही व्यक्ति सबसे अधिक सुखी और संतुष्ट होता है। दोस्तों हम सब आज जो हमारा संदेश जो कपूर के अंतर्गत प्रयोग करने से और उनका महत्व जो हम सब के लिए रखा गया और ख़ास करके जो तीर्थ स्थान जिन्होंने राजेंद्र जी ने आज हम सब के सुनाए, तो ज़रूर हमारा समय आने पे ज़रूर हम उड़ीसा स्थानों को ज़रूर जाए और उनके दर्शन करें। आगे का कार्यक्रम राजेंद्र जी आप क्या रखने वाले हैं?
0: आगे का जो कार्यक्रम है हमारा यही है कि लागी छूटे ना सनम।

प्यार किया तो करके निभाना, लाख समझौता कर लो अगर विश्वास नहीं तो प्यार नहीं, लाख कोशिश कर लो अगर आत्मविश्वास नहीं तो जीत नहीं। इसी वाणी के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ प्रोग्राम को सुनने के लिए, जो आप इतने बड़े तादाद में होकर सुनते हैं प्रोग्राम को। हम आपको भी बहुत दिल से धन्यवाद कहती हूँ प्रोग्राम को सुनने के लिए और स्वीकार कर लिए। सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम।

दूर हूँ फिर भी दिल के करीब। हम लोग तो बहुत दूर बैठे हैं और रेडियो सुनने वाले तो पूरा देश दुनिया में सुन रहे हैं, लेकिन हम दूर हैं लेकिन फिर भी दिल के करीब हैं। तो इसी से मैंने पकड़ा यहाँ से कि क्यों ना यहीं पे पहुँच दिया जाए, और दूर है लेकिन नज़दीक भी है। तो फावन हिंदुस्तानी रेडियो को जो हमारा प्रोग्राम सुनने वाले लोग हैं उनको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। फिर मिलेंगे इसी वक्त अगली बार इसी समय इसी बार को। तब तक के लिए मेरा यानी राजेंद्र सिंह का तहे दिल से नमस्कार, धन्यवाद।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से धन्यवाद दिया जाता है, और जितने बैलर्स जो फ़ोन किए सभी को हार्दिक से धन्यवाद दिया जाता है, जिन्होंने व्हाट्सएप बरख भेजे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। आशा यही है कि अगले सप्ताह जरूर आपके साथ और मिलन होगा हमारे साथ, और कार्यक्रम में सहयोग देने वाला शांता खेमई जी और हमारे पैनल के पीछे बैठे हुए राजेंद्र सिंह जी। मैं हूं आपका सेवक संजय, नमस्कार करता हूं और फिर मिलेंगे।

0: सुनो लो, यहाँ जो कि रविवार के शाम है और रविवार के शाम में हम सब रेडियो में उपस्थित है, एक गीत चला रहा हूँ, एक गीत जो यूट्यूब से निकाल करके रखा हुआ हूँ। जॉनी भाई, आपको पता ये किसका आवाज है?
1: अभी तो सुना नहीं तो आवाज कैसे होगा भैया?
0: अभी सुना नहीं तो आवाज कैसे होगा? क्यों ना सुनने वालों को भी सुना देते कि ये आवाज किसका है। अगर जो कोई जानत हो तो जरूर फोन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे देश का एक कलाकार

नहीं, शांता जी का आवाज नहीं है, ये शांता जी का आवाज नहीं है। हमारे कलाकारों में एक कलाकार अभी जो हवाम में काफी दिनों से है और

0: अपना बलान बना लो मुझे बलमा। और जॉनी भाई अभी सोच में पड़ा हुआ है, एक जॉनी भाई संगीतकारों में हॉलैंड में जब देखा जाए तो आप किसको नहीं पहचानते हैं?
1: आवाज लोग को जो बोलते हैं और गीत में बहुत फर्क होता है,
0: यानी कि आवाज गीत में बदल जाता है।
1: बदल जाता है जब कोई किसी, आपको शायद मालूम होगा भाई ने, ने, भाई संजय, कितने लोग जो तुतलाते हैं,
0: कितने लोग हैं जो तुतलाते हैं,
1: तुतलाते हैं है, यानी स्तोत्र करते नहीं,
0: स्तोत्र हाँ।
1: लेकिन अब सोचो कि वो ये कैसे गाना गाएगा, लेकिन जो गाना गाते हैं तो एक बार नहीं स्तोत्र करते, वो गाना वो इसने चलाते। देख लिया जाए एक मशहूर कलाकार जो हमारे सूरीनाम को जो यहाँ रहते हैं, हेंगोपाल, नॉर्मल हेंगोपाल जब आपसे बातचीत करेगा तो वो स्तोत्र करते हैं, लेकिन जब वो किशोर कुमार के गाना गाते या और भी गाना गाते वो कभी एक बार स्तोत्र नहीं करते और दूसरा आवाज से गाते, इसीलिए गाना पे आवाज बदल जाता है यार।
0: पर सुनो लो, आप भी सुनिए ये किसका आवाज है।